因这里广播电台，听众朋友们，我们现在播送恰蒂舍加尔语的民间歌曲，请收听。

0: किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। मुझे खुशी है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है।
1: What is the outlook of the relationship between the two nations?

सीता स्वयंवर वाले दिवस की प्रातवेला में राजा जनक ने राजपुरोहित शतानंद को मुनि विश्वामित्र के पास भेजा। मुनि ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को राजा जनक की विनती कह सुनाई। बोले, यज्ञशाला चलकर सीता का स्वयंवर देखना चाहिए कि ईश्वर किसे ये गौरव प्रदान करते हैं। जिस प्रकार पूर्व में सूर्य का उदय होते ही कुमुदिनी सकुचा जाती है और तारागण का प्रकाश फीका होकर लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार श्रीराम तथा लक्ष्मण के धनुष यज्ञ स्थल पर आते ही जानकी के स्वयंवर में आए राजाओं के मुखमंडल श्रीहीन हो गए। राजाओं के समूह में श्रीराम और लक्ष्मण ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे आकाश पर तारामंडल के बीच दो पूर्ण चंद्र निकल आए हों।

0: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः सम्बन्धः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्यानन्तरं श्रम प्रवास डिजिटल तन्त्रज्ञान रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र एकादश सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्तवार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बन्धानाम् उन्नतिः सह विश्वासानां प्राथमिकतानां भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
2: AI का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्स्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिक

प्रधानमंत्री नरेंद्र फसलता सी दान मंगाता का अनुभव नगेरा तरस त्रानिया दाड़ी स्लोवाकिया जुगा से पाकत उन्तुक मंबेन तुक कलों पुक कर्जा बरसामा मंगे नए कॉन्ट्रा टेररिस्ट में प्रेसिडेंट स्लोवाकिया पीटर पेलेगिनी तेला मंग अनुग्रह कान पंघारगान नगेरा तरतिंगी स्लोवाकिया द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास कपाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बर्जेंसी तर सबूत

किया, दाल जोशी मलंचूर कान गोवा केमारिन पोर्ट असोसियासी बर्तुजन मना सेस का पासोक डोमेस्टिक दान मनिकात कान कामनान दाता सकाली गुस ममाजू कान वीसी पमिनता तंतांग आत्मनिर्भर भारत दी सीनी सियारान लोअर नगरी ऑल इंडिया रेडियो तेंगा मनियां पाइकान वार्ता बरिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकान तिबा दीवान प्रांची साड़ी इनी उन्तुक कुंजुंगान दुआ हाड़ी गुना बर्तपासी दालम काते तेजी सेवन पाड़ा कतिगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरनेशनल बरसा मापा दिसेला प्रधानमंत्री इंग्लिश की रिश्ता मर दिया कोता प्रांचिस तसबुत आता catat ini merupakan prestasi India yang India dalam KTT G7 mencerminkan semakin besarnya pengakuan terhadap peran dan kontribusi New Delhi dalam mengatasi tantangan global terkait perdamaian, perdamaian keamanan, pembangunan dan berkelanjutan lingkungan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah tiba di Prancis untuk mengatasi

इनोवेट तहन दुआरि बुधुआ प्लुन्नम दि पालाइस दस एक्सपोजिशंस ग्लोबल दानजारिंग इंटरनेशनल दान लबी दारी दुआ पुल इंस्टीट्यूट का पमोदल वेंतुरा mengatasi tantangan global stabilitas serta keamanan di Indo-Pasifik. Innovates merupakan yang tercermin dalam solusi di kehidupan yang berkelanjutan bahwa revolusi teknologi pengusaha pada Bratislava Republik Slovakia atas undang Menteri India ke Slovakia sejak kenegaraan Presiden India ke Slovakia.

0: समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
4: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7

0: आज देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों फ्रांस।
1: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा वैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जल मार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक हाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्करे तैयबा, जैश-ए- मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
3: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
4: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
3: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
2: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
5: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
2: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया।

0: की एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5,400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेटनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के व्योम में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हुर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे, to also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian ship Disha, carrying 62,370 metric tons of LNG cargo, safely crosses Strait of Hormuz. 8 people killed after B-52 bomber crashes at U.S. Air Force Base in Southern California. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. President of Slovakia, Peter Pellegrini, has conferred Slovakia's highest state honor, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister Narendra Modi. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said that the Prime Minister expressed his heartfelt gratitude to the President, the government and the people of Slovakia for the distinguished honour.
4: As a special gesture, President conferred the highest state decoration of Slovakia, Order of the White Double Cross First Class, upon Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi for his role in an exceptional contribution in building India-Slovakia relationship. Minister dedicated the award to the people of India and Slovakia who have contributed in strengthening this partnership. Prime Minister also met with His Excellency Mr. Richard Rasi, Speaker of the National Council of the Slovak Republic, reaffirming the commitment to strengthen relationship between our two democracies.
3: India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology and defense, following talks between Prime Minister Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Addressing a joint press conference, Mr. Modi said, "Elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future."
5: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
3: The Prime Minister said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
5: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर किए गए एमओयू से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावना

0: US and Iran reach deal to end war, reopen Hormuz, headlines the Indian Express. US-Iran strike tentative peace deal as Israel refuses land pullback, reads the headline in the Statesman. Prime Minister Modi will lead the main event of the International Day of Yoga 2026 celebrations in Kolkata on June 21, writes the Asian Age. In its editorial piece titled Label Truth, the Tribune argues that FSSAI's action against misleading food labels is necessary, but only a first step. And that is back to you, Sunil.
1: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Slovakia confers its highest honor, Order of the White Double Cross, first class, on Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Modi to participate in G7 summit in Avignon, France today to hold bilateral meetings with Prime Ministers of Canada and UK and UAE President. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। स्लोवाकिया ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपना आलातरीन एजाज ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास अता किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज फ्रांस के शहर एवियन में मुनाक़िदा G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस दौरान वो कनाडा और बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ दोतरफा मीटिंगें भी करेंगे। हुकूमत ने डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर बरामदी महसूल में इजाफा कर दिया है, जबकि पेट्रोल पर बरामदी महसूल में कोई तब्दीली नहीं की गई है। 62,370 मैट्रिक टन LNG लाने वाला भारतीय जहाज दिशा बाहिफाजत आबनाए हुर्मुज से गुजर गया है। जनूबी कैलिफोर्निया में वाके अमरीकी फिजाइया के अड्डे पर B-52 बमबार तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक हो गए। और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप में केप वर्डे ने स्पेन को बगैर किसी गोल के बराबरी पर रोक दिया, जबकि बेल्जियम और मिस्र का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। अब खबरें तफसील से। स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलेग्रिनी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के आलातरीन सरकारी एजाज द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से नवाजा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस बावकार एजाज पर स्लोवाकिया के सदर, स्लोवाकिया की हुकूमत और वहां के अवाम का तहदिल से शुक्रिया अदा किया। एजाज कबूल करते हुए उन्होंने कहा कि यह एजाज भारत के 1,40,00,000,000 अवाम और भारत व स्लोवाकिया के दरमियान देरीना दोस्ती के नाम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एजाज भारत और स्लोवाकिया के अवाम के दरमियान मौजूद खलूस, एतमाद और मोहब्बत के मजबूत रिश्तों का मजहर है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह एजाज दोनों ममालिक की आने वाली नस्लों को भी बाहमी दोस्ती और खसूसी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की तरगीब देगा और इस दोस्ती को आइंदा भी फरोग देता रहेगा। भारत और स्लोवाकिया ने अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे जामे शराकतदारी की शक्ल दी है। ब्रिटिस्लावा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हमनसब रॉबर्ट फीको के दरमियान बातचीत के बाद फरीकैन ने अहम शोबों में बाहमी ताउन को तौसी देने की गरज से 11 माहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा शामिल है। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ताल्लुकात का फरोग मुश्तरका अकायद, तरजीहात और मुस्तकबिल की अलामत है।
3: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने दिफाई शोबों में एक लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए हैं।
3: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर किए गए MOU से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है।

0: इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: इस मौके पर खिताब करते हुए स्लोवाकिया के वजीर आजम रॉबर्ट फिको ने भारत की तेज रफ्तार इकतसादी तरक्की को सराहा। उन्होंने कहा कि भारत ने अहम शोबों में कई तरक्की याफ्ता मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम के दौरे ब्रातिस्लावा के दौरान कई तारीखी फैसले किए गए, जिनमें भारत और स्लोवाकिया के ताल्लुकात को नुमाया तौर पर मजबूत करने की सलाहियत मौजूद है। वजीर आजम जनाब मोदी के दौरे के दौरान कुल 11 अहम मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। इन मुआहदों में दिफा, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, सियाहत, क्वांटम कम्युनिकेशन और मसनूई ज़हानत समेत जदीद टेक्नोलॉजी और आला तालीम जैसे शोबों में ताउन बढ़ने की तवक्को है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के वजीर आजम रॉबर्ट फिको के दरमियान बातचीत के दौरान दोनों फरीकों ने दहशतगर्दी का मुकाबला करने में ताउन को मजबूत बनाने के लिए एक मुश्तरक वर्किंग ग्रुप कायम करने का भी फैसला किया है। वजीर आजम मोदी आज ब्रातिस्लावा से रवाना होंगे और G7 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए फ्रांस जाएंगे। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम पुरुति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी दो मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में दो रोजा दौरे पर आज फ्रांस के शहर एवियन पहुंचेंगे, जहां वो G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर आजम की आमद पर फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों उनका बाजाब्ता इस्तकबाल करेंगे। इसके बाद वजीर आजम सरबराह कॉन्फ्रेंस के एक वर्किंग सेशन में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू नई शराकत दारियों का क्याम और बैन अल-अक़वामी इत्तेहाद की अज़र नौ तश्कील है। इस इजलास में G7 ममालिक के रहनुमा, शराकत दार ममालिक के नुमाइंदे, नीस आलमी बैंक और अफ्रीकी तरक्याती बैंक के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इजलास के मौके पर वजीर आजम मोदी की कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी, बरतानिया के वजीर आजम कियर स्टारमर और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान के साथ दो तरफा मीटिंगें भी मुतवक्की हैं। इसके बाद वजीर आजम फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों की जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों की दावत पर फ्रांस के उस शहर का दौरा कर रहे हैं, जिसे एक नहायत अहम, नतीजा खेज और हमाजहत दौरा करार दिया जा रहा है। काबिले जिक्र बात यह है कि G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में ये भारत की 13वीं शिरकत होगी, जबकि वजीर आजम मोदी मुसलसल 7वीं मरतबा इस इजलास में शरीक हो रहे हैं। G7 सरबराह कॉन्फ्रेंसों में भारत की मुसलसल शिरकत आलमी उमूर में मुल्क के बढ़ते हुए रोल और अहमियत की अक्कासी करती है। यह आलमी सतह पर अमन, सलामती, तरक्की और माहौलियाती पायदारी से मुतालिक चैलेंजों से निपटने में भारत के रोल और खिदमात के एतराफ की अक्कासी भी करती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: G7 मुल्कों के लिए भारत की स्ट्रेटजिक अहमियत अब ठोस इक्तसादी और तकनीकी शराकत दारियों की सूरत में मजीद नुमाया हो रही है। इसका सबूत हाल ही में तय पाने वाला भारत यूरोपीय यूनियन तजारती मुआहदा है, जबकि नीस में मुनक़िदा भारत इनोवेट्स प्रोग्राम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत का सरकारी AI पार्टनर मुल्क के तौर पर इंतखाब भी इसी सिलसिले की अहम मिसालें हैं। ये पेशरफ जाहिर करती है कि G7 ममालिक भारत को सिर्फ एक बड़ी मंडी के तौर पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, अख्तरा, मैन्युफैक्चरिंग और मजबूत सप्लाई चेन्स के शोबों में एक काबिले एतमाद शराकतदार के तौर पर भी देख रहे हैं। अहम बात यह है कि फ्रांस की G7 सदारत की जानिब से तय की गई मुतअद्दिद तरजीहात, जिनमें आलमी अदम तवाज़ुन को कम करना, बैन अल-अक़वामी शराकत दारियों का फ़रोग और मसनूई ज़हानत AI शामिल हैं, भारत की सलाहियतों और मफादात से करीबी मुताबकत रखती हैं। अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर अमल करते हुए भारत ने नुमाया तरक्की की है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद अहम इक़दामात किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ आपके लिए एक ख़ुसूसी फ़ीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मोदी हुकूमत की दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: पिछले साल 6 और 7 मई की दरमियानी रात

0: शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये वाज़े पैगाम दिया कि भारत जंग नहीं चाहता, अलबत्ता वो दहशतगर्दी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। इस ऑपरेशन ने एक नई सुर्ख लकीर खींच दी कि अगर दहशतगर्दी को हुकूमत की पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका बराह रास्त और सख्त जवाब दिया जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान लश्कर ए तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को निशाना बनाते हुए भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में वाक़ दहशतगर्दों के 9 बड़े लॉन्च पैड्स को कामयाबी से तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान 100 से ज़्यादा दहशतगर्द हलाक हुए। 9 और 10 मई को भारत दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने एक ही ऑपरेशन में एटमी सलाहियत रखने वाले मुल्क के 11 फजाई अड्डों को निशाना बनाया। इस कार्रवाई के नतीजे में पाकिस्तान फदाइया के तकरीबन 20% बुनियादी ढांचे तबाह कर दिए गए। इस ऑपरेशन के बाद आलमी सतह पर भारत को वसी हिमायत हासिल हुई और मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं ने भारत के मौकिफ की तायीद की। ये भारत की बढ़ती हुई आलमी साख और बैन अल-अक़वामी बयाने पर उसकी मजबूत गिरफ्त की अक्कासी करता है। आकाशवाणी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन, जो जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के कमांडर रह चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की कारकर्दगी की भरपूर तारीफ की।
1: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
2: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
1: नो टेररिस्ट एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
0: NDA हुकूमत दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर साबित कदम है और इस पर पूरी संजीदगी और अज़्म के साथ अमल पैरा है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
3: हुकूमत ने अपने ताज़ा तरीन 15 रोज़ा जायजे में डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल की बरामद पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। आज से नाफिजुलअमल डीजल बरामदी ड्यूटी 13.05 रुपये फी लीटर से 14 रुपये फी लीटर कर दी गई है, जबकि ATF की बरामद पर महसूल 9.05 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये फी लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल पर बरामदी ड्यूटी 1.05 रुपये फी लीटर पर बरकरार है। घरेलू खपत के लिए क्लियर किए जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा ड्यूटियों की शरहों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। रकीक कुदरती गैस LNG लाने वाला जहाज दिशा बाहिफाजत आबनाए हुरमुज से गुजर गया है। LNG बरदार ये जहाज 62,370 मैट्रिक टन LNG लेकर आ रहा है। इस जहाज का इंतजाम शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया की क्यादत में कायम एक कंसोर्शियम कर रहा है। ये इन अव्वलीन तजारती जहाजों में शामिल है जहां अमरीका और ईरान के दरमियान इब्तदाई जंगबंदी माहदे के ऐलान के बाद आबनाए हुरमुज को पार किया है। जनूबी कैलिफोर्निया के सहराए मोहावी में अमरीकी फिजाइया के फौजी अड्डे से परवाज होने के फौरन बाद एक B-52 बम्बार तैयारा गिरकर तबाह हो गया जिसमें सवार सभी 8 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी फौज ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतला दी कि मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:20 पर एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर तैयारा गिरने के बाद हंगामी टीमें जाए वकूह पर पहुंची। फिजाई फुटेज में बेस के रनवे के करीब सेहरा से काले धुएं के गुबार उठते दिखाई दिए। इसके बाद एयरफील्ड को बंद कर दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में केप वर्डे में स्पेन को बगैर किसी गोल के बराबरी पर रोक दिया। केप वर्डे के 40 साल गोलकीपर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इससे पहले ग्रुप जी के इफ्तिताही मैच में बेल्जियम और मिस्र का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। इसी तरह आज सुबह अमेरिका के मियामी स्टेडियम में ग्रुप एच के मुकाबले में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच भी 1-1 गोल से बराबरी पर खत्म हुआ। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
4: शुक्रिया फैजल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम के स्लोवाकिया दौरे की खबर को अवलियत के साथ शाया किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, भारत और स्लोवाकिया में दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, नरेंद्र मोदी और रॉबर्ट फीको की मुलाकात, दिफा मसनूई जहानत, तजारत और सकाफती रवाबित को नई समत देने का ऐलान। रोजनामा प्रताप ने अपने सफ़े अव्वल पर एक अहम खबर को शाया करते हुए पहली सुर्खी बनाई है, ईरान और अमेरिका के दरमियान तारीखी अमन माहदा स्विट्जरलैंड में 19 जून को बाजाबता दस्तखत होंगे। अमरीका ईरान मुफाहमत नामे का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खैर मकदम किया। अखबारात की कुछ अहम सुर्खियां इस तरह हैं, जेवर एयरपोर्ट का इफ्तिताह, किसानों को पहली

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर गंगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आपने सुना सलीम कुमार द्वारा सितार वादन, राग था अहीरी तोड़ी और तबले पर थे अमान अली खान।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है।

0: लाइव रेडियो लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस न्यूज पॉडकास्ट्स साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहें हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।

0: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। विश्वविद्यालय स्थानीय नवाचार, लोकल इनोवेशन को बढ़ावा देने और कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट के प्रमुख केंद्र हैं। वे स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, अनुसंधान को क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान से जोड़ते हैं और युवा उद्यमियों को इनक्यूबेशन सेंटर्स के माध्यम से आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए सुनिए ये भेंट वार्ता, स्थानीय नवाचारों और कौशल विकास में विश्वविद्यालयों की भूमिका। डॉक्टर मनोज कुमार, कुलपति, सिंघानिया विश्वविद्यालय राजस्थान, पूर्व निदेशक, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से भेंट कर रहे हैं दिलीप झा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: अगर हम बात करें स्वदेशी ज्ञान प्रणाली और इनके आधुनिक विज्ञान के समन्वय की, तो इसमें विश्वविद्यालयों को किस तरह की अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए, और आप अपने अनुभव से एज ए वाइस चांसलर क्या सजेस्ट करेंगे छात्र छात्राओं के लिए, लोगों के लिए और अन्य विश्वविद्यालयों के लिए?
2: जी, जैसा कि आपने बताया कि केंद्र सरकार ने बहुत भारी बजट अनुष्ठान के लिए और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए रखा है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि इस पूरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको काफी एक्टिवेट हो गई है, लेकिन ग्रास रूट लेवल तक ये अभी नहीं पहुंची है। तो हमें बहुत काम करना है, हमने बहुत काम किया है, पॉलिसी बन के इकोसिस्टम बन गया है, शहरी परिपेक्ष में स्टार्टअप का बड़ा रिवाज है, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम यूनिकॉर्न्स भी पैदा कर रहे हैं, लेकिन रूरल परिपेक्ष में, ग्रामीण क्षेत्र में ये ज्ञान अभी पहुंचा नहीं है। वहां पे आज भी हर एक आदमी सरकारी नौकरी की चाहना रखता, तो अगर हमने जॉब सीकर्स की जगह जॉब गिवर्स प्रोड्यूस करने हैं, तो हमें भारत वर्ष के हर एक गांव-गांव में स्टार्टअप इकोसिस्टम को ले जाना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है, हमारे हिंदुस्तान में तकरीबन 1000+ यूनिवर्सिटीज हैं और दे आर स्प्रेड अक्रॉस द नेशन, उनकी बहुत ही बड़ी भूमिका हो सकती है इस स्टार्टअप इकोसिस्टम का प्रचार प्रसार करने में, और दे कैन एक्ट एज द फुलक्रम्स, जो एक शीट एंकर होता है जिसके गिरद सारी जो स्टार्टअप इकोसिस्टम घूमे। तो उसके लिए हमें यूनिवर्सिटीज को फुली ऑन बोर्ड करना पड़ेगा उनके साथ, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र की हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र की हैं, उनको ऑन बोर्ड करके उनको एम्पावर करें ताकि ये स्टार्टअप इकोसिस्टम हम गांव-गांव तक पहुंचा सके।
1: अगर हम बात करते हैं ग्रास रूट इनोवेशन के, कई सारे ऐसी सोशल मीडिया में आते हैं कि बहुत सारे इनोवेटिव वे में जुगाड़ सिस्टम के द्वारा कई बार जो इरिगेशन का काम किया जा रहा है, या मोटर में किस तरह से काम करते हैं, या कूलिंग के लिए काम करते हैं, तो ग्रामीण इलाकों में जो बेहतरीन आइडियाज हैं जो सपोर्ट के अभाव में पनप नहीं पाते हैं, तो क्या विश्वविद्यालय स्तर पर कोई ऐसा रूरल इंक्यूबेशन सेल बनाया गया है या बनाने की योजना है जो इन जमीनी आविष्कारों को या

0: जो विचार हैं उनको वो बढ़ावा दें, उनका पेटेंट में सहयोग करें या उनको बाजार तक पहुंचाने में उसके उत्पाद को मदद करें।
1: देखिए, कई यूनिवर्सिटीज ने इस फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वो इंडिविजुअल सेंट्रिक है, वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुआ कि हर एक यूनिवर्सिटी ये जिम्मेवारी ले। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एक क्रिएट करें।

0: है या रूरल इनोवेशन है, उसकी पेटेंटिंग होनी है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी है, ताकि वो जुगाड़ जुगाड़ ना रह जाए, उसकी रिफाइनमेंट होके हम एक टेक्नोलॉजी के तरीके से उसको बेच सकें, उसको लीवरेज कर सकें, और जो उसका इनोवेटर है वो उसका भरपूर फायदा भी उठा सके। अब विदेश में क्या होता है, अमेरिका जैसे कंट्रीज में, जैसे फेसबुक है, मेटा है, लिंक्डइन है, ये सारे वहां से क्यों पैदा हो रहे हैं, हम गांव देहात में क्यों नहीं अपनी टेक्नोलॉजी को, जिस टेक्नोलॉजी को जो हमने नई इजी मेथोडोलॉजी की है, अगर यूनिवर्सिटी का जो लैब टू लैंड हम फार्मूला लगाएं कि जो पहले लैंड टू लैब लेके जाएं, फिर उसको रिफाइन करें, फिर उसको लैंड में करें, और साथ के साथ उसकी पेटेंटिंग करवा के जो उसका इनोवेटर है उसको फायदा उठा सके। ये इट शुड नॉट बी इंडिविजुअल ड्रिवन कि एक प्रोफेसर साहब अच्छे हैं, वो मोटिवेट होके काम कर रहे हैं, उन्होंने 10 20 50 बच्चों का फायदा कर दिया। हमारी पॉपुलेशन बेस इतना भारी है, और हमें अगर प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत 47 की विजन पे काम करना है तो हमें ऐसे हजारों स्टार्टअप्स चाहिए होंगे। हमें आज जो बच्चा सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है उसको उससे हटाना होगा, उसको एक एंटरप्रेन्योर बनाना होगा, और वो कल को चार और लोगों को नौकरियां दे सके।
1: बहुत अच्छा, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने महत्वपूर्ण बात भी कही है कि युवाओं को नौकरी ढूंढने वाला करने वाला नहीं, अब नौकरी देने वाली मानसिकता से आगे बढ़ना होगा। डिजिटल एज चल रहा है, और हम कौशल विकास की बात करते हैं, कई बार ऐसी बात सामने आई है कि इंडस्ट्री जो है वो लोगों को नौकरी देना चाहती है, लेकिन उनके पास जो निपुण लोग हैं, जो स्किल्ड लोगों की कमी है, जो उन्हें नहीं मिल रही है। तो जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, डिजिटल एज में बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय की बात करते हैं, तो ये जो वर्चुअल लैब्स होते हैं, और खास करके जो आपका सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है AI के द्वारा है, इसका उपयोग किस तरह से तकनीकी कौशल के विकास में किया जा सकता है युवाओं के लिए और लोगों के लिए भी, विज्ञान उद्योग और उसके उत्पाद के उपयोग की समझ के लिए किस तरह से आगे लाया जा सकता है, और क्या विश्वविद्यालय उसमें कोई भूमिका निभा सकते हैं?
0: बिल्कुल निभा सकते हैं। आज प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी सिस्टम में एक डिस्कनेक्ट, जो हमारा प्राध्यापक है, जो टीचर है, वो सोचता है कि मेरा काम बच्चों की क्लास लेना है, इनको पढ़ाना है, ये तो एक काम हो गया, उसको बच्चों को जॉब रेडी करना है। आजकल अगर हम सोचें कि सरकार ही सबको नौकरियां देगी, वो संभव नहीं। प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा हो गया है तो ज्यादा नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में ही मिलेंगी, तो जो प्राध्यापक है उसकी ये जिम्मेवारी तो है ही कि वो क्लास ले, साथ में उसको एक इंडस्ट्री कनेक्ट भी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, वो इंडस्ट्री के लोगों को टच में रहे, प्लेसमेंट ऑफिसर्स उनके HR से टच में रहे, उनको अपनी यूनिवर्सिटी में इनवाइट करे, सिलेबस उसके हिसाब से बनाए ताकि बच्चे की ट्रेनिंग इंडस्ट्री के हिसाब से हो, उनको इंटर्नशिप पे भेजे, फिर उनको जॉब फेयर करा के उनकी प्लेसमेंट करवाए। जो भी इंडस्ट्री है, लोकल इंडस्ट्री है, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी के खेतड़ी माइंस है, बहुत विश्व विख्यात, एशिया की बिगेस्ट कॉपर की माइंस है, तो हम अपने स्टूडेंट्स को और खुद खेतड़ी की माइंस में लेके गए, अंडरग्राउंड 400 मीटर उतरे, तो जैसे बड़े बड़े चूहे के बिल होते हैं उस तरीके से वो माइंस में जाके ट्रेनें लगी हुई हैं, वो जब आप जाते हैं तो ये वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो उस तरीके से आपको लोकल जिस जिस सुविधा है, कोई भट्टे वाला है, कोई बहुत बड़े हलवाई की दुकान है, जैसे हमारे क्षेत्र में हम चिड़ावा बहुत हमारे पास है, एक लालचंद पेड़े वाले हैं जो विश्व विख्यात उनके, तो वो हमें ये सीखना होगा कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो आज करोड़पति या अरबपति बन गए हैं और लाखों करोड़ों रुपए का उनका टर्नओवर है। वो अपने आप में एक लर्निंग का एक सब्जेक्ट है कि हमारे क्षेत्र में बहुत हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ 5-7 मिठाई वाले ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं कि उनको हमें स्टडी करना होगा, उनसे राफ्ता रखना होगा कि कल को

0: एक ही लाल चंद पेड़े वाला नहीं है, अगर उस क्षेत्र में दूध की क्वालिटी अच्छी है तो क्यों ना हम 8, 10, 15 लाल चंद पेड़े वाले ही पैदा कर दें।
1: मतलब उसकी जो तकनीक है, जो बनाने में जो कुशलता है, और
0: जी
1: जो सामग्रियों का एक ना एक रसायन है,
0: हाँ जी
1: उसका सम्मिश्रण है,
0: जी
1: उसमें ऐसी क्या खासियत है
0: हाँ
1: जिसको वो अगर एक बच्चा पढ़े, एक स्टूडेंट पढ़े, तो वो अपना कुछ एस्टेब्लिश कर सकते हैं
0: हाँ ये
1: आपने?
0: जरूरी नहीं है कि पेड़े बनाने हैं, लड्डू बनाइए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई आप एंटरप्रेन्योर बनिए, पकौड़े तल लीजिए, कई लोगों ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन दैट वॉज ए वेरी बिग लेसन। आज हल्दीराम बीकानेर वाला हजारों करोड़ का टर्नओवर है, MBA इंजीनियर्स उनके यहाँ नौकरियां करते, दे आर ग्लोबल ब्रांड्स। आज आप वॉलमार्ट पे USA में चले जाएं, मुस्तफा में सिंगापुर में चले जाएं, तो पूरे के पूरे फ्लोर हल्दीराम के सामान से भरे हुए हैं। तो ये कोई छोटी प्राप्ति नहीं है।
1: जैसे राजस्थान है, वो ग्रामीण भी है, अर्ध शहरी क्षेत्र भी है, रेगिस्तानी क्षेत्र भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वैज्ञानिकों की सामाजिक जिम्मेवारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइंटिस्ट। आप अपने विश्वविद्यालय में उस क्षेत्र की, जैसे कृषि है, जल संरक्षण है, खेती के उपकरण है, जो उस क्षेत्र के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए महत्वपूर्ण है, उनसे किस तरह से अपने बच्चों को एक वैज्ञानिक समाधान खोजने के लिए प्रेरित करते हैं या करने की कोई योजना बनाते हैं?
0: देखिए हमने एक हर्बल गार्डन बनाया है, हमारी एग्रीकल्चर पे रिसर्च, क्योंकि ये एक अरिड या सेमी अरिड एरिया है, पानी की कमी भी है, तो हम ऐसी प्रजातियों पे हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिसर्च कर रहा है कि इस क्षेत्र में ऐसी क्या चीज लगाएं जो कि कम पानी की मात्रा से वो ग्रो कर सके, साथ में वो वाटर के संचयन को मदद करे, कि वो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी भी हमारे यहाँ एक चैलेंज है। उस एक तो पानी बहुत नीचा है, एक उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है, तो हमारी यूनिवर्सिटी अभी इस बात पे रिसर्च कर रही है कि ऐसी कौन कौन से हम पेड़ पौधे प्रजातियां लगाएं ताकि हम इसके, एक तो वो फास्ट ग्रोइंग हो, कम पानी लें, और साथ में वहां के पानी के संचयन को मदद।
1: जब हम एक सफल विश्वविद्यालय की बात करते हैं, तो उसकी पहचान किन मानकों से होती है?
0: देखिए मानक तो इंडिविजुअल स्पेसिफिक हैं, लेकिन जो मेरे मानक हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि हम एक तो बच्चों को हम कितना सक्सेसफुल इन, मैं नौकरी एक पैरामीटर है, लेकिन हम अपने उनको जीवन यापन के लिए कितना तैयार, आइदर दे बिकम गुड ह्यूमन बींग्स या और दे बिकम गुड एंटरप्रेन्योर्स, दे बिकम गुड सन्स, गुड डॉटर्स एंड लेटर ऑन गुड पेरेंट्स आल्सो। हम एक टोटल ऐसे इकोसिस्टम को तैयार करें, एक ऐसे बच्चे को तैयार करें जो भारतवर्ष के विजन विकसित भारत 2047 की तरफ काम करे, वो एक डिसरप्टिव फोर्स ना हो, वो एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स हो, चाहे वो नौकरी में जाए, चाहे वो एंटरप्रेन्योर बने, चाहे वो टीचर बने, चाहे वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वो उसकी चॉइस है, हम उस पर कुछ फोर्स नहीं करना चाहते, लेकिन वो एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा शहरी बने।
1: बहुत अच्छा, निश्चित रूप से सफल होना तभी मायने रखता है कि जब नैतिकता का भी विकास हो और सामाजिक रूप से भी उसका फायदा लोगों को मिलता रहे, तभी वो देश को भी उसका फायदा होगा। डॉक्टर मनोज कुमार जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने जो ग्रास रूट इनोवेशन है, जो विश्वविद्यालयों की भूमिका है, उसमें किस तरह से एक उद्योग सहभागिता की जरूरत है शैक्षणिक संस्थानों के साथ, ताकि सिर्फ एक रोजगार संबंधी बात न हो, बल्कि सामाजिक दायरों में एक नेतृत्व संबंधी भी व्यक्तित्व का विकास हो, इन सब बातों पर आपने नवाचार तकनीक के द्वारा किस तरह से लाभ उठाया जा सकता है, उन सब की बातें की, उन सब के बारे में बताया। इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद झाजी मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: स्थानीय नवाचारों और कौशल विकास में विश्वविद्यालयों की भूमिका, अभी आप इस विषय पर सुन रहे थे ये भेंट वार्ता। डॉक्टर मनोज कुमार, कुलपति सिंघानिया विश्वविद्यालय राजस्थान, पूर्व निदेशक प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से भेंट कर रहे थे दिलीप झा। और इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाई का, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

0: Un.
1: وما جعلنا

خلق الإنسان.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एवियां शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा है कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। श्री पर्वतानेनी ने कहा कि वीटो का अधिकार रखने वाले 5 स्थायी सदस्यों, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमरीका के निर्णय लेने के तौर तरीकों में बदलाव की भी आवश्यकता है। ओमान के तट पर हुई एक दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज बताया कि राजदूत ने बचाए गए चालक दल के सदस्यों से उनके प्रस्थान से पहले मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और इस कठिन परिस्थिति में उनके धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। दूतावास ने विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नागालैंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिकों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। स्वगणना की सुविधा 30 जून तक उपलब्ध रहेगी। घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम अगले महीने की 1 जुलाई से 30 जुलाई तक किया जाएगा। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 76582 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23920 पर था। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। इसके साथ ही ये

당근. घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है. आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला. स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार. और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर. और कार्यक्रम की शुरुआत एक खूबसूरत विचार के साथ करते हैं. स्वतंत्र होने के लिए सबसे पहले दो चीजों से मुक्त होना पड़ता है, बुरे भविष्य का डर और दुखद अतीत की यादें. हम में से कई लोग बीते हुए कल की गलतियों या दुखों को ढोते रहते हैं और साथ ही आने वाले कल की अनिश्चितताओं से डरते हैं और आज को जीना भूल जाते हैं. लेकिन जीवन का सबसे सुंदर सच ये है कि अतीत एक सीख है, सजा नहीं, और भविष्य एक संभावना है, भय नहीं. तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफर. एक नई ऊर्जा, नई सोच, ढेर सारी खुशियाँ और भीगे हुए मौसम के साथ.

अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को, फिल्म थी धरती। और दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज हमारे देश में बड़े बड़े अस्पताल, टीकाकरण अभियान और स्वास्थ्य सेवाओं की जो मजबूत नींव दिखाई देती है, उसकी शुरुआत किसने की होगी? चलिए आज आपको हम मिलवाते हैं एक ऐसी महिला से जिन्होंने राजमहलों की सुविधाएं छोड़कर देश के स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर की। जरा कल्पना कीजिए, नया नया आज़ाद हुआ भारत, सीमित संसाधन, बीमारियों का प्रकोप और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी। ऐसे समय में किसी को आगे आकर यह कहना था कि एक स्वस्थ राष्ट्र ही एक सशक्त राष्ट्र बन सकता है, और यह जिम्मेदारी निभाई राजकुमारी अमृत कौर ने। उन्होंने मलेरिया और क्षय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के खिलाफ अभियान चलाए, मातृ और शिशु स्वास्थ्य को विशेष महत्व दिया और स्वास्थ्य सेवाओं को गाँव-गाँव तक पहुँचाने के प्रयास किए। देश का सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान एम्स, यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसके निर्माण के पीछे किसका महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों? राजकुमारी अमृत कौर का। उन्होंने अथक प्रयास किए, इस संस्थान की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया ताकि भारत में विश्व स्तरीय चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा मिल सके। लेकिन उनका योगदान यहीं तक सीमित नहीं था, वे महिलाओं की शिक्षा, उनके अधिकारों और समाज में उनकी भागीदारी की भी प्रबल समर्थक थी। उनका मानना था कि यदि महिलाएं स्वस्थ और शिक्षित होंगी तभी राष्ट्र सशक्त बनेगा। आज जब हम स्वस्थ भारत की बात करते हैं तो हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने इस सपने की पहली ईंट रखी थी। एक स्वस्थ राष्ट्र केवल अस्पतालों से नहीं बनता है, बल्कि दूरदर्शी नेतृत्व, संवेदनशील नीतियों और सेवा के संकल्प से बनता है। राजकुमारी अमृत कौर ने हमें यही विरासत दी और इस विरासत को आगे बढ़ाना अब हमारी जिम्मेदारी है।

अभी हम सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में ये गीत, फिल्म थी अनाड़ी। और दोस्तों, जब भी पश्चिम बंगाल का नाम आता है, मन में रसगुल्ले, दुर्गा पूजा और रविंद्र संगीत की छवि उभर कर आती है। लेकिन पश्चिम बंगाल का लगभग हर डिस्ट्रिक्ट भारत को एक अनमोल कला विरासत के रूप में दे चुका है। यह केवल एक राज्य नहीं बल्कि चलता फिरता कला संग्रहालय है। चलिए आज एक छोटी सी कलात्मक यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले चलते हैं पश्चिम मेदिनीपुर। यहाँ की मधुर चटाइयाँ केवल बैठने के लिए नहीं होती बल्कि बुनाई की बेमिसाल कला का प्रतीक हैं। और पास ही है पिंगला का पट्टचित्र कला, जहाँ कलाकार गीत गाते हुए चित्रों के माध्यम से कहानियाँ सुनाते हैं, मानो कैनवस बोल उठता हो। अब रुख करते हैं पूर्व मेदिनीपुर का, जहाँ शंख शिल्प पीढ़ियों से जीवित है। इन्हीं शंखों से बंगाली विवाहित महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक शंखा चूड़ियाँ भी बनाई जाती हैं, जो सौभाग्य और संस्कृति का प्रतीक मानी जाती हैं। और अगर बात सुई धागे से भावनाएं बुनने की हो, तो वीरभूम की कांथा कढ़ाई को कोई मुकाबला नहीं। आज यही पारंपरिक कढ़ाई खूबसूरत कांथा सिल्क साड़ियों के रूप में भी दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी है। पुरुलिया के छऊ मुखौटे भी कम आकर्षक नहीं है। रंग बिरंगे ये मुखौटे केवल सजावट नहीं है दोस्तों, बल्कि लोक नृत्य की आत्मा है। नदिया के घूर्णी गांव की मिट्टी की गुड़िया दुनिया भर में अपनी जीवंत अभिव्यक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा लगता है जैसे मिट्टी में सांसें भर दी गई हों। हुगली के जूट शिल्प ने पर्यावरण के अनुकूल हस्तकला को नई पहचान दी है। कूच बिहार की शीतल पाटी एक ऐसी चटाई है जो गर्मियों में शीतलता का एहसास कराती है और कारीगरों के धैर्य की कहानी कहती है। दक्षिण दिनाजपुर में गोमिरा लकड़ी के मुखौटे लोक परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं का अद्भुत संगम है। और पहाड़ों की गोद में बसे दार्जिलिंग को हम कैसे भूल सकते हैं। वहाँ के तिब्बती हस्तनिर्मित कालीन अपनी बारीक बुनाई और सुंदर डिजाइन के लिए विश्व भर में सराहे जाते हैं। सोचिए एक राज्य और कितनी विविध कलाएं। इन कलाओं को बचाना केवल कलाकारों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सभी का कर्तव्य है, क्योंकि जब कोई कला खो जाती है तो उसके साथ इतिहास का एक अध्याय भी हमेशा के लिए बंद हो जाता है। मिट्टी की खुशबू, रंगों का संसार, बंगाल की हर कला में बसता है प्यार। जिलों की पहचान, विरासत का मान, इन्हें संजोना ही है सच्चे भारत की शान। और इसी राज्य के वाइब के साथ सुनते हैं खूबसूरत सा गीत।

अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले को, फिल्म थी बहारें फिर भी आएंगी। और आजकल ज़रा सी थकान हुई नहीं कि मल्टीविटामिन, बाल झड़ने लगे तो सप्लीमेंट, इम्यूनिटी बढ़ानी है तो गोलियां। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति ने हमें पहले से ही कितनी अद्भुत दवाइयां दे रखी हैं? तो आइए जानते हैं कौन से फल और सब्जियां हमें किन समस्याओं से बचाने में मदद कर सकती है। संतरा, मौसमी और नींबू, इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और सर्दी जुकाम से लड़ने में मदद करता है। गाजर, इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन आंखों की रोशनी और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। और टमाटर, इसमें पाया जाने वाला लाइकोपीन हृदय स्वास्थ्य के लिए यानी आपके हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और शरीर के हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करता है। केला पोटेशियम का बेहतरीन स्रोत है, यह रक्तचाप को संतुलित रखने और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में सहायक है। सेब, फाइबर से भरपूर यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने में मदद करता है। पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें आयरन और फोलेट प्रचुर मात्रा में होते हैं जो शरीर में रक्त निर्माण और ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक हैं। चुकंदर, शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखने में मददगार माना गया है और सहन शक्ति बढ़ाने में भी लाभकारी है। आंवला विटामिन सी का खजाना, यह इम्यूनिटी, त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। पपीता, इसमें मौजूद एंजाइम पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और कब्ज की समस्या से राहत दिला सकते हैं। अनार, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जो रक्त स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। लहसुन, पारंपरिक रूप से हृदय स्वास्थ्य और संक्रमण से बचाव में उपयोगी माना जाता है, लेकिन एक बात याद रखिए श्रोताओं, कोई भी एक फल या सब्जी किसी बीमारी का चमत्कारी इलाज नहीं है। असली ताकत है विविधता में, यानी आपकी थाली जितनी रंग बिरंगी होगी उतना ही बेहतर पोषण मिलेगा। और

यदि डॉक्टर ने किसी विशेष कमी के कारण सप्लीमेंट लेने की सलाह दी है तो उसे नज़रअंदाज ना करें, लेकिन बिना आवश्यकता के केवल विज्ञापनों के प्रभाव में आकर सप्लीमेंट्स पर निर्भर होना ठीक नहीं है। शायद इसीलिए कहा गया है कि प्रकृति हर मौसम में वही देती है जिसकी हमारे शरीर को उस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो अगली बार जब भी आप बाज़ार जाएं तो दवाइयों को नहीं, मौसमी फल, ताज़ी सब्जियां और संतुलित भोजन की टोकरी भर कर लाइए। सेहत किसी कैप्सूल में बंद नहीं होती है, वह हमारी रोज़मर्रा की थाली में परोसी जाती है। प्रकृति के करीब आइए, प्राकृतिक पोषण अपनाइए और स्वस्थ जीवन को सेलिब्रेट कीजिए।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम को, फिल्म थी दाग। और दोस्तों, जब घर में मेहमान आते हैं और कोई पूछता है बेटी जरा चाय बना दो, तो यह बिल्कुल सामान्य सा लगता है। लेकिन अगर वही बात बेटे से कही जाए तो कई लोग हैरानी से देखते हैं। आखिर क्यों? क्या खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े समेटना या घर को व्यवस्थित रखना केवल बेटियों की जिम्मेदारी है? नहीं, ये जीवन जीने का कौशल है जो हर इंसान को आना ही चाहिए। दोस्तों, समय बदल रहा है। आज के दौर में महिलाएं घर के साथ बाहर भी अपनी पहचान बना रही हैं। ऐसे में घर की जिम्मेदारियां भी साझी होनी चाहिए और इसकी शुरुआत बचपन से ही होनी चाहिए। अगर बेटा अपना बिस्तर खुद ठीक करना सीखता है, अपनी प्लेट सिंक तक रखना सीखता है, अपनी अलमारी व्यवस्थित रखना सीखता है, तो वो केवल घर का काम नहीं सीख रहा होता है, बल्कि वो अनुशासन, आत्मनिर्भरता और दूसरों के श्रम का सम्मान करना सीख रहा होता है। और हाँ, जैसे जैसे बेटा बड़ा हो, उसे खाना बनाना भी सिखाइए। चाय बनाना, दाल चावल पकाना, अपने पसंद का एक सिंपल सा भोजन तैयार करना, ये केवल रसोई के काम नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है, ताकि भविष्य में वो अपने रोजमर्रा के कामों के लिए किसी पर निर्भर ना रहे। आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल आर्थिक रूप से सक्षम होना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को स्वयं संभाल पाने की क्षमता भी है। उसे बचपन से ही ये समझाइए कि घर के काम कभी भी जेंडर आधारित नहीं होते हैं। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, खाना बनाना या घर को व्यवस्थित रखना, ये महिलाओं के काम नहीं है बल्कि घर के काम हैं, जिनकी जिम्मेदारी घर के हर सदस्य की होती है। और यही सीख आगे चलकर उसे महिलाओं का सम्मान करना भी सिखाएगी। बेटों को विशेषाधिकार नहीं, संस्कार दीजिए। उन्हें अधिकार ही नहीं, जिम्मेदारियां भी सिखाइए। क्योंकि एक अच्छा बेटा केवल परिवार का सहारा नहीं बनता है, वो एक बेहतर समाज की नींव भी रखता है। हम सचमुच समानता अगर चाहते हैं तो उसकी शुरुआत घर से करनी होगी। बेटियों को सपने देखने की आज़ादी दें और बेटों को संवेदनशील बनने की शिक्षा दें, क्योंकि समानता की सीख किताबों से कम, घर के माहौल से अधिक मिलती है। और दोस्तों, आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो हमें ईमेल भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। हमें आपके संदेश का इंतज़ार रहेगा।

अभी हम सुन रहे थे अलका याग्निक को, फिल्म थी जख्म। और दोस्तों, खेल के मैदान में जब कोई खिलाड़ी जीत का जश्न मनाता है, कोई रिकॉर्ड टूटता है, या हार के बाद आंखों में आंसू छलकते हैं, तो उन भावनाओं को हमेशा के लिए सहेज लेता है एक कैमरा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन यादगार तस्वीरों के पीछे होता कौन है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही रोमांचक और चुनौतीपूर्ण करियर की, जिसका रिश्ता खेल और पत्रकारिता दोनों से है, यानी स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिज्म। स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट का काम सिर्फ तस्वीरें खींचना नहीं होता है, बल्कि खेल की कहानी को एक फ्रेम में बयां करना होता है। एक बेहतरीन स्पोर्ट्स फोटो कभी कभी हजारों शब्दों से ज़्यादा असर छोड़ देती है, चाहे क्रिकेट में उड़ती हुई गेंद हो, फुटबॉल में गोल का निर्णायक पल, या एथलेटिक्स में फिनिश लाइन पार करता खिलाड़ी। हर तस्वीर एक कहानी कहता है, लेकिन इस प्रोफेशन में आने के लिए सिर्फ कैमरा चलाना या जानना काफ़ी नहीं है दोस्तों। सबसे पहले ज़रूरी है फोटोग्राफी की तकनीकी समझ, जैसे कैमरा सेटिंग्स, शटर स्पीड, लेंस का चुनाव और सही एंगल की पहचान। खेलों की जानकारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब आपको खेल के नियम और उसकी गति समझ में आ जाती है, तभी आप सही पल को कैमरे में कैद कर पाते हैं। अब सवाल है कि इस क्षेत्र में शुरुआत कैसे करें? आप फोटोग्राफी या मास कम्युनिकेशन में डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके अलावा कई युवा फ्रीलांस फोटोग्राफर के रूप में भी शुरुआत करते हैं, और स्थानीय खेल प्रतियोगिताओं को कवर करके आप अपना एक पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। हालांकि यह काम जितना रोमांचक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। कभी घंटों धूप में खड़े रहना पड़ता है, कभी बारिश में मैच कवर करना पड़ता है, तो कभी एक तस्वीर के लिए सही मौके का लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जब आपकी तस्वीर किसी

0: स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिज्म आपके लिए एक शानदार करियर साबित हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग खेलते हैं इतिहास बनाने के लिए और कुछ लोग उसे कैमरे में कैद करके अमर कर देते हैं।
1: जिस दिन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस बीच श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेट्टेबेलो जहाज

चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दोपहर के 1:10 हुए हैं और रोजाना की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम के साथ जुड़ी है आपकी दोस्त अर्चना गोयल। आप सभी का स्वागत है हमारे खास फिल्मी सफर में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है, एक स्त्री के मन की गहराई, प्रेम की तपिश और त्याग की, मौन शक्ति की कहानी।
1: ओरे माजी, ओरे माजी।
0: जी हाँ, आज बात होगी 1963 की कालजयी फिल्म बंदिनी की। बंदिनी यानी बंधनों में बंधी हुई। लेकिन क्या सच में सिर्फ जेल की सलाखें इंसान को कैद करती हैं, या कुछ रिश्ते, कुछ यादें और कुछ फैसले भी हमें जीवन भर बांध देते हैं? यही सवाल इस फिल्म की आत्मा है।

एस डी बर्मन की आवाज़ में अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना। दोस्तों, बंदनी फिल्म के निर्माता निर्देशक थे विमल रॉय, जिन्होंने दो बीघा ज़मीन और मधुमति जैसी फिल्में बनाई थी। भारतीय सिनेमा के उन चुनिंदा फिल्मकारों में से एक जिन्होंने साधारण कहानियों में असाधारण संवेदनाएं ढूंढी। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे नूतन, जिन्होंने मुख्य किरदार यानी कल्याणी का किरदार निभाया, अशोक कुमार विकास घोष के किरदार में थे, और धर्मेंद्र ने देवेंद्र का रोल निभाया जो कि जेल का डॉक्टर होता है। और दिलचस्प बात ये थी कि फिल्म में अभिनय से ज़्यादा भावनाएं बोलती थीं।

फिल्म की कहानी कल्याणी नाम की महिला कैदी के इर्द गिर्द घूमती है। जेल की चार दीवारी में बंद कल्याणी बाहर से शांत दिखाई देती है, लेकिन उसके भीतर बीते हुए समय की गूंज है। धीरे धीरे पता चलता है कि वो यहाँ तक क्यों पहुँची। एक समय था जब वो प्रेम करती थी, सपने देखती थी, लेकिन जीवन में उसके सामने ऐसे मोड़ रखे कि भावनाएं और परिस्थितियाँ टकरा गईं। सिर्फ फिल्म में ये बात नहीं बताती कि क्या हुआ, बल्कि ये पूछती है कि इंसान के फैसलों के पीछे उसकी मजबूरी, उसका प्रेम और उसका दर्द कितना बड़ा होता है।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारी आज की फिल्म है बंदिनी। कार्यक्रम के साथ मैं

कहा जाता है कि इस फिल्म में नूतन ने अपने करियर के सबसे प्रभावशाली अभिनय में से एक किया था। उनके चेहरे के भाव, आंखों की खामोशी और संवादों का संयम यही फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बने। कई समीक्षकों ने लिखा कि कुछ दृश्यों में उन्होंने बिना संवाद वाले कहानी कह दी। आपको ये भी बता दें कि धर्मेंद्र की शुरुआती महत्वपूर्ण फिल्मों में से ये फिल्म एक थी। ये फिल्म उस दौर में धर्मेंद्र अपने शुरुआती अभिनय सफर में थे। इस फिल्म में उनका किरदार शांत, सहायक और संवेदनशील था।

दोस्तों अब बढ़ते हैं आपके ईमेल्स की तरफ। हमें बहुत से श्रोताओं ने अपने ईमेल्स भेजे हैं, तो सबसे पहले हम लेते हैं ये मैसेज हमें मिला है दुर्गा कॉलोनी हांसी से। भेजने वाले हैं राजू मिकलानी, बबीता मिकलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। ये लिख रहे हैं कि इनको कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है और जानकारी भी बहुत बढ़िया है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा और उनके परिवार के लोग। आप हैं पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन, और ये मैसेज भेजा है सलार पहलगांव कश्मीर से परजादा मिराजुद्दीन ने, और आप हैं गांव फरासी ज़िला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, और बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। आप हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, दत्रेगी से भागवत वर्मा, शांति देवी लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, इनको कहानी और गीत पसंद आ रहे हैं। आप हैं स्वर सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह, गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। और ये भेजा है मैसेज हमें गंज डुंडवारा से, भेजने वाले हैं गंज शमसुल कमर राही, और आप हैं नागर कोहरा ज़िला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। पीपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक और अंकु राघव गुप्ता। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार, और आप हैं बबलेश पवार जी, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा और पूनम गगनेजा जी हमारे साथ जुड़े हैं। नलेश्वर नगर नरबेल महाराज से हमारे साथ जुड़े हैं पीएस नवाटकर, निर्मला, विशाल और सोपान तायपड़े। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर, जस्सी और सीता और गीता। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। आनंद परवर दिल्ली से लखपत राय, वेद प्रकाश चौहान, सूबेदार अमर सिंह जी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, और आप हैं उषा मोहन और विदित मोहन पहाड़गंज से। और ये मैसेज हमें मिला है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही का, महराज जहां का, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने शिद्दत से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। और अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। इस फिल्म का संगीत फिल्म की आत्मा था, संगीत जिसने कहानी को और गहरा किया। फिल्म का संगीत दिया था एसडी बर्मन ने, और गीतों ने फिल्म को सिर्फ सजाए नहीं, कहानी का हिस्सा बना दिया। और जब गीतों की बात चले तो वो गीत कौन भूल सकता है, मोरा गोरा अंग ले ले। ये गीत खास इसलिए भी माना जाता है क्योंकि बोल लिखे थे गुलजार ने, और ये उनके शुरुआती चर्चित गीतों में शामिल हुआ। इसके अलावा मेरे साजन है उस पार, और जाने वाले हो सके तो लौट के आना, आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। और हाँ, बाकी गीत थे शैलेंद्र के।

दोस्तों, बंदनी उस दौर की फिल्मों से अलग थी। यहाँ न शोर था न बड़े बड़े संवाद, लेकिन भावनाओं की गहराई थी। ये फिल्म भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति, उसके निर्णय और उसके भीतर के संघर्ष को बहुत संवेदनशील तरीके से दिखाती है। आज भी जब हिंदी सिनेमा की सबसे प्रभावशाली फिल्मों की बात होती है तो बंदनी का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है।

0: तो दोस्तों, बंदनी हमें ये याद दिलाती है कि हर इंसान की कहानी में कुछ अनकहे अध्याय होते हैं। कभी कभी सबसे गहरी कैद सलाखों की नहीं, किसी की यादों की होती है। इसी एहसास के साथ आज के इस फिल्मी सफर को यहीं विराम देते हुए, जाने से पहले इस फिल्म का गीत सुनिए और महसूस कीजिए उस दौर की संवेदनाओं को। मैं आपकी साथी अर्चना गोयल फिर मिलेंगे सिनेमा के किसी और सुनहरे पन्नों के साथ। नमस्कार।
1: पूरे माझी

कप होएगा। फीफा विश्व कप 2026 विच केप वर्डे ने शानदार प्रदर्शन करदिया विश्व फुटबाल च वड्डी ताकत स्पेन नूं बराबरी ते रोक दित्ता है। दोहां टीमां वल्लों कोई गोल नहीं होया। एक होर मैच विच बेलजियम ते मिस्र विचकार सिएटल स्टेडियम विच खेडिया गया मैच भी एक एक दी बराबरी ते खत्म होया। साउदी अरब ते उरुग्वे विचकार अज ग्रुप एच दा पहला मैच भी एक एक दी बराबरी ते रहा है। तेज गेंदबाज अशोक शर्मा नूं श्रीलंका विच खेडी जा रही एक रोजा क्रिकेट तिकोणी लड़ी लई इंडिया ए टीम विच शामिल कीता गया। उह जख्मी जुद्वीर सिंह दी थां लैणगे। इंडिया ए ने लड़ी विच लगातार दो मैच हारे ने। इंडिया ए दा अगला मैच कल दंबूला विच अफगानिस्तान ए विरुद्ध होएगा। दक्षिणी कैलीफोर्नियन दे मुजावे विच अमरीकी हवाई सेना अड्डे तो उडान भरन तो थोड़ी बाद एक B-52 बोंबर जहाज हादसाग्रस्त हो गया है जिस विच सवार सारे 8 लोग मारे गए ने। अमरीकी फौज ने सोशल मीडिया ते दस्या कि स्थानक समय अनुसार सवेरे लगभग 11:20 ते एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस ते हादसे की खबर मिलन तो बाद हंगामी अमला मौके ते तुरंत पहुंच गया। इस तो बाद हवाई अड्डे नूं बंद कर दिता गया है। हादसे के कारण का हालां पता नहीं लग सकिया। अंत विच चोणवीआं खबरां एक बार फिर सुन लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन विच हिस्सा लैण लई 2 दिना दौरे ते अज फ्रांस के एवियन पहुंचणगे। श्री मोदी ने अज कहा कि पिछले दहाके च देश भर विच बुनियादी ढांचे च रिकार्ड सुधार होया है। 21 जून नूं होण वाली नीट UG 2026 की मुड़ प्रीख्या के मद्देनज़र सरकार ने 22 जून तक टैलीग्राम ऐप राही ऑनलाइन संदेश भेजण ते रोक ला दित्ती है। सुप्रीम कोर्ट ने अज केंद्र ते राज्यां तों उस पटीशन ते जवाब मंगया जिस विच कहा गया कि नागरिकता निवास ते रिहायशी पते दे सबूत वजों आधार कार्ड की दुरवरतों हो रही है ते भारत न्यूजीलैंड विच हो रहे महिला FIH हाकी नेशनस कप के सैमीफाइनल विच पहुंच गया है। इस दे नाल ही खबरां दा राष्ट्रीय बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रदेशक खबरां दा बुलेटिन शामी 6:20 ते होएगा। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के शहर एविया में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी नुमाइश की सताइश की है और ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में आर्ट और कल्चर के रोल पर जोर दिया है। सरकार ने नीट UG के दोबारा इम्तिहान से कबल टेलीग्राम ऐप पर 22 जून तक पाबंदी आयद की है, जबकि मैसेज एडिट करने की सहूलत 30 जून तक मौतल रहेगी। खांसी की रोकथाम के सिर्फ लाइसेंस वाले दवा फरोश ही फरोख्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त पर मरकज और रियासतों से जवाब तलब किए हैं जिसमें आधार को सिर्फ शिनाख्ती सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की अपील की गई है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की सिर्फ गैर मुस्तकिल सीटों की तौसी की तजवीज को मुस्तरद कर दिया है और इस तरह की असलाहत को नाकामी के मुतरादिफ करार दिया है। और न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खवातीन के FIH नेशंस कप में भारत जापान को 1-2 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दो रोजा दौरे पर आज फ्रांस के शहर एवियान पहुंच रहे हैं, जहां वो G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। ये कॉन्फ्रेंस कल शुरू हुई है। जनाब मोदी स्लोवाकिया का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद फ्रांस रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में लगातार 7वीं मरतबा शिरकत करेंगे, जबकि इस अहम कसीर जहती इजलास में भारत 13वीं बार शिरकत कर रहा है। G7 की यह सरबराह कॉन्फ्रेंस भारत के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इस कॉन्फ्रेंस में आलमी खित्ते जनूब की आवाज़ और तशवीश को ज़ोरदार तरीके से उजागर करेंगे। आज शाम वहां पहुंचने पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों वज़ीर-ए-आज़म का बाज़ाब्ता तौर पर खैर मकदम करेंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म सरबराह कॉन्फ्रेंस के एक वर्किंग सेशन

0: में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू है नई शराकत दारियों का क्याम और बैन अलावामी इतिहाद की अजसर नौ तश्कील। इस अजलास में G7 ममालिक के रहनुमा, शराकत दार ममालिक के नुमाइंदे, नीज आलमी बैंक और अफ्रीकी तरक्याती बैंक के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इजलास के मौके पर वजीर आजम मोदी की कैनेडा के वजीर आजम मार्क कार्नी, बरतानिया के वजीर आजम केयर स्टारमर और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ दो तरफा मीटिंगें भी मुतवक्के हैं। इसके बाद जनाब मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों की जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत करेंगे। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम की मसरूफियतों में से एक अहम मसरूफियत कल अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात है। तवक्को है दोनों रहनुमा मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तआवुन के बारे में तफसीली तबादले ख्याल करेंगे। तवक्को है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर कल शाम पेरिस पहुंचेंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वजीर आजम जुमरात की सुबह सरकर्दा चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे। बाद में वो यूरोप की सरकर्दा टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी से मुतालिक प्रोग्रामों में से एक वीवाटेक समिट में हिस्सा लेंगे। तवक्को है कि वो समिट से खिताब भी करेंगे। शाम में वजीर आजम एक कम्युनिटी तकरीब में शिरकत करेंगे और वहाँ आबाद भारत निजात अफराद से मुलाकात करेंगे। इस मौके पर सकाफती प्रोग्राम भी होंगे, जिसमें भारत की शानदार विरासत की झलक पेश की जाएगी और भारत फ्रांस के दरमियान अवाम से अवाम के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को उजागर किया जाएगा। पेरिस से महेश चोपड़ा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फन और सकाफत में लोगों को एक दूसरे के करीब लाने की ताकत होती है। उन्होंने ये बात स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलिग्रिनी के साथ कल स्लोवाकिया के शहर ब्रातिस्लावा में सदारती महल में स्लोवाकिया के फनकारों के शाहकारों समेत वाराणसी से मुतालिक नुमाइश देखने के बाद कही। इस ब्रातिस्लावा में बनारस की एक झलक करार देते हुए वजीर आजम मोदी ने स्लोवाकिया के फनकारों की जानिब से वाराणसी से मुतालिक तख्लीकी पेशकश को सराहा। वजारत खारजा ने कहा है कि यह नुमाइश वाराणसी शहर के लिए वक्फ थी, जिसमें रूहानी, सकाफती और रोजमर्रा की जिंदगी को खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। नीट UG 2026 का दोबारा इम्तिहान 21 जून को होने वाला है और इससे कबल सरकार ने ऑनलाइन मैसेजिंग और सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर इस महीने की 22 तारीख तक बंदिशें आयद की हैं। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने एक महदूद मुद्दत के लिए भारत में टेलीग्राम तक रसाई को महदूद करने के सिलसिले में इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत की हिदायत का खैर मकदम किया है। एक बयान में इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने कहा है कि ये बंदिशें नीट UG के दोबारा इम्तिहान के दिन और उसके अगले रोज तक नाफिज रहेंगी। मजकूरा प्लेटफॉर्म को यह हिदायत भी दी गई है कि वो इस महीने की 30 तारीख तक पहले पोस्ट किए गए मैसेज को एडिट करने की सहूलत को गैर फ़ाल बनाए। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने कहा है कि नीट UG के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सहूलत शुरू होने के 24 घंटे के अंदर ही 10 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए। एजेंसी ने कहा है कि उसकी टीमें सभी उम्मीदवारों के लिए बिला रुकावट रसाई को यकीनी बनाने की खातिर सर्वर पर लोड की लगातार निगरानी कर रही हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। खांसी की रोकथाम के सिरप लाइसेंस वाले दवा फरोशी फरोख्त करेंगे। सरकार ने 1945 के अद्वियात से मुतालिक जाब्तों में तरमीम को नोटिफाई किया है। इसके तहत छोटे गांवों में खांसी की रोकथाम के सिरप की फरोख्त के लिए दी गई रियायत को वापस ले लिया गया है। अब छोटे गांवों में भी इस तरह के सिरप की फरोख्त लाइसेंस वाले दवा फरोशी कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त पर मरकज और रियासतों से जवाब तलब किया है, जिसमें शहरियत, आबाई मकाम और रिहायशी पते के सबूत के तौर पर आधार कार्ड के मुबैना बेजा इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया है। मजकूरा दरख्वास्त में यह हिदायत देने की अपील की गई है कि इसके इस्तेमाल को सिर्फ शिनाख्त की तस्दीक तक महदूद रखा जाए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहाना पर मुश्तमिल एक बेंच ने मरकज और सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को नोटिस जारी किए हैं। मजकूरा दरख्वास्त में यह दलील दी गई है कि फॉर्म 6 के तहत तस्दीक का मौजूदा तरीक़ेकार नाकाफी है और इसका सहारा लेकर लोग मुनासिब और मुतालिक दस्तावेजात के बगैर चुनाव डेटाबेस में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में गुज़श्ता दहाई के दौरान बुनियादी ढांचे को रिकॉर्ड सतह पर जदीद तर्ज पर ढाला गया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर माई जीओवी की एक पोस्ट शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि सरकार

0: भारत के नज़रिए को हकीकत की शक्ल देने की खातिर मुल्क के लोगों के लिए नए सिलसिले का बुनियादी ढांचा तामीर करने की पाबंद है। भारत ने खबरदार किया है कि अगर अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की रुकनियत में तौसी सिर्फ गैर मुस्तकिल मेंबर मुल्कों तक महदूद रखी गई तो सलामती कौंसिल में इस्लाहात की कोशिशें नाकाम हो सकती हैं। अक़वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे हरीश पर्वथानैनी ने यह बात सलामती कौंसिल इस्लाहात से मुतालिक बैन हुकूमती मुज़ाकरात की मीटिंग से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अगर तौसी सिर्फ गैर मुस्तकिल ज़ुमरे तक महदूद रहती है तो सलामती कौंसिल की इस्लाहात निहायत नाकाफी साबित होंगी और अमलन नाकामी के मुतरादिफ होंगी। ख्वातीन हॉकी में न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में भारत FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारतीय ख्वातीन ने पूल ए के अपने दूसरे मैच में जापान को 1-2 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत 6 पॉइंट के साथ पूल ए में सरे फहरिस्त आ गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कैप वर्दे ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए आलमी सतह पर मजबूत टीम स्पेन के साथ मैच ड्रॉ पर खत्म किया और कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। कैप वर्दे के 40 साल गोलकीपर वोजिन्हा ने हरीफ टीम की तरफ से किए गए कई गोल बचाकर शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के शहर एवियान में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी नुमाइश की सताइश की है और ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में आर्ट और कल्चर के रोल पर जोर दिया है। सरकार ने नीट UG के दोबारा इम्तिहान से कबल टेलीग्राम ऐप पर 22 जून तक पाबंदी आयद की है, जबकि मैसेज एडिट करने की सहूलत 30 जून तक मुअत्तल रहेगी। खांसी की रोकथाम के सिरप लाइसेंस वाले दवा फरोश ही फरोख्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त पर मरकज और रियासतों से जवाब तलब किए हैं जिसमें आधार को सिर्फ शनाख्ती सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की अपील की गई है। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की सिर्फ गैर मुस्तकिल सीटों की तौसी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और इस तरह की इस्लाहात को नाकामी के मुतरादिफ करार दिया है। और न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खवातीन के FIH नेशंस कप में भारत जापान को 1-2 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to participate in G7 summit in Avignon, France this evening. Prime Minister Modi praises Varanasi exhibition in Bratislava, emphasizes role of art and culture in strengthening ties. Government bans messaging app Telegram till 22nd of this month ahead of any TUG retest. Message editing feature to remain disabled till June 30th. Supreme Court seeks responses from center and states on plea to use Aadhaar only as identity proof. India rejects proposal to expand only non-permanent UN Security Council seats, calls reform bordering on failure. And India storms into semi-finals of Women's FIH Nations Cup, defeating Japan 2-1 in Auckland, New Zealand. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Avignon, France today on a 2-day visit to participate in the G7 summit. This marks the Prime Minister's 7th consecutive appearance at the G7 summit and India's 13th participation in this crucial multilateral event. This G7 summit holds immense strategic significance for India as the Prime Minister will strongly amplify the voice and concerns of the Global South on the world stage. French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister upon his arrival this evening. Following the reception, Mr. Modi will participate in a high-level working session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity. Earlier, Prime Minister Modi departed for France after concluding his visit to Slovakia. The Prime Minister said the outcomes of his visit to Slovakia will go a long way in strengthening bilateral ties between India and Slovakia. Concluding his visit to Slovakia, Mr. Modi in a social

0: Convergence portrays only a part of the picture. Groups and member states add qualifiers and attach other interlinked parameters as they endorse expansion in the non-permanent category. UNSC reform would be grossly inadequate, bordering on failure, if expansion is limited only to the non-permanent category, as it would fundamentally not change the decision-making power structure of the P5. Groups and member states have waited this long for real and meaningful reforms.
1: In women's hockey, India has stormed into the semi-finals of the FIH Hockey Nations Cup in Auckland, New Zealand. India defeated Japan 2-1 in their second Pool A match. India will next face Uruguay in their last Pool A match of the tournament on Thursday. In the FIFA World Cup 2026, there were four draws on a single day at the World Cup for the first time since 15th of June 1958, exactly 68 years ago. In the first fixture, debutant Cape Verde produced one of the biggest upsets, keeping world number two ranked Spain restricted to a goalless draw at Atlanta. In the second fixture, Belgium and Egypt drew 1-1 in their Group G opening match at Seattle Stadium. In the third fixture of the day, Uruguay played a 1-1 draw against Saudi Arabia in their opening clash at Miami. In the last fixture, Iran secured a hard-fought 2-2 draw against New Zealand in their opening match at SoFi Stadium in Los Angeles. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to participate in G7 summit in Avignon, France this evening. Prime Minister Modi praises Varanasi exhibition in Bratislava, emphasizes role of art and culture in strengthening ties. Government bans messaging app Telegram till the 22nd of this month, ahead of NEET UG retest, message editing feature to remain disabled till June the 30th. Supreme Court seeks responses from center and states on plea to use Aadhaar only as identity proof. India rejects proposal to expand only non-permanent UN Security Council seats, calls reform bordering on failure. And India storm into semi-finals of Women's FIH Nations Cup, defeating Japan 2-1 in Auckland, New Zealand. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की, संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया, संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में

0: वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियो में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
1: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
0: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
1: बिल्कुल जागृति, देखिए, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
0: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक

0: बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
1: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का ये कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
0: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के रूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
3: UNSC reform would be grossly inadequate.
4: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश

0: लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। AIR चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, इस वक्त दिन के 2:30 हुए हैं और पेश करते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार। और आज के जो हमारे कलाकार हैं वे भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास के सबसे सम्मानित गायकों और संगीतकारों में गिने जाते हैं। साथ ही अपनी मखमली और गहरी आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी प्रिय हेमंत कुमार जी के बारे में, जो कि एक महान गायक ही नहीं साथ ही एक प्रसिद्ध संगीतकार और फिल्म निर्माता थे। तो आइए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम की उनके इस गीत से, फिल्म 16 साल से।

0: श्रोताओं, अगर हेमंत कुमार के आरंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। उनका परिवार पश्चिम बंगाल के बहारू गांव से संबंध रखता था। 20वीं सदी के शुरुआती दिनों में ही उनका परिवार कोलकाता आकर बस गया। हेमंत कुमार कोलकाता में ही पले बड़े और यहीं शिक्षा प्राप्त की। यहीं उनकी मुलाकात उनके गहरे दोस्त सुभाष मुखोपाध्याय से हुई, जो बाद में लेखक बन गए। इंटरमीडिएट पास करने के बाद हेमंत कुमार ने यादवपुर विश्वविद्यालय में अभियांत्रिकी की पढ़ाई के लिए प्रवेश लिया, लेकिन संगीत के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए उन्होंने ये पढ़ाई छोड़ दी। कुछ दिनों तक उन्होंने साहित्य में भी हाथ आजमाया और उनकी कई लघु कथाएं बंगाली पत्र पत्रिकाओं में छपी। लेकिन 30 के दशक में उन्होंने स्वयं को संगीत के प्रति समर्पित कर दिया।
1: आपको हमारी पसंद।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और हमारे आज के जो कलाकार हैं वो है हेमंत कुमार। और इस कार्यक्रम को पेश कर रही हूँ मैं, यानी आपकी होस्ट और दोस्त दीक्षा। तो श्रोताओ, अगर हम उनकी आरंभिक संगीत जीवन की बात करें, तो जैसा कि आपको बताया कि उनके जो मित्र सुभाष मुखोपाध्याय थे, उनके प्रभाव में आकर हेमंत कुमार ने 1933 में ऑल इंडिया रेडियो के लिए अपना पहला गीत रिकॉर्ड करवाया। हेमंत कुमार को बंगाली संगीतकार शैलेश दासगुप्ता से काफ़ी प्रेरणा मिली। 1980 के दशक में टेलीविज़न पर प्रसारित एक साक्षात्कार में हेमंत कुमार ने कहा कि उन्होंने उस्ताद फैयाज खान से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली, लेकिन उस्ताद की मौत के बाद उनका ये क्रम टूट गया।

सन 1937 में हेमंत कुमार ने अपना पहला गैर फिल्मी संगीत का डिस्क कोलंबिया लाबिल कंपनी के लिए जारी किया, जिसमें संगीत शैलेश दास गुप्ता ने दी और गीत लिखा था नरेश भट्टाचार्य ने। इसके बाद सन 1984 तक हेमंत कुमार ने हर साल ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया कंपनी के लिए गैर फिल्मी गीत गाते रहे। उनका पहला हिंदी डिस्क इसी कंपनी के लिए जारी हुआ, जिसमें दो गीत कितना दुख भुलाया तुमने ओ प्रीत निभाने वाली काफ़ी मशहूर हुआ।

श्रोताओं, हेमंत कुमार रवींद्र संगीत के सर्वश्रेष्ठ गायक माने जाते थे। उन्होंने 1944 में बांग्ला फिल्म प्रिया बंग्द धाबी के लिए पहली बार रवींद्र संगीत रिकॉर्ड कराया। इसी साल उन्होंने कोलंबिया लाबेल के लिए गैर फिल्मी रवींद्र संगीत का रिकॉर्ड भी करवाया। सन 1947 में बांग्ला फिल्म अभियात्री के लिए संगीत निर्देशन किया। हालांकि इस समय तक उनकी गीतों को काफ़ी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। इसके बाद भी वे किसी बड़े व्यावसायिक सफलता से दूर थे। उनके समकालीन गायकों में तलत महमूद, सुधीर लाल चक्रवर्ती, धनंजय भट्टाचार्य, सत्यजीत चौधरी, रॉबिन मजुमदार, धनंजय मित्र आदि काफ़ी चर्चित थे।

को लोग आज भी याद करते हैं, और जब भी हेमंत कुमार को हम याद करते हैं तो इस गीत की को काफ़ी सराहा जाता है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम एक ही कलाकार, और खूब सारे संदेश हमें भेजे जा रहे हैं, जो कि गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर सिंह गिल, दजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। अगला संदेश जो आया है वो है यासिन अनजान का, जो कि और इनके साथ है साइमान नवाज़, मोहम्मद यासीन, हसन नवाज़, बाबू अहद अहद, मिफ्रा नवाज़, बीबी चाहत, सादिया। अगला जो संदेश है वह है राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, जो हमें लिख रहे हैं मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। अगला जो संदेश आया धर्मेंद्र चीपा का, और ये लिख रहे हैं कि इनको हमारा आज का ये कार्यक्रम काफ़ी पसंद आ रहा है। अगला संदेश है दिग्दर्शन गौर का, मेरठ कैंट से, और इनको भी हमारा कार्यक्रम काफ़ी पसंद आ रहा है। फारूक अली खान ने हमें अगला संदेश भेजा है, और इनके साथ हैं फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा, हरजिंदर शिंदा, गांव नथाना पंजाब से, और इनके साथ है जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। अगला जो संदेश है वो है वडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। अगला जो संदेश है इशक मोहम्मद, छत्तीसगढ़, चूड़ी लाइन, मुंगेली से, और इनके साथ है मोहम्मद इसफाक, खतीजा बेगम, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। अगला संदेश जो है वो है मेरिट कैंड से कविता गौर, दिग्दर्शन जी का। तुलसी मस्कीन हमें भेज रही हैं संदेश, और ये हमें भेज रही हैं शाहदरा दिल्ली से, इनके साथ है वीना मस्कीन, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु, रिहाना खुराना, फागुराम यादव हमें भेज रहे हैं संबलपुर कांकेर से, इनके साथ है ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, राजकुमार डूडी हमें भेज रहे हैं, और ये हमें भेज रहे हैं गांव फरासी, जिला हिसार से, राजू मिगलानी हमें संदेश भेज रहे हैं, और ये हमें भेज रहे हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से। साथ ही अगला जो संदेश आया है हीरा मणि वर्मा का, और इनके ये हमें भेज रहे हैं भाटापारा से। तो श्रोता, हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा क्योंकि थोड़ी सी समय की कमी है। हम सुनवाते हैं आपको हेमंत कुमार की आवाज़ में ये अगला गीत।

श्रोताओं, हेमंदा का निधन 26 सितंबर 1989 को कोलकाता में हुआ। वे हमारे बीच नहीं है अब, लेकिन उनकी रूहानी आवाज़ और बेहतरीन संगीत के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है।

श्रद्धा, इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये एक ही कलाकार कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होंगे ठीक है कार्यक्रम लेकर दिन के 2:30 पर।

हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडियस। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा यानी अर्चना गोयल का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज किया है लता मंगेशकर की आवाज़ फिल्म रजनीगंधा से।

मिस्टर एक्ट्स इन बॉम्बे, अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज, वो कार्यक्रम जिसमें हम आपको सुनवाते हैं गोल्डन इरा के फिल्मी गाने। कार्यक्रम के साथ जुड़ी हूँ मैं, आपकी दोस्त अर्चना गोयल। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत, फिल्म है ऊँचे लोग।

और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं बेटी बेटे फिल्म का ये दो गाना। आवाजी हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 366.3 मीटर पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम उर्दू मजलिस।
1: उर्दू मजलिस के सामईन की खिदमत में शाहनवाज हाशमी का पुरखलूस आदाब। सामईन आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम साइंस की दुनिया। आज इस प्रोग्राम के तहत आपको हम सुनवाएंगे साइंसी मौजूआत और फिल्में, मौजू पर एक दिलचस्प गुफ्तगू। ये गुफ्तगू आप पहले भी उर्दू सर्विस से सुन चुके हैं और आपकी फरमाइश पर ही हम इसे आपके लिए दोबारा नश्र कर रहे हैं। तो लीजिए समाअत कीजिए निमेश कपूर की ये दिलचस्प गुफ्तगू। उनसे महव गुफ्तगू है नईम उद्दीन।
2: आज का ये प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। दोस्तों, एक ज़माना था जब हम फ़ज़ा की तरफ देखते थे तो उसमें हमें उड़ते हुए परिंदे दिखाई देते थे। बड़ा सुकून मिलता था उन्हें देखकर। वक्त बदला, ज़माना बदला, आसमान में हवाई जहाज़ उड़ते हुए देखने लगे। फिर साइंस ने तरक्की की, मज़ीद तरक्की की, और हमने देखा कि हवाई जहाज़ के साथ साथ रॉकेट्स भी हमें दिखाई देने लगे। इंसान चांद पर पहुंच गया और खला में इंसान जाने लगा और बग़ैर पायलट के हवाई जहाज़ भी उड़ने लगे और आज ड्रोन का ज़माना है। साइंस ने तरक्की की, इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ आईं। यूँ तो साइंस से हम हर रोज़ रोशनास होते हैं। अपने ड्राइंग रूम में हम अगर बैठे हों तब भी वहाँ साइंस के नज़ारे, जो इजादात होती हैं, वो हमारे चारों तरफ नज़र आती हैं। अब साइंस का मौजू हो और उसको फिल्मों में जगह ना मिले, ये कैसे हो सकता है जनाब? तो आज हम आपके लिए जो मौजू लेकर आए हैं साइंस नामा में, वो है साइंसी मौजूआत और फिल्में। इस हवाले से बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निमिश कपूर साहब। आप सीनियर साइंटिस्ट हैं विज्ञान प्रसार में, और जहाँ तक फिल्मों की बात है तो बहुत गहरी उनकी पहुँच है वहाँ तक। बहुत सारे मौजूआत पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर निमिश कपूर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है।
3: जी नईम साहब, आपको और सभी सुनने वालों को मेरा आदाब, नमस्कार।
2: डॉक्टर निमिश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्मों में साइंस को मौजू बनाने की जो शुरुआत थी वो कब से हुई, और ये सिलसिला वैसे तो आज भी चल रहा है।
3: जी नईम साहब, जैसे आपको पता है कि देश के सिनेमा का जो तारीख है वो 100 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है।
2: बेशक।
3: और जब देश आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहा था तब पारसी थिएटर को पीछे छोड़ते हुए जो एंटरटेनमेंट का एक नया
2: रूप
3: सामने आया और वो सिनेमा का तब आगाज हुआ। और सबसे पहले लुमेयर ब्रदर्स ने 7 जुलाई 1896 को मुंबई के वॉटसन होटल में 6 फिल्में बनाई जो बगैर अल्फाजों की थीं। अच्छा। उनका स्क्रीनिंग की गई,
2: गोया कि वो खामोश फिल्में थी।
3: जी, और इस तरह से भारत में सिनेमा शुरू हुआ
2: जी।
3: और अगर हम बात करें दादा साहब फाल्के ने जो 1913 में जो खामोश फिल्म बनाई राजा हरिश्चंद्र, तब से हम कह सकते हैं कि एक तरह से भारतीय

0: सिनेमा की शुरुआत वो मानी जाती है, और तब से बहुत सारे कहानियाँ जिसमें आपने जैसे बताया साइंस फिक्शन भी शामिल हुई,
1: जी
0: उसको लेकर भी देश के फिल्मकार काम करते रहे।
1: जी
0: और बॉलीवुड की जो पहली साइंस फिक्शन फिल्म जिसे हम कहते हैं, वो मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, जो शांतिलाल सोनी ने 1964 में बनाई थी। और भारतीय साइंस फिक्शन के फिल्मों में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो 1987 में शेखर कपूर ने जो फिल्म प्रोड्यूस की, जो डायरेक्ट की,
1: जी
0: वो मिस्टर इंडिया उसको कहा जाता
1: बड़ी
0: है।
1: मकबूल फिल्म रही थी ये,
0: जी
1: इसमें अनिल कपूर साहब थे जहाँ तक मुझे याद है, श्रीदेवी भी थी।
0: जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये साल 1987 में रिलीज हुई फिल्म मिस्टर इंडिया भारत की पहली साइंस फिक्शन फिल्म कही
1: जी
0: जाती है,
1: बिल्कुल
0: और शेखर कपूर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अनिल कपूर और श्रीदेवी लीड रोल में नजर आए थे।
1: जी
0: और ये फिल्म एक ऐसे ऑर्फिन लड़के पर आधारित है, जो एक बड़े आलीशान घर में रहता है, और उसके साथ 10 और अनाथ बच्चे भी रहते हैं। और एक दिन
1: जी
0: उस लड़के को एक ऐसा ऐसी मशीन मिलती है जिससे वह कभी भी गायब हो सकता था। तो
1: जी
0: उसके बाद में पता चलता है कि यह मशीन फिल्म में फिल्म के विलेन को, जो देश को तबाह करना चाहता है, उसके जरिए इसको बनाया गया है। और उसके बाद यह लड़का उस मशीन से फिल्म में विलेन को हरा देता है। बहुत अच्छी बेहतरीन फिल्म यह साबित हुई
1: और ये
0: है।
1: ना सिर्फ बड़ों को अच्छी लगी थी बल्कि बच्चों ने भी इस फिल्म को बहुत पसंद किया था।
0: जी जी बिल्कुल
1: डॉक्टर निमिष, अभी आपने जिक्र किया मिस्टर इंडिया का, हालांकि इसके अलावा और भी कई फिल्में रहीं जो बड़ी मकबूल रहीं, साइंस के मौजूद पे बनी थी ये भी, जिसमें काबिले जिक्र हैं कोई मिल गया और रावण और क्रिश 3
0: जी
1: वगैरह वगैरह, और मुझे जहाँ
0: जी
1: तक याद आ रहा है रोबोट भी एक फिल्म आई थी। तो इन तमाम फिल्मों में किस तरह के साइंसी मौजूद थे जिनको शामिल किया गया था?
0: देखिए, ये कोशिश रहती है जो फिल्म मेकर है कि वो जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं
1: जी
0: उसको फैंटेसी या अपने इमेजिनेशन के साथ दिखाए, ताकि साइंस भी पहुंच जाए और उसके फैक्चुअल कोई गलती भी ना हो।
1: नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ये जितनी फिल्में आपने बताई ये हिंदी फिल्मों से इनका ताल्लुक है, ये हिंदी फिल्मों का हम जिक्र कर रहे थे जिनमें साइंस को मौजू बनाया गया। अगर हम जनूबी हिंद की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, तो वहाँ भी बड़ी उम्दा फिल्में ऐसी बनी हैं जिनमें साइंसी मौजूद को जगह दी गई है।
0: बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि जो साइंस के मौजू हैं उनका बहुत खास जो हिस्सा है वो दक्षिण भारतीय फिल्मों में दिखाई पड़ता है।
1: जी
0: और एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2013 में 1600 से ज़्यादा फिल्में दक्षिण भारत में बनी, जिसमें एक अच्छी संख्या जो है वो तमिल फिल्मों की थी, जिसमें बहुत सी साइंस फिक्शन फिल्में भी शामिल थीं। अगर दक्षिण भारत के साइंस फिक्शन फिल्मों पर नज़र डालें तो
1: जी
0: 1952 में भारत की पहली साइंस फिक्शन फिल्म काडू यानी द जंगल थी, और यह तमिल और अंग्रेजी भाषा में बनाई गई थी, जिसको इंडियन और अमेरिकन फिल्म एक हम कह सकते हैं।
1: जी
0: और इसका जो डायरेक्शन है वो विलियम बर्के और T.R. सुंदरम ने किया था।
1: जी
0: और इसके बाद कासीलिंगम के डायरेक्शन में दूसरी साइंस फिक्शन फिल्म कलाई अरसी बनाई गई,
1: जी
0: और 1986 में राजशेखर के डायरेक्शन में फिल्म विक्रम तमिल भाषा में बनी साइंस फिक्शन फिल्म थी।
1: जी
0: और भारतीय सिनेमा में पहली बार इस फिल्म में गानों की रिकॉर्डिंग के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया
1: ये तो
0: गया था।
1: बड़ी अच्छी मालूमात आपने दी कि कंप्यूटर का इस्तेमाल पहली बार किया गया था
0: जी,
1: और उससे पहले हम दूसरी तरह की जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल करते थे।
0: और इसके साथ ही समय समय में जो दक्षिण भारत में नलाया मनिथन,
1: जी
0: जो तमिल भाषा की फिल्म 1989 में बनाई गई, अदिसाया मनिथम भी तमिल में
1: जी
0: 1990 में, आदित्य 369 जो फिल्म है वो तेलुगु में 1991 में इसका प्रोडक्शन हुआ, 2011 में 7 आम अरिवु, 2012 में अम्बुली, 2013 में इरंदाम उलागम, 2015 में आई और इंदु नेत्र नलाई, 2016 में मिनिथन, और 24 24 जैसी फिल्मों के

0: साथ दक्षिण भारतीय सिनेमा में साइंस फिक्शन का एक लंबा दौर चला है, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो साउथ इंडिया सिनेमा है वो जो हमारे और भारतीय सिनेमा, हमारे जो रीजनल सिनेमा हैं उसके मुकाबले साइंस टेक्नोलॉजी में ज़्यादा वहाँ पर काम हुआ है और हो भी रहा है,
1: गालिबन ज़्यादा फिल्में वहाँ बनी हैं
0: जी जी
1: दिगर मकामात के
0: जी। और इसके साथ बंगाली और मराठी फिल्मों में भी साइंस फिक्शन की शुरुआत अच्छी रही है। भारतीय सिनेमा में पहली साइंस फिक्शन बांग्ला फिल्म जो है वो अजांत्रिक ऋत्विक घटक ने 1958 में बनाई थी। इसके बाद सत्यजीत रे ने 1960 के दशक में एक भारतीय अमरीकी साई फिक्शन फिल्म द एलियन बनाने का जिम्मा उठाया, लेकिन ये फिल्म पूरी नहीं हो सकी। बंगाली फिल्मों के तारीख में आखिरी साइंस फिक्शन फिल्म फ्रेंड शताब्दी रॉय ने 2009 में इसको बनाया था।
1: ये तो बात हमने की बॉलीवुड फिल्मों की यानी हिंदुस्तानी फिल्म सनत की हम बात कर रहे थे जहाँ साइंस फिक्शन वाली फिल्में बनी, लेकिन अगर देखा जाए हॉलीवुड पर अगर हम नज़र डालें तो वहाँ भी बड़ी उम्दा फिल्में बनी हैं और बहुत कामयाब भी रही हैं। और जुरासिक पार्क का हम जिक्र कर सकते हैं, एक और फिल्म आई थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ए स्पेस ओडिसी
0: जी, ग्रेविटी है, स्पेस
1: ओडिसी
0: है, बहुत
1: प्राइमर है
0: जी।
1: तो हम चाहेंगे थोड़ा सा आप इस मुतालिक भी बताइए कि हॉलीवुड में जो बड़ी मकबूल फिल्में रही हैं जो साइंस फिक्शन पर बनी हैं।
0: देखिए, जो देश में फिल्म देखने वाले हैं उनका जो रुझान है वो साइंस फिक्शन का अगर हम सब्जेक्ट लें तो वो हॉलीवुड फिल्मों की तरफ ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि उन फिल्मों में एक बेहतर बजट होता है और जो विजुअल इफेक्ट हम कह सकते हैं वो बेहतर, VFX का इस्तेमाल ज़्यादा दिलचस्प तरीके से किया जाता है। तो वैज्ञानिक सोच पर, साइंटिफिक टेम्परामेंट पर आधारित होती हैं वो फिल्में, और उनकी कहानियाँ भी विज्ञान के इर्द गिर्द बुनी जाती हैं जिसमें काफ़ी अच्छे टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बहुत बड़े जो हमारा ऑडियंस है वो हॉलीवुड फिल्मों में दिलचस्पी ले रहा है
1: जी। हॉलीवुड की जिन फिल्मों का आप जिक्र कर रहे हैं इसमें ख़ास बात ये देखने को मिलती है डॉक्टर निमिश के, साइंसी मौजू होने के बावजूद वो दिलचस्पी का बाइस बनी रहती हैं, वो सब कुछ उसमें होता है जो एक आम फीचर फिल्म में होता है।
0: अगर हम हॉलीवुड के साइंस फिक्शन की बात करें तो उनके पास टेक्नोलॉजी और जो VFX है, स्क्रिप्ट है, वो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आप देखें उनका ट्रेडिशन के हिसाब से 1902 में फ्रांस में जो फिल्म बनाई गई थी ए ट्रिप टू द मून, ये 1902 में फिल्म प्रोड्यूस हुई थी, एक बहुत बेहतरीन फिल्म जिसमें म्यूज़िक और एक्शन है, उसमें संवाद नहीं है। और उसके बाद ये साइंस फिक्शन तो हम नहीं कह सकते ट्रिप टू द मून को, 1902 में जो बनी ये एक साइंस फैंटेसी हम ज़रूर कहेंगे, लेकिन उसके लगभग 65 साल बाद 1967 में जो है वो चांद पर चढ़ाई के नाम से फिल्म बनाई गई हिंदुस्तान में। तो उसमें कोई दो राय नहीं कि हमने बहुत कवर किया साइंस फिक्शन के एरियाज में, डॉक्यूमेंट्रीज में हमने बहुत सारे काम किए और नाम भी इफेक्ट, और बहुत सारी फिल्में अभी आई हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम उन विदेशी फिल्मों की बात करें, उन हॉलीवुड फिल्मों की बात करें जैसा आपने कहा था अभी, जैसे ग्रेविटी मुझे याद आ रहा है, साल 2013 में ये रिलीज हुई और इस फिल्म ने एक बेहद लोकप्रियता हासिल की थी, और इस फिल्म में दो एस्ट्रोनॉट की कहानी दिखाई गई है जो स्पेस डिब्री के हमले के बाद जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद करते दिखाए जाते हैं, और फिल्म में सैंड्रा बुलॉक मुख्य किरदार में है। और इसके बाद जो इंटरस्टेलर फिल्म है द लव इज वन थिंग दैट ट्रांसेंड्स टाइम एंड स्पेस, अगर आप सिनेमा को बारीकी से समझ रखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इसी वाक्य पर बेस्ड है। और फिल्म में जब कूपर ब्लैक होल के अंदर जाता है तो उस वक्त सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा होता है, जो टाइम और एक्जिस्टेंस के इस ब्लैक होल में कुछ भी नहीं बच पाता और कोई ऐसी चीज नहीं होती जो इसके पार पा सके। तो ब्लैक होल में फंसने के बाद भी केवल एक चीज जो है वो सस्टेन करती है और वो है प्यार, जो कूपर का उसकी बेटी मर्फ के तरफ होता है।

0: और इसी वजह से फिल्म के मेन टाइटल के नीचे इस लाइन को लिखा गया है, और इस फिल्म में आपको टाइम डायलेशन, वर्म होल, ब्लैक होल जैसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट, जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं,
1: जी
0: वो बहुत ही आम तरीके से उसको विजुलाइज किया गया है।
1: कहने का मकसद ये है कि फिल्म तो है ही वो, लेकिन उसमें बहुत सारी मालूमात भी है जिससे लोग इस्तेफादा करते हैं और उनकी जो नॉलेज है उसमें इजाफा भी होता है।
0: बिल्कुल। और उसी तरह से अपोलो 13, जो साल 1995 में रिलीज़ हुई, और ये अमेरिकी एस्ट्रोनॉट की कहानी दिखाती है, जो अपोलो 13 मिशन में तकनीकी मुश्किलातों के आने के बाद
1: जी
0: स्पेस में फंस गए हैं, और उनके स्पेसशिप में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। और अवतार जो है वो 2009 में रिलीज़ हुई
1: जी
0: फिल्म, उसने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। और इसमें एक बहुत खूबसूरत डायरेक्शन, एक बहुत शानदार स्टोरी प्लॉट दर्शकों के सामने आया,
1: जी
0: और जो हम इस अर्थ पर रहने वाले हैं, वो
1: जी
0: ऐसा मून कहें या पेंडोरा के बारे में उनको पता लगता है, जहां बेशकीमती पत्थर, हीरे जवाहरात छिपे हुए हैं, और उसके जो एक्सटॉर्शन के लिए मिशन को भेजा जाता है। और फिल्म में दिखाया गया है कि खूबसूरत चांद को जो है वो पृथ्वी के लोग अपने एक तरह से कॉलोनी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको खत्म करना चाहते हैं, करने लगते हैं। इस तरह से ये इस फिल्म में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को फिल्माया गया है।
1: और मुझे एक और नाम याद आ रहा है, आर माधवन की एक फिल्म थी रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट,
0: जी हाँ, ये
1: ये
0: भी
1: बड़ी
0: बहुत
1: उम्दा फिल्म थी।
0: बहुत उम्दा फिल्म है, जिसमें एक साइंसदान के जद्दोजहद है, तो उसकी मुश्किलातें किस तरह से उसको झूठे केस में फंसा कर परेशान किया गया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको
1: जी
0: बेगुनाह साबित किया। तो ये एक बहुत अच्छा सिलसिला चल निकला है बॉलीवुड में भी,
1: जी
0: और मुझे लगता है कि आने वाले समय में साइंस और साइंस फिक्शन दोनों को बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा।
1: ये तो बात हुई साइंस फिक्शन की, हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों की बात। हम जानना चाहते हैं आपसे कि साइंस पर बहुत उम्दा डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हैं, थोड़ा सा उसके मुतालिक आप बताइए।
0: जी, पिछले 11 सालों से मैं नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल और इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, और इसमें हमें तमाम उम्दा फिल्में हर साल मिलती हैं, 400-500 से अधिक के नंबर में, जो हिंदुस्तान और तमाम मुल्कों से आती हैं। उसमें क्योंकि समय बहुत कम है, तो मैं एक फिल्म का ज़रूर यहाँ जिक्र करना
1: जी
0: चाहूँगा,
1: जरूर।
0: और वो फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक रियल स्टोरी, ह्यूमन एंगल स्टोरी, और साइंस को कैसे क्लब किया गया, एनवायरनमेंट के मुद्दों को कैसे उठाया गया,
1: जी
0: और वो सेविंग दी सेवियोर, एक फिल्म मेकर हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने किस तरह से बांदीपोरा जो एक वेट लैंड है, और एक जो फ्रेश वाटर लेक है जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा इलाके की, उसमें किस तरह से एक रैक पिकर बिल्ला, जो 9-10 साल का एक बच्चा है, वो जाता है कचरा बीनने के
1: बीनने
0: लिए,
1: वाला जी
0: और वो अपने घर की मदद करता है, उसको कुछ रुपए वो कमा लेता है दिन में, और इस तरह से वो जो इकोसिस्टम है उस
1: जी
0: लेक का, जो तमाम मछलियाँ और जो वहाँ का लिविंग जो इकोसिस्टम है उसको वो बचा रहा है उस गंदगी से, उस पोल्यूशन से। और रामसर कन्वेंशन साइट है ये यूनाइटेड नेशंस की, और इस फिल्म
1: जी
0: को नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल के अलावा दुनिया के तमाम देशों में जो है वो अवार्ड्स मिले, और मन की बात में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस बिल्ला का जिक्र किया जो उस वेटलैंड में, उस बांदीपोरा इलाके में, वोलार लेक में
1: जी
0: उस पोल्यूशन को साफ कर रहा है, और उस बच्चे को जम्मू कश्मीर के सफाई अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया।
1: वाह, बड़ी उम्दा मालूमात आपने दी साइंस फिक्शन के हवाले से। जो फिल्में हिंदुस्तानी फिल्मी सनत में बनी या फिर हॉलीवुड में बनी, उसके अलावा आपने साइंस फिक्शन पर जो डॉक्यूमेंट्रीज बनी, बड़ी उम्दा मालूमात आपने दी। हम उम्मीद करते हैं हमारे सामईन को ये ज़रूर पसंद आया होगा। और आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू था साइंसी मौजूद और फिल्में, इस हवाले से हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर निमिष कपूर साहब से। सीनियर साइंटिस्ट हैं आप विज्ञान प्रसार में। आपका स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए और इतनी उम्दा मालूमात बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया नईम साहब, आपको और सभी सुनने वालों को मैं शुक्रगुजार रहूंगा। आप सभी का कि आप साइंस फिक्शन

0: और साइंस की फिल्में देखेंगे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। तो सामिन, ये था आज का साइंसनामा। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात किसी नए मौजू के साथ। अपने मेजबान नईम को दीजिए इजाजत।
2: अभी आप निमेश कपूर की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनसे महवे गुफ्तगू थे नईमुद्दीन। सामईन, यकीनन आप इस गुफ्तगू से महजूज हुए होंगे और आपकी मालूमात में इजाफा भी हुआ होगा। आइए प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनवाते हैं जहान रंगबू उनवान से ये मालूमाती तकरीर। मुकर्रर हैं जनाब इकबाल मुहीउद्दीन, तो लीजिए समाअत कीजिए।
3: उर्दू जबान के एक मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में ये पूछा है कि हमदमे दरीना कैसा है जहाने रंग बू। इसका जवाब ये है कि ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम आफाक की इस कार गहे शीशा गरी का। कुदरत ने कायनात के हर शय को बहुत खूबसूरती और नरकत से बनाया है, जिसको ज़रा भी छेड़ने से सारा निज़ाम धरम भरम हो सकता है और कायनात की कुदरती खूबसूरती और रंग बू को काफ़ी हद तक मुतासर हो सकती है। दरअसल कायनात की खूबसूरती और उसका रंग बू दिल को मोह लेने वाली शय है, जिसमें 8 सैारे निज़ाम कुदरत के तहत एक मखसूस उसूल के मुताबिक अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। इन सैारों में हरे, नीले, पीले और भूरे रंगों से सजी नहायत खूबसूरत हमारी ज़मीन उछाली हुई गेंद की मानंद खला में मुअल्लक है और अपने महवर पर घूम रही है। चांद, सूरज और दिगर सैारे भी गोल हैं, वो भी अपने अपने महवर पर गर्दिश कर रहे हैं। ज़मीन की तख्लीक के बारे में इस्लामी नज़रिया मुफस्सिरों ने सूरह फलक में एक बहुत बड़े धमाके यानी बिग बैंग की निशानदेही से की है, जिसके नतीजे में कायनात वजूद में आई। साइंस भी यही मानती है। माहिरीन जोग्राफिया जब हमारे इस खूबसूरत सैारे के मुतालिक तहकीक करते हैं तो हवा के इस गलाफ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो कुर्रे अर्ज़ को ढके हुए है। हवा के यही गलाफ जो ज़मीन को पूरी तरह लपेटे हुए है कुर्रे बाद या एटमोसफियर कहलाता है। ये दरअसल कई किस्मों की गैसों का आमेजा है। ये गैस ठोस ज़मीन पर कशीर सख्त ग्रेविटेशन की वजह से कायम रहती है। यह कुर्रे बाद दरअसल हमारी ज़मीन का ही एक हिस्सा है। ज़मीन के चारों तरफ नहायत खूबसूरत नीले रंग के पानी की चादर भी है, जो इस सैारे को दूसरे सैारों पर फोकियत बख्शती है। इसीलिए कुर्रे अर्ज़ को नीला सैारा भी कहते हैं, जो खला से देखने पर बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। कुर्रे अर्ज़ को कुदरत की सनाई ने नहायत ही दिलकश और खूबसूरत बनाया है। ज़मीन पर मौजूद दरिया, समुंदर, पहाड़, झीलें, मादनियात, सब्ज़ार, फल फूल और ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद हवाई गलाफ सब मिलकर माहौल को तश्कील देते हैं। अल्लाह ताला ने कुर्रे अर्ज़ पर इब्तिदा से ही एक इंतहाई मुतवाजन माहौल पैदा किया है, ताकि उस पर बसने वाले इंसान आराम और आसाइश की ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन दुनिया की आबादी में इजाफे के साथ साथ इंसान ने अपनी फहम फरासत को बरूकार लाते हुए मजीद आसाइशों की खातिर बेशुमार नई नई ईजादात की। इन नई ईजादात से सनती मैदान में तो इनकलाबी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, लेकिन कुर्रे अर्ज़ के कुदरती माहौल का तवाजुन बिगड़ना शुरू हो गया। मौजूदा दौर जो इंसानी खुशहाली और तरक्की का दौर समझा जाता है, माहौलियाती आलूदगी के इंतहाई संगीन मसले से दोचार है। माहौलियाती आलूदगी के मुख्तलिफ अकसाम हैं, फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी और ज़मीनी आलूदगी, जिनसे माहौल को खतरा दरपेश हैं। इनमें सबसे ज़्यादा असर अंदाज होने वाली फ़िज़ाई आलूदगी है। ज़मीन चारों तरफ से मुख्तलिफ गैसों के एक दबीस पर्दे में घिरी हुई है, जो कि सूरज से निकलने वाली रोशनी और हरारत को तो ज़मीन पर गुजरने देती है, लेकिन उससे निकलने वाली चंद मुज़िर शुआओं को जज्ब करके जानदारों और नबातात को उनके मोहलिक असरात से महफूज रखती है। कुर्रे हवाई ज़मीन पर हरारत का तवाज़ुन बरकरार रखने में भी अहम किरदार अदा करता है। फिज़ा में मौजूद खुश्क और साफ हवा बहुत सी गैसों का मरकब है। उनमें से कुछ तो बहुत ज़्यादा मकदार में है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बहुत कलील मकदार में पाई जाती हैं, जिनमें आबी बुखारात, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हैं। इनके अलावा फिज़ा में कुदरती तौर पर चंद मुज़िर गैसें मसलन सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह भी मौजूद होती हैं। लेकिन जब तक उनकी मकदार इतनी कलील रहे कि वो किसी जानदार या नबातात के लिए किसी खतरे का बास न बने, किसी किस्म का नुकसान का अंदेशा नहीं होता। लेकिन उसकी मकदार में इजाफा इंसान और माहौल दोनों के लिए नुकसान का बास बन सकता है। आज आलमी सतह पर माहौलियती निज़ाम में तब्दीलियाँ वाक़ हो रही हैं, जिनसे माहौल को खतरा दरपेश हैं। मौसम भी काफ़ी हद तक तब्दील हो रहे हैं, जिसका असर नुमाया है। यह माहौलियती तब्दीलियाँ खास तौर पर दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से रूनुमा हो रही हैं। आबोहवा के नमूने में तब्दीली की एक अहम वजह आलमी हिद्दत या ग्लोबल वार्मिंग है। कुर्रे बाद में जब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन गैस वगैरह की ज्यादती हो जाती है, तो कुर्रे अर्ज़ की गर्मी को अपने अंदर भी जज्ब कर लेती हैं, वापस ज़मीन की तरफ भेज देती हैं। इस अमल को ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जाता है। इस अमल से कुर्रे अर्ज़ की आबोहवा बहुत गर्म हो जाती है, ऐसी सूरत को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। उसका असर यह होता है कि कुदरती आबोहवा के नमूने या पैटर्न में तब्दीली होने लगती है। पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ और ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्री सतह में इजाफा होने लगता है। नतीजा यह होता है कि सैलाब आ जाता है और साहली इलाकों के शहर डूबने लगते हैं। वहाँ की इंसानी वहवानी आबादी बुरी तरह मुतासर हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के असर से बारिश बहुत ज़्यादा होती है, بہت زیادہ بہتے ہوئے پانی کی مقدار سمندروں میں چلی جاتی

जाती है, साफ पानी पीने की कमी हो जाती है, दर्जा हरारत के बढ़ जाने से ज़रात पर बहुत बुरा असर पड़ता है। 2 डिग्री दर्जा हरारत भी अगर बढ़ जाए तो हीट बेल्ट के तबाह होने का खतरा लाहक हो जाता है। दर्जा हरारत के बढ़ने से कुर्रे आबाद की मुख्तलिफ तहों पर भी असर पड़ता है। कीमाई असरात और सनअती आलूदगी के नतीजे में आबोहवा के नमूने में तब्दीली के आसार नजर आने लगते हैं। कुर्रे आबाद की ओजोन तह में कीमाई अज्जा ने छेद कर दिया है, जिससे सूरज की पैरा बैगनी शुआएं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जमीन पर आने लगती है। इस तरह के दरपेश खतरा से माहौल बुरी तरह मुतासर होता है, जिससे इंसानी जिंदगी को खतरा पैदा हो जाता है। जमीन के ऊपर हवा की परत में गैर मतलूबा तब्दीली जो गैसों के निकलने की वजह से होती है पूरे माहौल को मुतासर करती रहती है। ऐसी मुतासर शुदा माहौलियात को माहौल की कसावत कहते हैं। माहौलियत कसावत हैवानी और नबाताती जिंदगी को मुतासर करती है। ये माहौलियाती कसावत 5 अज्जा से पैदा होती हैं: कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और पार्टिकुलेट्स। इनके अलावा दूसरी तरह के अज्जा भी हवा में पाए जाते हैं, जिनसे कसावत के फैलने मदद मिलती है। 1960 की दहाई में माहौलियाती कसावत का मसला सारी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा सवाली निशान बनकर खड़ा हो गया था। दुनिया की तरक्की याफ्ता मालिक ने साइंसी तजुर्बा शुरू किए ताकि माहौलियाती कसावत कम से कम की जा सके, लोगों की जान और माल को कम से कम नुकसान पहुँचे। माहौलियाती आलूदगी से पैदा शुदा नाकाबिल तलाफी नुकसान फितरत के लिए एक ज़बरदस्त खतरा बन गए हैं। आलमी माहौलियाती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि हर साल 6 मिलियन हेक्टेयर पैदावार के लायक ज़मीन नाकुशल इस्तेमाल रेगिस्तान में तब्दील हो रही है। 11 मिलियन हेक्टेयर जंगलात हर साल ज़ाया हो रहे हैं। अम्ल तेजाबियत या एसिड प्रेसिपिटेशन का बराह रास्त असर ज़रख़ी ज़मीनों पर पड़ रहा है। आलमी दरिया हरारत में बतदरी इजाफा हो रहा है। ग्रीन हाउस असरात से साहली इलाके ज़ेर आब हो रहे हैं और मुल्की मीशत गर्काब हो रही है। मुतवाज़ी जहरीली गैसों के अखराज से हिफाजती ओजोन की परत यानी ओजोन लेयर में सुराख वाक़ हो चुका है, जिसकी वजह से जिल्दियाती कैंसर या स्किन कैंसर के वाक़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आबी सिलसिले खुराक या ओशन फूड चेन का तवाज़ुन बिगड़ चुका है और ज़मीन दोज सतह आब यानी अंडरग्राउंड वाटर टेबल में मुस्तकिल कमी महसूस की जा रही है। इस तरह हम देखते हैं कि माहौल को दरपेश खतरात दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिनका तदारुक जल्द से जल्द करना ज़रूरी है। सनअती इनकलाब के बाद से आबोहवा के नमूने पैटर्न में बहुत तब्दीलियाँ रुनुमा हुई। माहौलियाती और सनअती आलूदगी दुनिया के बड़े मसाइल में से एक है। बड़े शहरों और सनअती इलाकों में बिजली पैदा करने वाले कारखानों के आसपास आलूदगी का मसला ज़्यादा संगीन है। सनअतों ने आलूदगी कम करने की तरफ अब तक बहुत लापरवाही बरती है, जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत मुतासर होती जा रही है, क्योंकि इंसानी सेहत के लिए साफ माहौल लाजमी है। सनअतों से निकलने वाले धुएँ, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नुकसानदेह लोहे और कीमिया की वजह से फिजा नाकिस होकर आबोहवा के पैटर्न पर असरअंदाज होती है। फिजा में बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार से कुर्रे अर्ज़ पर कुदरती गैस का तवाज़ुन बिगड़ रहा है। यही वजह है उसकी ज्यादती की वजह से कुर्रे अर्ज़ की गर्मी बढ़ती जा रही है। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। अगर इस तरह हरारत बढ़ती रही तो आर्कटिक और अंटार्कटिक के अजीम कतअ बर्फ़ की चट्टाने पिघलेंगे, जिसके नतीजे में समुद्र की आबी सतह भी इंतहा बढ़ जाएगी। साहली शहरों को और रियासतों का वजूद अक्सर खत्म होने का खतरा पैदा हो जाएगा। सनअतों से खारिज होने वाले नुकसानदेह गैसों में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की गैर जरूरी ज्यादती की वजह से ये मादे बारिश से मिलकर तेजाबी सूरत अख्तियार कर लेते हैं, जिससे पानी तेजाबी हो जाता है। इसे तेजाबी बारिश भी कहते हैं। ऐसी बारिश की वजह से ज़मीन की कुव्वत ज़रख़ेज़ी बर्बाद हो जाती है, पेड़ पौधों की फसलें तबाह हो जाती हैं। न सिर्फ आबी वसायल मसलन ज़मीन से फूटने वाले चश्मे ये मुतासर होते हैं, जिनसे आबी ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि उसके सबब कदीम तामीरात पर भी बुरा असर पड़ता है। इमारतें कमज़ोर पड़ने लगती हैं, आखिरकार गिर जाती हैं। इसे स्टोन कैंसर कहते हैं। माहौल को दरपेश इस तरह के खतरात बहुत तकलीफ देह होते हैं, जिनका फौरी तदारुक बहुत ज़रूरी है। सनअती इनकलाब के बाद चीन का एक तिहाई हिस्सा तेज़ाबी बारिश से बुरी तरह मुतासर हो रहा है, मगर वहाँ के मुकामी सियासी रहनुमा आबोहवा के मेयार को बरकरार रखने के नाकाम कोश हो गए हैं, क्योंकि वो सनअती तरक्यात में मुदाखलत नहीं चाहते। पिछले बरस चीन की फैक्ट्रियों ने 25.5 मिलियन टन सल्फर ऑक्साइड उगला, जिनके कीमियाई असर तेजाबी बारिश के जिम्मेदार हैं। सन 2000 से अब तक 27% फिजाई कसाफत वहाँ की फिजा में घुल गई है, जो तेजाबी बारिश पैदा करती रहती है। इसकी वजह से वहाँ की मिट्टी और खाने की अशिया आलूद हो रही हैं। माहौलियाती आलूदगी का मतलब है बायोगैस केमिकल साइकिल और न्यूट्रिएंट साइकिल का कायम होना। माहौल में सल्फर डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा होने से पेड़ पौधे हैवानात मुतासर होते हैं, जिनसे नाइट्रोजन और फास्फोरस की ज्यादा से ऑक्सीजन को कम करने वाली काही पैदा हो जाती है, जिसे मछलियों और पानी के दिगर जानदारों के खत्म होने का अंदेशा होता है। हमारी तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी और तेज़ी से बढ़ती हुई शहरी ज़िंदगी गुजारने की चाहत ने तो हमें बड़ी बड़ी सन्नतें, बड़े बड़े कारखाने, तेज़ी से दौड़ती हुई मोटर गाड़ियाँ, छोटे बड़े खूबसूरत घर फराहम किए, मगर दूसरी तरफ हमारी शफाफ फिजा इंसान की पैदा करदा चीज़ों ने गैसों के कुछ ज़्यादा मकदार में फिजा में जा मिलाया और हमारी फिजा को कुर्रे आबाद को आलूदा करके छोड़ा, जो कि अब खुद हजरत इंसान की ज़िंदगी के लिए खतरा हो गए हैं। हमारी ज़मीन सारे सैारों में कितनी खुशकस्मत है कि उसको कुदरत ने अपनी सन्नाई से बेहद खूबसूरती बख्शी, कुर्रे आब व कुर्रे आबाद और सब्ज़ादारों से मुजयन किया
اور انسان کو اتنی خوبصورت شے تو

0: 印度德里广播电台，
1: 印度德里广播电台，听众朋友们，请收听西郭玛尔夏玛弹琴的三段。

인도델리 광보 电台 听众 朋友们 现在我们播送 苏米特拉 고하 唱的 印度古典音乐 请收听

印度德里广播电台，接下来请听小知识。最大的有袋动物，世界上现有250种

印度特里广播电台，听众朋友们，这次普通话节目播送到这里，谢谢收听，再会。

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: नमस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की खबरों का खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर और मेरे साथ है मेरे युवा साथी दर्पण टिकिया।
2: नमस्कार, खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराने के लिए आपको हम तैयार हैं, क्योंकि खेल बड़ी खूबसूरत चीज है। खेल की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि उसे आपकी शुरुआत से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने सपनों का पीछा करने के लिए कितनी दूर तक तैयार हैं। यही वजह है कि कभी किसी छोटे शहर का खिलाड़ी दुनिया के सबसे बड़े मंच पर खड़ा दिखाई देता है और कभी कोई अनदेखी टीम दुनिया को चौंका देती है। खेल हमें ये याद दिलाता है कि बड़ा नाम हमेशा बड़ा नहीं होता। उन्होंने भी कभी शुरुआत की थी और आज वो वहां खड़े हैं जहां पर कोई नहीं खड़ा है।
1: और जिंदगी में भी ऐसा ही है, हम अक्सर अपनी परिस्थितियों को देखकर अपने सपनों का आकार तय कर लेते हैं, लेकिन मंजिल अक्सर ये नहीं पूछती कि आप कहां से आए थे, वो सिर्फ ये देखती है कि आप चलते रहे या नहीं। क्योंकि खेल हो या जिंदगी, दुनिया जीतने का सपना हमेशा किसी छोटे से कदम से ही शुरू होता है।
2: और ऐसी ही कुछ कहानियां आज हमारे साथ मौजूद हैं, छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करके कैसे दुनिया भर में अपना परचम लहरा रहे हैं दुनिया भर के खिलाड़ी। किन खबरों के बारे में आज बात करने वाले हैं, आइए आपको बताते हैं, शुरू करते हैं कार्यक्रम को।

0: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आज चर्चा का केंद्र रहेंगे फुटबॉल, साथ के साथ क्रिकेट और हॉकी पर भी कुछ चर्चा करेंगे।
1: और वही साथ में बात करेंगे वर्ल्ड बॉक्सिंग की, चेस की और शूटिंग की भी।
0: लेके जाएंगे सबसे पहले आपको फीफा की दुनिया में, जहां पर विश्व कप की शुरुआत हो ही चुकी है और कैसे छोटी छोटी टीमें उलट फेर करने को तत्पर हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे।
1: और जैसे आपने बताया कि फीफा में जिस तरह से शुरुआत हुई है, तो एक टीम जो भले ही छोटी है लेकिन है बहुत बड़ी, और उस टीम का नाम है केप वर्दे। जिस तरह से मुकाबले में स्पेन के साथ खेलते हुए, स्पेन दर्पण, स्पेन एक वो टीम है जिसको माना जाता है कि वो कभी भी उलटफेर कर सकती है, लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया केप वर्दे ने, जिन्होंने 0-0 ड्रॉ खेला स्पेन के साथ।
0: जी हाँ, बड़ी खूबसूरत बात ये रही कि केप वर्दे एक महज छोटा सा देश है, अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पर एक आइलैंड नेशन है, या एक आर्किपेलागो नेशन है, यानी कि एक आइलैंड्स का समूह है जिस पर केवल 5,25,000 लोग रहते हैं, यानी इतनी कम आबादी वाले इस देश ने सबसे पहले तो फीफा के विश्व कप में क्वालिफिकेशन हासिल किया, ये अपने आप में ही बड़ी बात है। दूसरी तरफ स्पेन, जो कि 2010 की चैंपियन ही नहीं रही, इस साल यूरो भी जीती और उसके अलावा इस बार के विश्व कप में भी फेवरेट्स मानी जा रही थी, उनको 0-0 पर रोकना एक बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। और इस उलटफेर के बाद दुनिया भर में केप वर्दे के चर्चे हैं, और साथ के साथ जब ये रिजल्ट आया और इस मुकाबले में शिरकत करने वाले स्टीवन मोरेरा, जो कि केप वर्दे के डिफेंडर है, उनसे पूछा गया कि कितनी बड़ी बात है ये आपके लिए, आपके देश के लिए, तो उन्होंने कुछ इस तरह अपनी खुशी जाहिर की।
2: I'm just proud of my country, of my teammates, of my family. Honestly, when we wake up this morning, the vibes was good, no pressure, just play free. We did a really good game with our odds. We fight until the end, and our goalkeeper was a crazy game too. So I'm very proud. Yeah.
1: ओके, वर्दे की टीम के सबसे बड़े, सबसे अच्छे खिलाड़ी साबित हुए इस मुकाबले में, वो थे गोलकीपर। उनका नाम वुंजिया है, लेकिन उनका असली नाम वुंजिया के नाम से वो बहुत प्रसिद्ध हैं और यूरोप में भी बहुत सारी लीग्स में वो खेलते हैं। और वुंजिया का असली नाम है जोसिमर होसे इवोरा डियास। ये 40 वर्षीय गोलकीपर हैं और इन्होंने अपने पहले ही मुकाबले में फीफा वर्ल्ड कप में दिखा दिया कि यदि आपके अंदर क्षमता है, आप में टैलेंट है, तो आप कभी भी किसी भी मंच पर अपने आप को साबित कर सकते हैं।
2: गोलकीपर वाज़ डूइंग

0: इसके अलावा एक अन्य मुकाबले में बेल्जियम और इजिप्ट की टीमें आमने सामने थी और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुकाबला भी ड्रॉ रहा और इस मुकाबले में गोल अवश्य हुआ। हालांकि जिस तरह से हमने आपको स्पेन और केवर्दे के मुकाबले में के बारे में बताया था तो उसमें गोल रहित वो मुकाबला था, लेकिन ये मुकाबला गोल हुआ इस मुकाबले में। और इस मुकाबले में पहले गोल किया इजिप्ट की तरफ से इमाम अशोर ने, 20वें मिनट में उन्होंने गोल किया और वहीं इस गोल को बराबर किया बेल्जियम के लिए मोहम्मद हेनरी ने, उन्होंने 66वें मिनट में गोल को बराबर किया।
1: इसके अलावा अगला मुकाबला जो हमें देखने को मिला वो देखने को मिला ईरान और न्यूजीलैंड के बीच। ईरान और न्यूजीलैंड के बीच हुए इस मुकाबले का भी वही रिजल्ट रहा, मुकाबला रहा ड्रॉ। लेकिन कमाल की बात ये रही कि इस मुकाबले में दो और दो गोल दोनों टीमों की तरफ से दागे गए। न्यूजीलैंड के ई जस्ट ने 7वें मिनट में पहला गोल दागा और उसके बाद 55वें मिनट में एक और गोल दागने में वो कामयाब रहे। इसके अलावा ईरानी टीम की अगर बात की जाए तो रेजानेन ने 30वें मिनट में और मोहेबी ने 64वें मिनट में गोल दागा। न्यूजीलैंड की टीम वैसे तो अगर आप फीफा रैंकिंग को देखें तो शायद इस विश्व कप में खेलने वाली सभी टीमों में सबसे निचली रैंकिंग वाली टीम है। 85वें स्थान पर फीफा मेंस रैंकिंग में न्यूजीलैंड का स्थान है, लेकिन जिस तरह से कल का मुकाबला उन्होंने खेला उससे उनके कोच डैरन बेजली खासे खुश हैं।
2: I'm super proud. I thought it was a really strong performance. I thought the whole day was good. You know, it's a really good atmosphere, good stadium, good pitch. I thought the game was really good. You know, two good teams playing good football. I thought we created lots of chances to score, had some really good possession. And I think we've maybe taken a few people by surprise in showing who we are and the football that we can play. We've got some very good players in our squad that have gone and performed very well today. So we're disappointed to not win. You know, when you're leading twice in a game, you know, you come away with that what if, and you know, we're probably as close as we'll ever be to winning a game at a World Cup, and you know, we couldn't quite do that today. But yeah, we're in the World Cup. We didn't lose, stayed in the game, scored goals and created chances. So for us it was a really strong performance that I'm really proud of.
0: और इसके अलावा एक अन्य मुकाबले में सऊदी अरेबिया और उरुग्वे की टीमें आमने सामने थी, ये मुकाबला भी ड्रॉ रहा। और दर्पण कल तो बड़ा एक, अगर कहें तो ऐतिहासिक दिन था क्योंकि सभी मुकाबले कल ड्रॉ हुए। और जिस तरह से ये मुकाबला सऊदी अरेबिया और उरुग्वे के बीच खेला गया, इसमें उरुग्वे की तरफ से मैक्सिमो अरेजो ने गोल किया और वहीं अब्दुल्ला अल अमीरी ने सऊदी अरब के लिए गोल किया।
1: जी, यह है कि सऊदी अरेबिया की ये वो टीम है जिसने पिछले वर्ष ग्रुप स्टेज में पिछले संस्करण में अर्जेंटीना को हराया था और इस बार यूरुग्वे को हराया है, जो कि दो बार की चैंपियन रही है, दो बार की ओलंपिक चैंपियन भी रही है। लेकिन कुछ कमाल के मुकाबले आज भी खेले जाने वाले हैं। आज का मतलब मेक्सिको में आज के हिसाब से, लेकिन भारतीय समय के अनुसार 12 बजे के बाद वो मुकाबले शुरू होंगे। लेकिन कौन से हैं वो मुकाबले जिन पर नजर होगी, आइए उन पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहला मुकाबला होने वाला है फ्रांस बनाम सेनेगल। फ्रांस की वो टीम जो पिछले साल शिखर के पास पहुंचकर लड़खड़ा गई थी, आपको याद होगा फाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ इनका मुकाबला हुआ था जो कि शूटआउट में गया था और अंततः रनर्स अप के खिताब के साथ संतोष करना पड़ा था फ्रांस की टीम को। आज सेनेगल के खिलाफ ये उतरेंगे पहले मुकाबले में।
0: वही दूसरे मुकाबले में इराक और नॉर्वे की टीम

0: आमने सामने होंगी। और माना तो यही जा रहा है कि यूरोपीय टीम नॉर्वे बहुत अधिक शक्तिशाली है, लेकिन इराक भी दमखम के साथ खेलेगी और ग्रुप आई का ये मुकाबला निश्चित तौर पर एक बेहतरीन मुकाबला साबित हो सकता है।
1: लेकिन उसके बाद जो मुकाबला सुबह 6:30 बजे शुरू होगा, उस पर सिर्फ और सिर्फ उन दो देशों की नजरें नहीं होंगी जो कि उस मुकाबले में शिरकत करेंगे, बल्कि विश्व भर की नजरें होंगी, क्योंकि ये मुकाबला होने वाला है अल्जीरिया बनाम अर्जेंटीना। पिछले साल लियोनेल मेसी आए थे भारत के दौरे पर, जिसके बाद हमने ये भी देखा कि भारत में उनकी लोकप्रियता किस हिसाब से है, तो भारतीय प्रशंसकों की भी नजर रहने वाली है इस मुकाबले पर। सुबह 6:30 बजे इस मुकाबले का आगाज हो जाएगा।
0: इसके अलावा ग्रुप जे के मुकाबले में ऑस्ट्रिया और जॉर्डन की टीमें आमने सामने होंगी, और ये भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे मुकाबला खेला जाएगा। और ऑस्ट्रिया की टीम हालांकि यूरोपियन टीम है और जॉर्डन की टीम एशिया की टीम है, लेकिन जिस तरह से दोनों टीमें खेलती हैं, क्योंकि यूरोपियन खिलाड़ी जो हैं वो काफ़ी आक्रामक फुटबॉल खेलते हैं और बॉडी टू बॉडी जो एक गेम कहा जाता है उसको खेलने में वो काफ़ी माहिर है, लेकिन जॉर्डन के भी खिलाड़ी किसी से कम नहीं है।
1: और ये है कि जॉर्डन का ये पहला विश्व कप है, तो उन पर भी सबकी नजरें होने वाली हैं। तो कुल मिलाकर नजरें बनी रहेंगी फीफा विश्व कप पर, और खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे।
0: और एक मुकाबला जो काफी यहाँ भारतीय दर्शक भी इसको देखना चाहेंगे, और वो है पुर्तगाल वर्सेस DR कांगो के बीच। पुर्तगाल के खिलाड़ी के लिए क्यों हम देखेंगे, क्योंकि उसमें खेलेंगे
1: क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
0: Yes!
1: तो ये मुकाबला कल 10:30 बजे शाम को खेला जाएगा, भी हमारी नजरें बनी रहेंगी।
2: Yes, he's round the last defender, onto his right foot.
1: या और इसके अलावा एक और विश्व कप इस वक्त चल रहा है यूके में, यानी कि इंग्लैंड में ये खेला जा रहा है, और हम बात कर रहे हैं अब क्रिकेट की। जी हाँ, महिलाओं का T20 विश्व कप इस वक्त खेला जा रहा है, जिसमें भारत की टीम भी शिरकत कर रही है। आपको याद ही है कि पिछले वर्ष किस तरह हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में 2025 का ODI विश्व कप भारत ने अपने नाम किया था, और अब T20 विश्व कप लाने की होड़ में लगी हुई है वो टीम। जी हाँ, शुरुआत अच्छी हुई, चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को भारत ने हराया अपने पहले मुकाबले में, और लेकिन अगला मुकाबला भारत का थोड़ा सा आसान माना जा रहा है, नीदरलैंड्स के खिलाफ वो मुकाबला है, लेकिन वो मुकाबला खेला जाएगा कल। आज ग्रुप बी के दो मुकाबले खेले जाने वाले हैं, सबसे पहला मुकाबला होने वाला है न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच, तो दूसरे मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड होने वाली है आयरलैंड के खिलाफ।
0: और वहीं जिस तरह से न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी, तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और जिस तरह से कई बड़े खिलाड़ी न्यूजीलैंड की टीम में खेल रहे हैं, तो माना यही जा रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी सी स्ट्रांग हम कह सकते हैं, लेकिन श्रीलंका भी कम नहीं है। और वहीं श्रीलंका के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं चमारी अट्टापट्टू, उनके ऊपर पूरी निगाहें रहेंगी, कप्तान भी हैं टीम की। और वहीं जिस तरह से न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, तो वहाँ अमेलिया कर हैं जो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और बैटिंग भी अच्छी करती हैं, वो कप्तान है न्यूजीलैंड की। तो कुल मिलाकर एक अच्छा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है।
1: लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है। याद दिला दें, न्यूजीलैंड डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन उनकी शुरुआत उतनी खास हुई नहीं है। पहला मुकाबला जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ न्यूजीलैंड ने खेला, वो रोमांचक मुकाबला था, आखिरी ओवर तक गया, जिसमें न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा। तो वहां इंग्लैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में श्रीलंका को भी एक तरफा हार मिली है, तो दोनों ही टीमें हार कर आ रही हैं इस मुकाबले में। और आपको यह बता दें कि T20 विश्व कप के इतिहास में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है, 7 मुकाबले इन दोनों टीमों ने खेले हैं और 7 के 7 न्यूजीलैंड ने जीते हैं। लेकिन आज एक क्लीन स्लेट के साथ शुरुआत होगी, और इस बात को मानती है न्यूजीलैंड की अनुभवी खिलाड़ी मैडी ग्रीन, जिन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो पहला मुकाबला हारे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आज हमारी टीम अपनी परफॉर्मेंस अपनी पोटेंशियल के अनुरूप नहीं दे पाई थी, लेकिन हम पुरजोर वापसी करने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं।
3: You know, we put a competitive total on the board, and unfortunately our fielding let us down. It was just a really bad day at the office for the group, but you know, we've got no choice but to move on really quickly, and obviously

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल,

झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: आती नई नई ताजा जड़ें निकलती हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन क्षमता बहुत ज्यादा होती है
1: जी।
0: इसको एक प्रक्रिया भी कहते हैं, इसको कहते हैं रूट प्रूनिंग
1: जी।
0: और आज की भाषा में जो रेट्यून मैनेजमेंट डिवाइस आ रही है
1: जी।
0: हालांकि वो उस तरह की इफेक्टिव नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा एक वो है जो वो साइड से उसको काटती चली जाती है
1: जी जी आ रही
0: है। तो उसमें जो है उसमें वो जो हैरो से काटते हैं उससे वो इतना नहीं काटता, मैं सेटिस्फाई उससे नहीं हूं। अगर उसको कोई आज भी हल मिल जाते हैं जो पेड़ियों को जोतने के लिए कुछ कुछ लोग अपने बैल रखते हैं और हल रखते हैं, अगर पेड़ी को आप हल से जुतवा के और साइड से गहरी जुताई करके और उसमें खाद डाल के पानी लगाएं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और उसमें उसमें फास्फोरस भी डालना चाहिए और पोटास भी डालना चाहिए
1: जी जी।
0: लेकिन अब एक बात और जरूरी है ध्यान रखने
1: जी,
0: का
1: जी, जी।
0: इसमें शॉर्टकट ना अपनाया जाए।
1: अच्छा,
0: शॉर्टकट कैसे? कुछ किसान भाई क्या है, ऊपर से डीएपी उसमें छिटक दिया पेड़ी में, ऊपर से पोटास छिटक दिया। देखो ये जानना जरूरी है कि ये जो नाइट्रोजन की तरह ये गहराई तक नहीं जाता, ना फास्फोरस ना पोटास
1: जी जी।
0: फिर वो ऊपर पड़ा रहेगा, फिर उसके आपको सफेद सफेद धब्बे दिखाई देंगे। किसान फिर क्या करता दिमाग में, अरे भाई ये तो डीएपी खराब है, ये तो ये खराब है। उसको नॉलेज का अभाव है कि वो नीचे भी जाके ऐसे ही पड़ा रहता है जमीन में भी
1: ऐसी रहता है।
0: जब जड़ जाती है उसके पास तक तभी वो मिलता है, वो नहीं जाता इधर उधर। तो इसलिए कभी भी इनको ऊपर से ना डाला जाए, अन्यथा आपका जो पैसा है वो बर्बाद होगा, जो लेबर लगी है वो भी बर्बाद।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपकी जो आईपीएल की पोलियोलाइटिस है ये यहाँ बिजनौर में तो नहीं मिलती है?
0: ये देखो मिलनी तो चाहिए हर एक जगह, लेकिन आप जो हमारे ऑथराइज्ड डीलर हैं जो आईपीएल के
1: जी,
0: आप उनसे पता करो, हो सकता है जिसके पास आप
1: तो जरूर डाल लेंगे।
0: हाँ हो सकता है जिसके पास आप गए उसके पास ना हो।
1: पोटास तो हम आईपीएल की लगाते हैं, और भी कई जो इसके प्रोडक्ट हैं वो भी लगाते हैं आईपीएल के, वो अच्छी कंपनी आती है, अच्छा रिजल्ट आता है उसका
0: जी जी। तो अगर आप वो है तो शिवनंदन जी का अगर नंबर हो तो आप हमें अपना नंबर इनके द्वारा हम ले लेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास में पॉलीहेलाइट भिजवाया जाए। बहुत ही बेहतरीन उर्वरक है और उसमें चार पोषक तत्व होते हैं और काफी मात्रा में होते हैं। और एक और बात है कि ये ऑर्गेनिक होता है, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो और भी बहुत अच्छा है। और शुगर केन के में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट।
1: देखो अब तो पूरा हो लिया मामला, अगले साल ऊपर वाले ने जिंदगी रखी तो आपसे जरूर संपर्क करेंगे, जरूर मिलवाऊंगा। आपका प्रोग्राम हम सुनते चले आते हैं, जब से आपने ये गन्ने की पाठशाला शुरू की तब से ही मैं ये प्रोग्राम जरूर ही सुनता हूँ।
0: बहुत बढ़िया,
1: काफी लाभ मिलता है आपकी बात सर, बहुत ही हम इसमें काफी फायदा हुआ हम अपनी खेती में काम
2: जी।
0: देखिए ये इंडियन पोटास लिमिटेड देखो पहली ऐसी कंपनी है कि जिसने गन्ने की पाठशाला शुरू की है
1: जी,
0: और किसी की आपने नहीं सुनी होगी। हम गन्ने के किसानों के लिए सभी तरह के बेहतरीन प्रोग्राम करते रहते हैं,
1: बहुत ही अच्छे प्रोग्राम साहब आपके, बहुत ही अच्छे, बहुत ही लाभ होरिया किसान।
2: ठीक है, आपके आसपास के और भी किसान हैं उनको कार्यक्रम से भी जोड़ो, ठीक है?
1: जोड़ते हैं हम, बताते बिल्कुल, हैं
2: बिल्कुल।
1: जो मतलब असल में बात एक होगी ना शिवनंदन लाल जी, क्योंकि रेडियो से तो बहुत कम लोगों के संपर्क हो गए, और जो मतलब ये फोन वाले हैं आज के टाइम में लोग अपने अपनी बातें और देखते हैं और चैनलों को देखते हैं, जो असल चैनल है वो ये है, यहाँ से हमें सही पता मिल, सही
2: ठीक ठीक बिल्कुल। अभी आपके किसी साथी का फोन आ रहा है, आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब ये हमारे जागरूक किसान थे और कार्यक्रम के विधिवत श्रोता भी हैं, और जो भी कार्यक्रम में जानकारी दी जाती है तो उसको भी ध्यान से सुनते हैं और अपने जो भी फसल लगाते हैं उस पर वो लागू करते हैं। और दूसरे किसान भाई भी लाइन पे हैं। हेलो,
3: नमस्ते सर जी।
2: नमस्ते,
0: नमस्कार जी।
3: मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से
2: जी। डॉक्टर सितारे
3: जी, मैं बहुत याद करता हूँ आप लोगों को, बहुत फायदा उठाता हूँ खेती बाड़ी से।
0: हम तो आपकी सेवा के लिए ही है, फायदा उठाइए खूब।
2: तो आप वहाँ कार्यक्रम कैसे सुनते हैं?
3: रेडियो टीवी पर सुनता हूँ, टीवी पर।
2: अच्छा, डीटीएच के थ्रू?
3: जी डीटीएच के थ्रू।
2: हाँ बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो आपको ठीक सुनाई देता है?
3: खूब साफ सुनाई देता है।
2: तो दिल्ली के कार्यक्रम कौन कौन से सुनते हैं?
3: ये सुनता हूँ, खबर सुनता हूँ, भेजो किसान भी सुनता हूँ।
2: तो आज क्या सवाल है डॉक्टर साहब से? गन्ने की पाठशाला में
3: पानी बरस गए थी तो कुछ खेती में खराबी आ गई।

0: मुर्गन।
1: कितना पानी भरा हुआ है?
0: बरस गया था लेकिन अब सूख रहा है आस्ते आस्ते। जी
1: अच्छा, पत्ती पीली पड़ गई है।
0: जी पत्ती पीली पे मुरझा गई है।
1: कितनी देर भरा रहा, कितने दिनों भरा रहा पानी?
0: 3 दिन
1: 3 दिन। कितना, कितने फुट? तो
0: 1 फीट है। 1 फीट
1: 3 दिन में तो नहीं मुरझानी चाहिए। कौन सी वैरायटी है?
0: देहात वाली है, पर्व के लिए हम लोग रोपते हैं।
1: अच्छा, तो खाद वाद डाला था?
0: खाद डाला था। जी
1: अब बिल्कुल पानी निकल गया, बिल्कुल सूख गया या अभी कुछ नमी है?
0: जी जी अभी नमी है, गीलापन है थोड़ा सा।
1: तो गीलापन है तो थोड़ा उस यूरिया डालिए। नीचे की पत्ती पीली है या ऊपर की?
0: ऊपर वाली ज्यादा है।
1: अच्छा, ऊपर की है। तो फिर सल्फर की कमी है आपके इसमें। सल्फर डालिए आप, WDG सल्फर डालिए 5 किलो एकड़ का,
0: ठीक है जी,
1: 85% वाला।
0: सही सही सलाह के लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
2: ठीक है डॉक्टर सितारे, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हमारी बात बीच में रह गई थी, टॉप बोरर की आप बता रहे थे कि टॉप बोरर के रोकथाम के लिए बताना था आपको, जो गोभ में कीड़ा
1: हाँ, तो उसके लिए जो मैंने बताया CTPR आता है एक, जो हमारा IPL का भी आता है पोटजन के नाम से, तो उसका जो है 150 ml की CC है, जो 1 एकड़ के लिए होती है, उसको 400 लीटर पानी में डाल के और उसकी ड्रेंचिंग की जाती है, कूड़ों में नोजल ढीला करके और उसकी ड्रेंचिंग धार से वो पूरा करते हैं। प्लांट पे भी डालते रहो, पूरा तर होकर नीचे जाता रहेगा।
2: तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि जो इसका गोभ में कीड़ा जाता है वो नीचे से जाता है?
1: देखियो, जाता नीचे से नहीं है, लेकिन जो ये केमिकल है
2: जी
1: ये सिस्टेमेटिक है। सिस्टेमेटिक मतलब जड़ जब इसे एब्जॉर्ब करेगी तो ये पूरे प्लांट में समान रूप से फैल जाएगा, तो उसमें जहाँ भी कीड़ा होगा वहीं पे वो मर जाएगा। ये रूट से नहीं आता, ये ऊपर से ही होता है। जब देखिए अंडे होते हैं ना उसके, जो ये अंडे देते, इसकी एक पूरी वो है लाइफ साइकिल, तो
2: जी
1: अंडे देते हैं, अंडे से जो है फिर वो बनती है, कहते हैं तितली बनती है, तितली फिर उससे गिंडार बनती है, गिंडार जो है वो जाती है फिर हर एक प्लांट में। और एक और मैं बात बताऊं आपको,
2: जी
1: आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और ऐसे क्वेश्चन करने से ही किसानों का ज़्यादा लाभ होता है। एक जो तितली है वो 400 अंडे देती है और 400 ही गिंडार बनती है उसमें,
2: जी
1: और शिवनंदन जी 400 गिंडार 400 गोभ में जाएंगी, एक में, दो या तीन नहीं जाती किसी भी गोभ में। उनको पहले से ये पता चल जाता है कि इस गोभ में अंदर पहले से गिंडार है, वो दूसरा गोभ ढूंढेगी। 400 गोभ 400 पौधों को नष्ट कर देती है केवल एक तितली।
2: बहुत बड़ा
1: उसके
2: नुकसान होता है
1: बहुत
2: गन्ने
1: बड़ा,
2: का।
1: उसके लिए जो जो ट्रैप है, सोलर ट्रैप जैसे फेरोमन ट्रैप, इन तितलियों को ट्रैप करने के लिए किया जाता है। जब तितली को ही मार लेंगे तो उससे जो 400 अंडे होंगे, एक तितली को मारने से 400 पौधे हमारे बचेंगे। तो इसलिए किसान भाई, और अगर कुछ भी ना करें, एक एक चीज कर लें, एक बल्ब लगा दें एक कोने पे, उसमें नीचे पानी भर दें, पॉलीथीन लगा के गड्ढा करके पानी भर दें जिससे कि पानी रहे, उसमें मिट्टी का तेल डाल दें और ऊपर बल्ब लगा दे, तो वो बल्ब पे आएंगी सारी
2: हाँ,
1: तितली
2: उजाले
1: रात
2: पे
1: में,
2: आते हैं।
1: और वो आके नीचे गिरेंगी, उसमें जो है वो मर जाएंगी, चिपक जाएंगी पानी में। इस तरह से भी किसान लाभ ले सकते हैं। बाकी ऐसी बहुत सारी डिवाइस, फेरोमन ट्रैप और सोलर लाइट ट्रैप आ रही हैं, जो उसमें फील्ड में जगह जगह खड़ी कर दें तो उसमें वो सारी इकट्ठी होकर मर जाती हैं।
2: जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो।
0: नमस्कार सर।
2: हाँ नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
0: सर सुखबीर सिंह बोल रहा था, ग्राम कलौंदा डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर से। सर
2: जी सुखबीर सिंह जी, क्या सवाल है आपका?
0: पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने किसानों के लिए ये गन्ने की पाठशाला का आयोजन आपने शुरू किया है, तो इससे किसानों को काफी बेनिफिट होगा। और मेरा सवाल डॉक्टर नीतू सिंह मैडम से है,
2: जी,
0: ये मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर हम DAP का प्रयोग बुआई के समय में नहीं कर पाए हैं या खेत की तैयारी में नहीं कर पाए हैं, तो क्या हम इसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, फसल में, खड़ी फसल में लगा सकते हैं?
2: जी डॉक्टर नीतू सिंह जी,
3: हाँ आप लगा सकते हैं, लेकिन जो DAP है ना, नाइट्रोजन है इसमें आपका और फास्फोरस है, तो आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन एक जो आपका संतुलित जो उर्वरक है उसका आप ध्यान रखें, किसी भी मात्रा को अधिक ना लगाएं। जैसे इसमें आप नाइट्रोजन या यूरिया का यूज़ करते हैं ना, उसको यूज़ ना करें ज़्यादा। अधिक लगाने से जो पौधे होते

0: वो उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी वो होती है, कमज़ोर पड़ती है और वो कमज़ोर होके गिर भी जाते हैं। तो आप इसे संतुलित मात्रा में लगाएं।
1: जी मैम, मैम एक सवाल और था मेरा है कि
0: जी
1: मैं क्या जैसे किसान डीएपी को लगाते हैं या जिंक लगाते हैं तो डीएपी और जिंक को एक साथ मिला के लगा सकते हैं
0: नहीं,
1: क्या?
0: बिल्कुल नहीं लगा सकते इसे। आप जब लगाएंगे ना इसे, तो ना आपको
1: जी
0: जिंक मिलेगा, ना ही कोई फास्फोरस, अन्य कोई तत्व नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ये इनमें एक प्रतिक्रिया होती है रासायनिक, जैसे रिएक्शंस हो जाते हैं ना, तो इस टाइप का
1: जी
0: रिएक्शन होता है कि वो एक तरह का जिंक फॉस्फेट बन जाता है और वो बिल्कुल बेकार होता है, वो पौधों को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप कभी ऐसे वो ना करें,
1: तो
0: इसको
1: क्या
0: दोनों को
1: तरीका
0: मिल के ना
1: अपनाएं?
0: लगाएं। अलग अलग प्रयोग करें उसका, एक साथ ना लगाएं उसको। और आप मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, बिना जांच के आप कभी भी कोई भी तत्व होते हैं ना, मृदा की जांच बहुत आवश्यक है, उसके आधार पे ही आप रिकमेंडेड डोज का ही प्रयोग करें।
1: सुखबीर जी, सुखबीर जी, देखिए डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बताया, संतुलित उर्वरक का उपयोग करें। मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है अवेलेबिलिटी ना रही हो बोते समय, तो आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बाद में अगर डालें तो कैसे डालें। देखियो, सबसे पहले हमें फास्फोरस का ये समझना पड़ेगा कि फास्फोरस जहाँ डाल देते हैं वहीं पड़ा रहता है, वो इधर उधर नहीं जाता नाइट्रोजन की तरह। नाइट्रोजन तो अगर थोड़ी भी नमी होगी तो पूरे खेत में नीचे जड़ों तक भी बराबर पहुंच जाएगा, गहराई में भी और साइड बाई साइड भी चलता है ये। तो अगर आप छूट गया है आपसे बोते समय, अगर डीएपी नहीं डाल पाए हैं, पहली बात तो डीएपी ना मिले तो एनपीके ले सकते हो आप कोई सा भी, और तो एनपीके के द्वारा भी वो आपका फास्फोरस जा सकता है। एक टीएसपी और आ रहा है, ट्रिपल सुपर फास्फेट, वो भी ले सकते हो, और सिंगल सुपर फास्फेट भी ले सकते हो, उसमें भी फास्फोरस मिलता है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि केवल डीएपी अगर नहीं मिल रहा तो सिंगल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, और आप दूसरे एनपीके जो उर्वरक हैं उनके लिए भी आप उनका भी चुनाव कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी वजह से आप डाल नहीं पाए तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप उसकी जुताई करिए। जुताई करते समय अगर हल मिल जाए और उसके कूड़ के पास से हल निकालो और उसमें फिर डीएपी डाल दो और पानी लगा दो तो वो नीचे पहुंच जाएगी जड़ के,
2: जी
1: तो उसको
2: बिल्कुल
1: मिलाना मिट्टी में बहुत जरूरी होता है।
2: जी, शुक्रिया जी फ़ोन करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब ने काफ़ी विस्तार से बताया कि किस तरीके से आप डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, क्योंकि समय अब समाचारों का है, उसके बाद मिलते हैं।
3: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ, किसान भाई।

0: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें।
1: हमारा ये कार्यक्रम अनवरत जारी रहेगा 7:05 समाचार के बाद भी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। अब सुनिए हिंदी में समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए

0: भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की ये लगातार 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। एवियों में इस समय सम्मेलन का आउटरीच सत्र चल रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में आज अमरीका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने का प्रयास किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जा रही सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी अब यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UGC परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता को बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेशों को भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। इसमें गांवों में अब कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट को वापस ले लिया गया है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकी कार्य है जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर ही किया जाएगा। दार्जिलिंग के कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री छाया श्रमिक योजना के अंतर्गत दार्जिलिंग पहाड़ियों और तराई डुअर्स क्षेत्र में बंद पड़े 25 चाय बागानों को फिर से खोलने के प्रयास किए जाएंगे। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनन से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि दक्षिणी लेबनन पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल इस समझौते को अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इसराइल की अपनी प्राथमिकताएं हैं और वो लेबनन में बफर जोन में तब तक बना रहेगा जब तक आवश्यक होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल होंगे आमने सामने। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।
2: किसान बहन भाइयों, आपका एक बार फिर स्वागत है प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला में। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड।

0: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। IPL की पॉलीहेलाइट।
1: जैसा कि हमारा सजीव प्रसारण चल रहा है और गन्ने के पाठशाला के अंतर्गत आज का जो हमारा विषय है गन्ने की फसल में मानसून पूर्व उर्वरक प्रबंधन, और जो हमारे विशेषज्ञ हैं इस समय आपको बताते चलें, डॉक्टर नीतू सिंह प्रोफेसर कृषि प्रसार MIT नोएडा गौतम बुद्ध नगर से हैं, और डॉक्टर उपेंद्र सिंह टेवतिया जो कि मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं इंडियन पोटास लिमिटेड नई दिल्ली से।
2: बिल्कुल किसान बहन भाइयों, आप फोन कर सकते हैं 0112342108 पर और 0112342108 पर, ये दोनों फ़ोन नंबर हैं स्टूडियो के, आप इन नंबरों पर बात कर सकते हैं हमारे विशेषज्ञों से, और गन्ने की फसल से कोई भी समस्या जो है या जानकारी चाहते हैं आप समाधान ले सकते हैं और जानकारी तुरंत विशेषज्ञ आपको देंगे।
3: तो डॉक्टर तेवतिया जी, डॉक्टर नीतू सिंह जी, दोनों का एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से इस समय भारत सरकार का भी जोर है कि संतुलित उर्वरक प्रयोग का, खेती बचाओ उस पर बात कर रहे हैं, तो क्या गन्ने की फसल में जो हमारे जैविक उर्वरक हैं और रासायनिक उर्वरक दोनों का संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? डॉक्टर नीतू सिंह जी,
4: आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया। जो जैव उर्वरक है और रासायनिक उर्वरक
3: जी,
4: दोनों में ये अंतर है कि जो जैव है उसमें जीवन है, रसायन अलग होता है। तो जो जैव उर्वरक होते हैं, जैसे आपका एजोस्पिरिलियम है, एजिटोबैक्टर है, और आपका PSB है, फॉस्फेट सोलराइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, तो ये जो जैव उर्वरक है ये इसमें क्योंकि रसायन नहीं है तो कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं होगा। यदि आप इसे अधिक मात्रा में भी डालते हैं तो भी इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन रसायन का दुष्प्रभाव दिखता है अगर आपने उसे अधिक मात्रा में प्रयोग किया। तो जैव उर्वरक हमारे किसान भाइयों को उसका भी अपने खेतों में प्रयोग करना चाहिए। हाँ, ये है कि जानकारी के अभाव में वो नहीं कर पाते हैं, जब जानकारी नहीं होती है तो वो उसका प्रयोग नहीं कर पाते। ये जो जैव उर्वरक है, अगर आप अपने गन्ने की फसल में इसको पहले, जैसे हम जब इसकी अपनी शुरुआती उसमें होती है, हम इसका बीज का जो उपचार करते हैं उस समय भी आप इसका ले सकते हैं। आप इसे गन्ने का जब आप उपचार करते हैं जड़ का और उसको आप लगाते हैं, तो आप उसे कम से कम 1 घंटे अगर डुबो के रखें, जिसमें आपका एजोस्पिरिलियम है और आपका एजिटोबैक्टर है, ये PSP, तो ये क्या करते हैं, आपको जो हमारी मृदा में जो पोषक तत्व होते हैं उसको उपलब्ध कराते हैं। जैसे PSB है, फॉस्फेट सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया, फॉस्फेट के फॉर्म में हमारा जो पौधा होता है गन्ने का वो लेता है उसे, तो इसे वो बैक्टीरिया इसको आपके पौधे को उपलब्ध कराता है। ऐसे जो एजोस्पिरिलियम है, एजिटोबैक्टर है, ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। जो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन होती है 79%, तो उसका जो स्थिरीकरण होता है वो हमारे ये जो बैक्टीरिया है जो हमारे पहले से ही है मृदा में होते हैं, लेकिन बहुत अधिक रसायन का यूज़ करने से ये भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इनको समय समय पर डालते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा मृदा का स्वास्थ्य जितना अच्छा रहेगा फसल की गुणवत्ता और उसकी उतनी अधिक यील्ड हमें उत्पादन प्राप्त होगा।
3: कहने का मतलब यह है कि उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करना चाहिए, रासायनिक उर्वरक साथ में जैविक उर्वरकों का भी प्रयोग करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो, हाँ नमस्कार, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: अनुराग बोल रहा हूँ।
3: हाँ अनुराग जी, कहाँ से?
5: जीतोपुर बुलंद शहर
3: जी। क्या सवाल है आपका?
5: मेरा सवाल नीतू मैम डॉक्टर नीतू सिंह से है जी, कि यूरिया की जैसे कमी चल रही है तो हम गन्ने की फसल में यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं और कितनी मात्रा में कर सकते हैं?
3: जी डॉक्टर साहब,
4: यूरिया का देखिए स्प्रे आप 2% इसका जो घोल होता है वो, लेकिन 90 दिन की फसल होनी चाहिए।
5: अच्छा,
4: इससे पहले आप नाइट्रोजन तो लगा ही लेते हैं बेसल डोज के रूप में।

0: भी लगाते हैं, स्प्लिट डोज भी लग जाती है। लेकिन अगर आपको, लेकिन उसका प्रयोग भी आप करेंगे तो एक तो आप ये भी देखेंगे पत्तियों में यदि पीलापन, जैसे यूरिया की कमी, ये नाइट्रोजन की कमी से जो पीलापन होता है ना पुरानी पत्तियों में आता है, उसके ऊपर की पत्तियों में नहीं आता है। और अगर आप इसका 2% घोल है उसका छिड़काव करते हैं, जैसे 2 किलो 100 लीटर में उसका वो करके 1 एकड़ में स्प्रे करते हैं, तो उससे भी अच्छे आपको रिजल्ट इसके प्राप्त होते हैं।
1: ठीक है मैम, धन्यवाद।
2: ठीक है अनुराग जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई जागरूक हैं काफ़ी, और डॉक्टर साहब जानना भी चाहते हैं कि उनके मन में जो भी सवाल होते हैं कि, लेकिन डॉक्टर तेवतिया जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे मानसून पूर्व उर्वरक प्रबंधन में किसान भाई क्या गलतियाँ करते हैं?
3: देखिए, मानसून पूर्व में किसान भाई गलती करते हैं कि एक तो जो बेसल डोज है कभी कभी वो नहीं डालते हैं, और दूसरा मिट्टी टेस्ट नहीं कराते, बिना मिट्टी टेस्ट करे डालते हैं। अगर मिट्टी टेस्ट कराएंगे तो हमको पता चलेगा हमें कौन कौन से उर्वरक डालने हैं।
2: डॉक्टर साहब एक किसान भाई फोन ले लें।
3: हाँ
4: हेलो,
2: हेलो,
4: नमस्कार सर।
2: नमस्कार जी,
4: मैंने कॉम्प्लेक्स और यूरिया लगाया था एक में,
3: क्या
2: ठीक
3: लगाया?
2: है।
4: कॉम्प्लेक्स और यूरिया लगाया था एक में,
3: अच्छा
2: हाँ
3: कॉम्प्लेक्स,
2: कॉम्प्लेक्स,
3: हाँ जी
2: ठीक
3: सर,
2: है।
3: ठीक है।
4: कुड़कुड़ लगाया था मैंने वो अभी, तो उसमें पानी कब लगाना चाहिए?
3: आप ये बताओ कितनी बड़ी है आपकी जो गन्ने की फसल?
4: 6-7 फुट की हाइट में।
3: 6-7 फुट की हाइट है
4: हाँ जी,
3: तो, और आपने लगाया है अभी कॉम्प्लेक्स लगाया है और यूरिया लगाया है,
4: जी।
3: मिट्टी चढ़ गई नहीं चढ़ी अभी?
4: हाँ मिट्टी चढ़ गई,
3: तो मिट्टी चढ़ने के बाद लगाया पहले लगाया?
4: मिट्टी चढ़ने के बाद लगाया ये अभी।
3: तो मिट्टी चढ़ने के बाद में क्या उसमें बखेरा है खेत में?
4: नहीं, कौन कौन लगाया था?
3: अच्छा, मिट्टी चढ़ाने के लिए कूड़ कूड़ लगाया। देखिए अब ये है कि आप यूरिया, अगर मिट्टी चढ़ चुकी है तो वैसे तो अब आपकी 7 फिट की फसल हो गई है, आपको यूरिया लगाने की जरूरत नहीं थी। नंबर एक। नंबर
4: जी।
3: दो, जो आपने एनपीके कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर लगाया है उसमें भी एक पार्ट कौन सा लगाया आपने कॉम्प्लेक्स?
4: ये कॉम्प्लेक्स उसका आता है 11 का
3: अच्छा,
4: जी।
3: तो उसमें जो आपने वो लगाया, अब ये मैं समझ नहीं पा रहा आप, क्योंकि एनपीके तो बनाता नहीं है ये, तो
4: नहीं
3: वो कौन सा
4: नहीं
3: लगाया? क्योंकि उसमें एनपीके तीनों थे या कोई कौन सा
4: नहीं नहीं
3: है?
4: हाँ जी, उसमें तीनों ही आते हैं, तीनों ही।
3: हाँ, तो तीनों थे तो वो जो है आप फास्फोरस और पोटास देखो ऊपर से डालना की सिफारिश नहीं है
2: वो फायदेमंद नहीं है
3: और
2: फसल
3: वो
2: के लिए।
3: फायदेमंद नहीं है, वो आपको फायदा नहीं देगा, उसमें थोड़ा आपका पैसे का नुकसान हो गया। लेकिन नाइट्रोजन जरूर मिल जाएगी आपकी, नाइट्रोजन उसमें भी होती है आपके कॉम्प्लेक्स में भी, जब आप कह रहे हो तीनों है। लेकिन ये मैं आपको अभी बता रहा था मैं इसमें पहले किसान को कि ये अगर मिट्टी चढ़ाने से पहले आप कूड़ में डालते और उसके
4: हमें
3: बाद पानी लगाते तो बहुत अच्छा फायदा मिलता आपको।
4: अब अभी करीब 4 फुट की हाइट है उसमें, एक में
3: हाँ
4: उसमें लगाया है अभी, उसमें मिट्टी नहीं चढ़ी है।
3: हाँ तो उसमें कूड़ में लगाओ और उसमें मिट्टी चढ़ाओ, फिर देखिए उसमें बहुत फायदा करेगा।
4: जी। और पानी कब लगाएं?
3: पानी चढ़ाते ही, मिट्टी चढ़ाते ही लगा दो।
4: मिट्टी चढ़ाते ही?
3: हाँ, अगर घास हो तो रुक जाओ 2-4 दिन, घास को सूखने दो।
4: हाँ घास तो हो जाती है।
3: हाँ, तो घास को सूखने दो थोड़ा सा और पानी लगा दो, क्योंकि उसका असर जब ही होगा जब पानी लगाओगे आप खाद का,
4: जी।
3: ठीक है? अंदर अपना इतने वो मिट्टी में रहेगा, जब भी पानी लगाओगे तभी उसका असर आएगा, जब भी जड़ों को मिलेगा।
4: यही पूछना था सर
2: ठीक है
3: जी।
2: अनुराग जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब आप जिस तरीके से हमारे किसान भाई ने भी देखो वही गलती की, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि जो उर्वरक प्रबंधन में किसान भाई मानसून पूर्व डालते हैं तो क्या गलतियाँ करते हैं?
3: तो मैंने जैसा बताया आपको कि ये ए, ए, ए, कभी कभी ऊपर से पोटास डाल देते हैं, ऊपर से डीएपी डाल देते हैं, तो ये गलतियां हैं। और फिर अच्छी तरह से जब खेत की जिस समय तैयारी होती है उस समय आपकी सॉइल की जो टेस्ट रिपोर्ट है आपके सामने होना चाहिए और उसके हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट कितना डालना है, एनपीके कितना डालना है, उसी के हिसाब से कौन सा बेसल डोज में बुआई के समय डालना है और कौन सा उसके टॉप ड्रेसिंग करनी है।
2: तो जैसे आपने सूक्ष्म पोषक तत्वों के जिक्र किया है, तो उसमें जैसे आयरन हो गया।

0: बुरान है, तो इसका प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए?
1: देखिए, जो भी न्यूट्रिएंट है, ये सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट,
0: जी,
1: इनकी सिफारिश बेसल डोज में की गई है। और अगर इस मिट्टी टेस्ट में इनकी कमी ना दिखाई दे तो इनको बेसल डोज में नहीं डालते हैं। दूसरा कारण है, दूसरा टाइम होता है कि अगर इनकी डेफिशिएंसी के सिम्टम खड़ी फसल पर दिखाई दे तो इनको स्प्रे द्वारा, छिड़काव द्वारा इनको पूर्ण किया जा सकता है। क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो कहते हैं इनको, कहते ही इसलिए हैं कि इनकी जो है बहुत सूक्ष्म मात्रा की जरूरत होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं इन्हें, क्योंकि इनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा में जरूरत होती है।
0: अब एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो, हेलो,
2: लाल जी, राम राम।
0: राम राम जी,
2: गढ़गंगा नए वहां से जिला हापुड़ में घनश्याम बोल रहा हूँ मैं।
0: हाँ जी घनश्याम भाई, क्या हाल हैं आपके?
2: बढ़िया, आना तुम्हारी बात सुनकर और भी सही हो जाए। डॉक्टर साहब को सब राम राम।
1: राम राम जी, राम राम।
0: तो क्या सवाल है आपका?
2: मेरा ये सवाल है, ये मैंने जो है हल चढ़वा के मट्टी चढ़वा दी गन्ने में।
0: यानी गन्ने में पहले आपने उसकी हल चलवाया, उसके बाद में मिट्टी चढ़ा दी?
2: हाँ जी।
0: और कोई उर्वरक वगैरह डाला?
2: हाँ, मैं ये तो पूछ रहा हूँ, देसी खाद डाल के हल चलवाया आपको।
1: क्वेश्चन क्या है आपका?
2: आप क्वेश्चन ये है जी कि इसमें जो है खाद बखेरना चाहिए अपना?
0: इन्होंने देसी खाद डाली,
1: देसी खाद आपने बखेर के हल चलवा दिया।
2: हाँ।
1: फसल कितनी बड़ी है?
2: फसल बड़ी है कोई दो डेढ़ मीटर की।
1: दो डेढ़ मीटर की? कब बोई थी? मार्च में? मार्च?
2: हाँ, ब्योर है।
1: हाँ, ब्योर है। बोई कब थी? गेहूं काटने के बाद?
2: हाँ, गेहूं में ही थी।
1: अच्छा, गेहूं में ही बो दी थी।
2: हाँ।
1: तो अब ऐसा है कि जो आपने खाद डाल दी, कूड़ी की खाद डाली है?
2: हाँ, कूड़ी का डाला ही मेरा, गोबर का।
1: अच्छा, अभी मिट्टी नहीं चढ़ाई?
2: ना, मिट्टी चढ़ा दी हल से।
1: अच्छा, हल से मिट्टी चढ़ाई है।
2: हाँ।
1: अच्छा, तो मिट्टी चढ़ा, वो तो ठीक कर दिया आपने जो करा, तो हाँ। उसमें अगर कूड़ बिल्कुल बंद हो गए ऊपर से या थोड़े थोड़े वो खाली है बीच में से?
2: ना, खाली है, एक बिलांत खाली है।
1: तो अब वो खाली नहीं रहना चाहिए, मिट्टी चढ़ाने का तो मतलब ये है पूरा भरना चाहिए बीच में से भी। तो अब उसे उसे करोगे नहीं करोगे? अब
2: तो खुदाई कर देंगे दोबारा फिर।
1: खुदाई क्या, उसमें मिट्टी चढ़नी चाहिए, लेकिन अगर खाद डालना चाहते हो आप तो उसमें मिट्टी चढ़ाने से पहले कूड़ों में डाल के उसके बाद मिट्टी चढ़ानी चाहिए।
2: हाँ, कूड़ों में डाल के खाद भी हल चलवाया था हमने।
1: अच्छा, वो देसी खाद भी आपने कूड़ों में ही डाला?
2: हाँ,
1: वो और बढ़िया किया आपने, बहुत अच्छा काम किया है।
2: तो अब इसी बात को पूछ रहे हैं कि उसमें ये यूरिया खाद बखेरना चाहिए? अब
1: वो डालना तो पहले ही चाहिए था मिट्टी चढ़ाने से पहले, मैं यही तो कह रहा हूँ आपको।
2: अच्छा।
1: क्योंकि वो मिट्टी में दबना चाहिए ना खाद।
2: हाँ।
1: लेकिन आप अगर वो बता रहे हो खाली है तो उस पे अगर डाल के आपको दोबारा मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी फिर।
2: चलो कर देंगे, कोई बात ना है।
1: ठीक है,
2: बात
0: ठीक है। घनश्याम जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, कि जब बरसात मान लीजिए देर से आती है तो उसमें सिंचाई है, निकाई गुड़ाई है, इसका क्या महत्व होता है?
1: देखिए, सिंचाई और निराई गुड़ाई का तो महत्व है ही है शिवनंदन जी।
0: जी,
1: बिना पानी के तो कोई भी फसल होती नहीं है।
0: जी,
1: जब पानी की जरूरत हो पानी देना जरूरी होता है। घास को निकालना बहुत जरूरी होता है, अगर घास नहीं निकालेंगे तो जो हम फर्टिलाइजर डालें वो घास ही ले लेगी, हमारी फसल तो लेगी नहीं।
0: जी,
1: और प्रकृति ने एक और प्रबंध किया है कि जो खरपतवार होते हैं उनको ज़्यादा स्ट्रांग बनाया है, वो हमारी फसल से भी पहले ले लेते हैं सारे उर्वरक को और जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो इसलिए फसल अगर हमारी साफ रहेगी और निराई गुड़ाई होती रहेगी और तभी हमारी फसल सही हो पाएगी। तो इन दोनों चीज़ों का बहुत महत्व है
0: जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल, इस समय हमारे किसान भाई सुन रहे हैं गन्ने की पाठशाला, और आज का हमारा विषय है गन्ने की फसल में मानसून पूर्व उर्वरक प्रबंधन।

0: हमारे साथ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी, जो कि मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड में, और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीतू सिंह जी, जो कि प्रोफेसर हैं कृषि प्रसार अमेठी नोएडा में। तो डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए किसी किसान ने मिट्टी चढ़ाने से पूर्व उर्वरक डाला और मिट्टी चढ़ा दी और उसके तुरंत बाद बरसात हो जाती है, तो उसका क्या प्रभाव रहेगा?
1: बरसात होने का तो अच्छा प्रभाव रहेगा, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि बरसात हुई कितनी है, पूरी तरह से खूड़ के अंदर तक नमी चली गई या नहीं चली गई, अन्यथा हमको पानी लगाना पड़ेगा। क्योंकि जो मिट्टी चढ़ाई है और अंदर हमने खाद डाला है, हमारा पानी खाद तक पहुंचना चाहिए, उस खाद तक भिगोना चाहिए उसको, तभी वो घुलनशील अवस्था में पहुंचेगा। अगर बारिश इतनी हो गई है कि वो अंदर तक पहुंच गया तो पानी लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हमें पानी लगाना पड़ेगा।
0: और नहीं, अगर ज़्यादा बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई,
1: देखिए बहुत ज़्यादा हो गई तो आपने मिट्टी चढ़ाई हुई है तो वो खाद तो बेकार जाएगा नहीं, तो आप उसको थोड़ा, अगर बहुत ज़्यादा मतलब क्या मतलब 1 फुट पानी भर गया तो निकालना पड़ेगा फिर तो वो।
0: नहीं, वही कह रहे हो कि अगर पानी ऐसा है कि एक खेत से बह के दूसरे खेत में जा रहा हो,
1: तो दूसरे खेत में जा रहा हो अगर अपने में ही जा रहा है, उसमें खाद नहीं लगाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखिए नाइट्रोजन तो उसमें पानी के साथ जाएगी जाएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अपने खेत में कर दें, धान के में कर दें, दूसरे गन्ने के में कर दें, तो वो ज़्यादा अच्छा।
0: डॉक्टर साहब, ऐसा है कि सारे खेत अपने नहीं होते, एक खेत के पड़ोस में दूसरे का खेत,
1: तो पड़ोसी के में कर दें, उसका भला हो जाएगा, बजाय कि उसे अलग अलग डालें।
0: डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो।
2: हेलो, नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते।
2: हेलो।
0: हाँ, अपना नाम बताएं।
2: मेरा नाम सुशांत है सर
0: जी। सुशांत जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं ओडिशा से बात करता हूँ।
0: तो क्या सवाल पूछना चाहेंगे कि आज का कार्यक्रम गन्ने से संबंधित है?
2: जी जी जी, मेरा सवाल है कि डॉक्टर यश त्योते सर से
0: जी जी,
2: कि जो हिमिक एसिड है
0: जी,
2: उसका एप्लीकेशन मेथड क्या है, मतलब शुगर कैन क्रॉप के लिए?
1: देखिए,
2: ह्यूमिक एसिड बेनिफिट है।
1: हाँ, ह्यूमिक एसिड का प्रयोग आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप उसका सॉइल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं और उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो वो ह्यूमिक एसिड एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और लेकिन नकली भी आ रहे हैं, उससे सावधान रहना है। तो एक कई प्रकार का आता है, ये बॉल्स भी आते हैं, फ्लेक्स भी आते हैं, इसके पाउडर भी आता है, तो इसको पानी में घोल के स्प्रे कर सकते हैं आप, और उसको अगर ज़मीन में डालना है तो आप उसको बुआई के समय डाल सकते हैं। 1 किलो पर एकड़ का बहुत होता है डोज, इससे ज़्यादा नहीं डालना है, और महंगा भी होता है किसान को, नहीं तो महंगा पड़ेगा।
2: जी सर जी,
0: ठीक है। सुशांत जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे डॉक्टर नीतू सिंह जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जब हमारे किसान भाई गन्ने की फसल में संतुलित उर्वरक प्रयोग करते हैं तो उसमें जो फसल का उत्पादन और बढ़े, उसके लिए क्या कुछ वैज्ञानिक आधुनिक विधियां भी ला रहे हैं?
3: जैसा आपने कहा ना, संतुलित उर्वरक
0: प्रयोग के लिए। हाँ,
3: प्रयोग के लिए। तो अभी जो रिकमेंडेड हमारा जो डोज है संतुलित के लिए, जैसे आपका 150 से लेके 180 केजी यूरिया, आपका 60 से 80 केजी के करीब पोटाश, और आपका फास्फोरस भी लगभग इसी मात्रा में। तो ये जो हमारा संतुलित है, ऐसी कोई अब जो तकनीकी की बात कर रहे हैं
0: जी, तकनीकी है जिसमें और भी चीज़ें साथ में, आपके जैसे जैविक उर्वरक की बात की, दूसरे भी उर्वरक उसमें प्रयोग किए जाते हैं, दूसरी भी मतलब जो अनुपात आपने बताया उसके अलावा कोई और भी अनुपात है कि जिससे उत्पादन दक्षता और बढ़ सके?
3: तो आप NPK की बात कर रहे हैं कि अन्य इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स?
0: हाँ, सबकी बात,
3: सभी की। तो इसे हम एक कह सकते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट
0: जी,
3: है ना। इंटीग्रेटेड में क्या करते हैं कि हम इसमें अपना रसायन उर्वरक यूज़ भी कर रहे हैं और बायोफर्टिलाइजर भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम जो आज आप कह रहे हैं नई तकनीकी यही है, जहाँ पर हम इनका समय पर और आप डोजेस क्या लेंगे और दूसरा एप्लीकेशन कैसा है इसका, कब कर रहे हैं आप, है ना, इसका बहुत महत्व है उसके यील्ड को बढ़ाने में। गलत समय पे अगर हम प्रयोग करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो समय पे कर...

0: आखिरी उर्वरक की डोज कुछ तो दे चुके हैं, कुछ देंगे, उसके बाद मिट्टी चढ़ाएंगे। तो कौन कौन सी कृषि क्रियाएं और करें जिससे उन्हें उत्पादन अच्छा मिले, क्या आप सलाह देना चाहेंगे?
1: देखिए, अभी एक तो जो मिट्टी चढ़ाने से पहले जो उर्वरक डाल दें वो, जैसा कि हमने बताया
0: जी,
1: उसके बाद में नाइट्रोजन अप्लाई ना करें, खरपतवारों का नियंत्रण रखें, अगर रोग और कीट लगते हैं तो उनका नियंत्रण करें, बंधाई करें अच्छी से वो गिरने ना पाए, नहीं बंधाई नहीं की तो गिर जाएगा
0: जी।
1: बंधाई उसके लिए मिट्टी चढ़ाते समय ये ध्यान रखें, दोनों तरफ से उसको मिट्टी को दबा देंगे तो गिरना और भी कम हो जाएगा, गिरने की संभावना कम हो जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी फसल पर रोजाना खेत पर जाएं, रोजाना उसका निरीक्षण करें, कोई रोग कीट या कुछ वो दिखाई दे एबनॉर्मल चीज़ तो उसका तुरंत निदान करें, और गन्ने की पाठशाला सुनते रहें, हाँ, क्योंकि हम महीने में दो बार उन्हें समय समय पर बताते रहते हैं, तो अगर उनसे कोई भूल हो जाएगी तो हम उसको ज़रूर उसका निदान बताएंगे। दूसरा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता था
0: जी,
1: शिवनंदन जी, आपने बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न किए हैं और जैविक खाद की भी बात करी है
0: जी।
1: तो देखिए, ये इनको मैं तीन कैटेगरी में बांटता हूँ, एक तो रासायनिक उर्वरक हो गए, एक जीवाणु खाद हो गया, एक जैविक खाद हो गया
0: जी।
1: जीवाणु खाद होते हैं जिसको बायो फर्टिलाइजर, जिनमें जो वो होते हैं जीवाणु होते हैं
0: जी,
1: जैसे फास्फोरस सोल्युबलिंग बैक्टीरिया हो गया, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक मोबिलाइजिंग, अभी तो सबके बोरोन के भी आ गए, सभी के बैक्टीरिया आ गए
0: जी।
1: तो उसके बाद में ये जो जैविक खाद है कूड़ी का खाद होता है। देखिए, जब से मैकेनाइजेशन आई है हमारे गन्ने में, तब से हमारे बैल पशु कम हो गए और खाद की उपलब्धता कम हो गई, तो किसान भाइयों से ये कहूंगा उसको खाद को बराबर डालते रहे, जितना डालोगे उतना ही फायदा होगा
0: जी, बिल्कुल फायदा होगा। डॉक्टर नीतू सिंह जी, डॉक्टर तेवतिया जी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, और किसान भाइयों को राम।
2: आज गन्ने की पाठशाला के अंतर्गत आप सुन रहे थे गन्ने की फसल में मानसून पूर्व उर्वरक प्रबंधन विषय पर विशेष जानकारी। आज के हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर नीतू सिंह, और जो हमारे दूसरे विशेषज्ञ थे डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया।
3: बिल्कुल, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटास लिमिटेड।
4: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद।
5: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें आईपीएल की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर, शीघ्र बुक करें।
2: इसी के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त होता है। सभी सुनने वाले भाइयों बहनों का हमारा राम राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारस और कार्यक्रम संयोजक थे शिव नंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत गजल।

अभी आप सुन रहे थे ये गज़ल आवाज़ जगजीत सिंह की, और इस प्रोग्राम के तहत आइए सुनते हैं दूसरी गज़ल आवाज़ चित्रा सिंह की।

0: चित्रा सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुनी ये खूबसूरत गज़ल। अब से थोड़ी ही देर में आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
5: PLI है ना?
6: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
7: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय आतंकी अपराध

0: मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली मैजिस्ट्रेट कार्यालय में सिटीजन लाउंज कम न्यू एज लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की दौड़ में आगे। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी के सत्य मार्ग पर स्थापित मॉड्यूलर वर्षा जल संचयन प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा की और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के सुव्यवस्थित, समन्वित और संतुलित विकास को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक का आयोजन किया गया। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आज पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अंतर्राष्ट्रीय आतंकी अपराध मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस ऑपरेशन में 7 मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जो पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते अवैध हथियार, गोला बारूद और नशीले पदार्थों की तस्करी और वितरण में शामिल थे और बाद में इन्हें दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में आपूर्ति करते थे। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से 5 अत्याधुनिक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 41 जिंदा कारतूस, आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य और एक स्कॉर्पियो वाहन बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान अवैध कारोबार से प्राप्त धन के लेनदेन से जुड़े कई बैंक खातों के विवरण भी जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के जरिए दिल्ली NCR में कई संभावित आतंकी घटनाओं को समय रहते विफल कर दिया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली मजिस्ट्रेट कार्यालय में सिटीजन लाउंज कम न्यू एज लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये केंद्र नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुविधाजनक, आधुनिक और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में यहां कंप्यूटर सुविधाएं, करियर परामर्श सत्र, कौशल विकास कार्यक्रम, विशेषज्ञ व्याख्यान और मार्गदर्शन कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। एक रिपोर्ट।
1: सिटीजन लाउंज कम न्यू एज लर्निंग सेंटर में आने वाले नागरिकों के लिए AC वेटिंग रूम, आरामदायक बैठने की व्यवस्था, समाचार पत्र, पुस्तकें और पत्रिकाओं सहित रीडिंग कॉर्नर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और अन्य आगंतुकों को अपनी बारी की प्रतीक्षा के दौरान व्यवस्थित और सुविधाजनक वातावरण मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि आने वाले समय में इसे प्रतीक्षालय तक सीमित न रखकर इसे युवाओं और विद्यार्थियों के लिए एक ज्ञान और कौशल विकास केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। यहां कानून, प्रशासन, करियर मार्गदर्शन, प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य विषयों से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही डिजिटल संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर भी स्थापित किए जाएंगे। इससे युवाओं को नई जानकारी, कौशल विकास और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समझने का अवसर प्राप्त होगा। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की दौड़ में निरंतर आगे बढ़ रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि आज का नया भारत संकल्प और गति के साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, बोगीबील ब्रिज और चेनाब ब्रिज जैसी परियोजनाएं देश की उत्कृष्ट इंजीनियरिंग क्षमता और बढ़ती आर्थिक शक्ति का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए की गई पहल ने कनेक्टिविटी के नए आयाम स्थापित किए हैं। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज अर्बन एक्सटेंशन रोड UER2 पर पिछले 12 वर्षों में हुए विकास कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित प्रगति पथ यात्रा के दौरान लोगों को इन उपलब्धियों की जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी के सत्य मार्ग पर स्थापित मॉड्यूलर वर्षा जल संचयन प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि जल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसका विस्तार करना पर्यावरण अनुकूल

0: राजधानी के निर्माण के लिए आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
1: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने कहा कि इस प्रकार की मॉड्यूलर वर्षा जल संचयन प्रणालियां भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर जल भराव की समस्या को कम करने तथा दिल्ली में शहरी जल प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। समीक्षा के दौरान श्री संधु ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष से प्रणाली की संरचना, परिचालन दक्षता और दीर्घकालिक स्थिरता संबंधी विशेषताओं पर विस्तृत जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने आगामी मॉनसून को देखते हुए शहर में ऐसे पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ अवसंरचना परियोजनाओं को तेजी से अपनाने और उनका विस्तार करने की आवश्यकता पर बल दिया। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: तरनजीत सिंह संधु ने खान मार्केट में चल रहे सुधार कार्यों का निरीक्षण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने बताया कि उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि खान मार्केट जैसे प्रतिष्ठित सार्वजनिक और वाणिज्यिक स्थलों की उन्नति, नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने, यातायात और पैदल यात्री प्रबंधन को सुदृढ़ करने तथा आगंतुकों, पर्यटकों और स्थानीय व्यापारियों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के सुव्यवस्थित, समन्वित और संतुलित विकास को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक का आयोजन हुआ। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच संस्थागत समन्वय को मजबूत करने, क्षेत्रीय आवागमन तथा संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने, विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और NCR से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। दिल्ली के मालवीय नगर से विधायक सतीश उपाध्याय ने आज दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए श्री उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड राजधानी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है, क्योंकि ये नागरिकों की बुनियादी जरूरतों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में हर घर तक जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे प्रयासों के साथ साथ यमुना, गंगा और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में खरीफ 2026 सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। कृषि मंत्रालय ने कहा कि अल नीनो की संभावित स्थिति को देखते हुए उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक रिपोर्ट।
2: समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, ताकि मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। उन्होंने जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कल नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: इस पहल का उद्देश्य नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करना, स्वयं सेवकों की सहभागिता बढ़ाना और देश भर में नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित

0: एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहलों का भी अनावरण करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान के दौरान देश भर में जागरूकता और सामुदायिक जन सहभागिता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इनमें सामूहिक प्रतिज्ञा अभियान, जागरूकता रैलियां, साइकिल रैलियां, युवा नेतृत्व वाले अभियान, पोस्टर निर्माण, निबंध प्रतियोगिताएं, वेबिनार, विशेषज्ञों के साथ संवाद और नुक्कड़ नाटक शामिल है। सुपर्णा और शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
1: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की मीडिया प्रभारी और प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दादा ने कहा है कि योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर एक समग्र समाधान प्रदान करता है। आकाशवाणी से एक विशेष बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विषय स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग पर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया में बुजुर्ग आबादी में वृद्धि हो रही है, जिससे स्वस्थ वृद्धावस्था एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य प्राथमिकता बन गई है। डॉक्टर रीमा ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायामों का समूह नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश की 108वीं जयंती के अवसर पर विधानसभा परिसर में पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने कम आयु में स्वयं को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने कहा कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने सादगी और सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीते हुए दिल्ली के विकास, किसानों के कल्याण और राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर काम किया। राजधानी में आज सुबह के समय बारिश हुई और आसमान में हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान रह सकता है 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह दावा निराधार है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय आतंकी अपराध मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली मजिस्ट्रेट कार्यालय में सिटीजन लाउंज कम न्यू एज लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की दौड़ में आगे। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने राजधानी के सत्य मार्ग पर स्थापित मॉड्यूलर वर्षा जल संचयन प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के सुव्यवस्थित विकास को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक का आयोजन। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब वक्त हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीत मालिका, और इस गीत मालिका की माला को पिरोने आए हैं तलत और
3: तरन्नुम।
2: बिल्कुल, और तरन्नुम मालिका यानी कि जहाँ तक मैं समझ रही हूँ माला, और माला में अगर अलग अलग मोती हों तो क्या ही बात है।
3: बिल्कुल, जैसे हर मोती का अपना एक अलग किरदार होता है, पूरी एक जो मोतियों की एक लड़ी होती है वो बनकर तैयार होती है मालिका। तो हमारे प्रोग्राम में भी ऐसी कुछ ख़ास चुनिंदा नगमे लेकर हम आपके सामने आज पेश करेंगे बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने।
2: बहुत बहुत ऐसे गाने सेलेक्ट किए हैं आपने और मैंने कि लोग डांस करने पे मजबूर हो जाएंगे। कोशिश यही है
3: क्योंकि ये जो वक्त होता है शाम का वक्त होता है वो थोड़ा थकावट भरा भी होता है, लेकिन अगर ऐसा मस्ती वाले
2: काम बड़ा ज्यादा करना होता है, एनर्जी चाहिए
3: तो चलिए
2: बस एनर्जी हम
3: शुरुआत करते हैं।
2: बिल्कुल।

0: भाई जून ने तो वाकई में ओए होए करवा दी। जून ने हमारी जून ही बदल के रख दी तरन्नुम।
1: बिल्कुल,
0: गर्मी
1: गर्मी इतनी है तलत, और शुक्र करो कि आज ही कुछ मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि खुशगवार मौसम नजर आने लगा, हल्की हल्की बारिश।
0: बिल्कुल, बिल्कुल। और पता है ये खासियत सिर्फ हमारे देश में है, हमारे भारत देश में।
1: बिल्कुल हाँ, और कह सकते हैं ना कि मौसम की अगर बात करें तो मौसम, वैसे तो हम चार मौसम कहते हैं, बदलते मौसम की बात करें तो चार मौसम होते हैं, लेकिन मौसम भी छह होते हैं भारत में।
0: जी जी जी
1: तो हम अपने श्रोताओं को बिल्कुल बताना चाहेंगे कि कौन कौन से मौसम होते हैं, क्योंकि अक्सर हम बात सिर्फ सर्दी गर्मी बरसात और बसंत की ही करते हैं।
0: बिल्कुल, आप बताइए आपके पास क्या है।
1: जी हाँ, ये छह मौसम होते हैं, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी, वर्षा ऋतु यानी बारिश, शरद ऋतु यानी कि इसे हम पतझड़ भी कहते हैं, और हेमंत ऋतु, और फिर शिशिर ऋतु यानी कि सर्दी।
0: मतलब हम हर मौसम के आगमन की भी बदलाव को महसूस करते हैं कि कब एक मौसम दूसरे मौसम में तब्दील हो रहा है, माफ कीजिएगा, तब्दील हो रहा है,
1: जी
0: बदल रहा है, तो वो भी एक अलग
1: अलग
0: एहसास
1: लिए होता है, अलग मौसम अलग मिजाज लिए होता है।
0: और भारत की बात है और मेड इन इंडिया तो आजकल पूरे विश्व के सर चढ़कर बोल रहा है, जिसका जादू तो क्यों ना हम सुन लें गीत मालिका में मेड इन इंडिया।
1: जी
2: Come again, come again, come again.

0: जी हाँ, हर एक की पसंद जो है मेड इन इंडिया है. आप कहीं पे भी जाइए, बस इंडिया के जो गीत हैं यानी बॉलीवुड फिल्म सॉन्ग्स जो हैं वो हमेशा सुने जाते हैं, हर कहीं सुने जाते हैं.
1: और तरन्नुम ना सिर्फ गीत संगीत बल्कि यहाँ के खाने, यहाँ की बातें, यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ का काम, यहाँ के उद्योग, यहाँ की बहुत सारी, और आजकल तो चर्चा में है बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि इंडिया का जो AI है लोगों को काफ़ी भा रहा है, हमारी तकनीक लोगों को बहुत पसंद आ रही है.
0: तो चलो इसी बात पर बजाएं ताली.
1: बिल्कुल, और दे ताली है फिल्म वीर से.

0: और बात अगर तालियों की हो जाए फिर उसके बाद मज़ा आता है, क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं तरन्नुम, और बच्चे घर पे हैं, कोई दादी के घर जा रहा है, कोई नानी के घर जा रहा है, कोई पिया के करीब आ रहा है, कोई पिया से दूर जा रहा है, और ये जो वक्त है कुछ बातें याद करने के लिए भी होता है।
1: बिल्कुल। और जो तुमने गाना अगला जो निकाल के रखा
0: जी
1: है
0: जी
1: वो
0: जी
1: ये मुझे याद दिलाता है अपने पुराने वक्त में। मतलब मैं थोड़ा जब बच्ची थी लेकिन डांस करने का बहुत मन करता था, और घर में ऐसे गानों को सुनकर बस मेरा मन करता, मैं थिरकती रहूं,
0: बिल्कुल
1: नाचती
0: बिल्कुल
1: रहूं।
0: बिल्कुल। और क्योंकि बात मैंने छुट्टियों से भी शुरू की है, गाना देख के आप जिस तरह से ललचा गई हैं सुनने के लिए, लेकिन बात ये भी है तरन्नुम, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं, और जब बड़े हो जाते हैं ना, उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मैं महसूस कर रही हूँ 2 महीने की छुट्टियों में, कि हम नानी के घर नहीं जाते, हम दादी के घर नहीं जाते। ये
1: हाँ,
0: सबसे बड़ा
1: क्योंकि
0: डिसएडवांटेज है बड़े
1: अब
0: हो
1: जो
0: जाने का।
1: है बड़े आपका जो कह सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम हो या फिर ऑफिस जाना हो या फिर काम का प्रेशर हो, बच्चों को उन

0: ये पेरेंट्स इतना वक्त दे ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए कहीं दूर शहर में या कहीं दूर जो है वो अपना बच्चों को लेके जा भी नहीं पाते हैं।
1: वो बात भी है, लेकिन आप बताइए, आप कितने साल पहले गई थी अपनी नानी के घर?
0: अरे तलत, क्या बताऊं, कि अफसोस की बात है कि मेरी नानी नहीं रही, लेकिन
1: ओ
0: उनसे जुड़े हुए लोग भी तो हैं। मैं 6 महीने में सोचती हूँ कि बस मिलाऊं सबसे, वो जो
1: चलिए, तो
0: मोहब्बत है वो
1: अच्छी बात
0: बरकरार
1: है,
0: रहे, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और गीत मालिका की हम कार्यक्रम कर रहे हैं और उसे हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो ये भी एक माला का मोती ही है, याद।
0: बिल्कुल।

0: तो तलत बताओ अब क्या करोगी?
1: चोरी चोरी
0: किसकी चोरी भाई?
1: चोरी यहाँ इस वक्त तो खैर किसी चीज की चोरी नहीं कर सकते, वक्त की

0: वाकई ये जो चोरी होती है बहुत ही प्यारी होती है। कहते हैं ना कि किसी की प्यार की जो चाहत होती है वो इस तरह से पूरी होती है कि दिल जो है वो
1: चुरा लिया
0: चुरा
1: जाता
0: लिया
1: है,
0: जाता है, और उसमें भी अपना एक अलग मज़ा होता है ना।
1: लेकिन तरन्नुम में कल मुझे यह एहसास हुआ कि मोहब्बत जो है ना वो ज़रा सज़ा भी है। मज़ा तो अपनी जगह है लेकिन मोहब्बत में सज़ा भी है।
0: अपने अपने मिजाज हैं, अगर मोहब्बत में अगर झगड़े हैं, जुदाई हैं, तो उसके भी अपने अलग मज़े होते हैं। हमें वो मज़े नहीं आते,
1: हाँ,
0: अलग
1: ये
0: बात
1: देखने का
0: है।
1: नज़रिया है कि आप उस सज़ा को भी
0: मज़े
1: मज़ा
0: ले
1: में आप
0: लें।
1: महसूस करिए कि हाँ भाई उसके अपने अलग रंगों के मज़े हैं।
0: जी
1: खैर अगली तरफ बढ़ते हैं, और बहुत खूबसूरत एक इंडी पॉप सॉन्ग है, अगर इजाज़त है तो मैं प्ले करूँ।
0: बिल्कुल।
2: बिचक धुम धुम।

0: बिल्कुल सही बात है तलत की। आगे जाने राम क्या होगा, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता, अपने भविष्य का कुछ पता नहीं होता कि अगले पल क्या होना है, और बस हर पल को अच्छे से जीना चाहिए। क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा। और जो हर वक्त, जो हर पल गुजर रहा है उसे गनीमत जानना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये पल आपको तकलीफ दे लग रहा हो, परेशानी भरा लग रहा हो, लेकिन थोड़ा सा इसे हम नेगेटिव भी मैं कह सकूँगी, हो सकता है कि इससे अगला पल जो हो वाकई बहुत अजीब हो
0: बिल्कुल
1: और ऐसा हो कि वो पिछले से ज़्यादा सुकून वाला न लगकर बहुत तकलीफ़ दे लगे और वो परेशानी आसान लगे जो इससे पहले आप झेल चुके हैं।
0: तो हर पल तैयार रहना
1: बिल्कुल
0: चाहिए, हर
1: बिल्कुल
0: परेशानी
1: तैयार।
0: को अच्छे से झेलने का। अच्छे से झेलने का कहने का मतलब है कि आप अगर दिल दिमाग को बिल्कुल स्थिर रखकर और खुश मिजाज रहकर हर पल को जिए तो आगे की ज़िंदगी बहुत खुशगवार होगी।
1: जी, और वो वक्त आपकी यादगार बन जाएंगे कि जब आप कभी कभी किसी मुश्किल में, परेशानी में होंगे तो आप अपने वो सुहाने पल, वो सुहाने लम्हे आप याद कर पाएंगे और एक जोश आएगा, फिर से वो वक्त आ सकता है। और तरन्नुम, अब जो वक्त है वो हमसे कह रहा है कि जल्दी से हमें टाटा कह देना चाहिए, लेकिन लेकिन लेकिन इतनी जल्दी कैसे, एक गीत तो सुनना
0: एक
1: बनेगा।
0: गीत बिल्कुल, और कुछ अच्छा सा गीत सुनोगे, बस दिल कहे कि मैं बस नाच उठूं, खुश हो
1: बिल्कुल।
0: जाऊं।
1: और देखिए, ये जो गीत है ये फिल्म ओए लक्की से है और इस गीत को गाया जो है वो बहुत ज़बरदस्त आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी, और ये जुगनी है। और जुगनी जब कभी आप सुनेंगे, किसी की भी आवाज़ में सुनेंगे, तो आपको ज़िंदगी की ना एक नई रवानी महसूस होगी और जुगनी वाकई में आप उसको उस वक्त जी जाएंगे। जुगनी एक प्रथा है तरन्नुम गाने की, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये गीत हम सुनते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी पड़ाव पर।
0: आखिरी गीत है, लेकिन इस आखिरी गीत के सहारे अपनी पूरी ज़िंदगी को कुछ इस तरह से सोचिए कि आप जो है कुछ ऐसे जिए कि आपका हर पल बहुत खुशमिजाजी वाला हो।
1: बिल्कुल।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय होने वाला है 8:45। आप सुनेंगे समाचार संध्या और ठीक 9 बजे आप सुनेंगे इवनिंग न्यूज़। 9:15 पर समय होगा उर्दू में खबरों का। कृपया अब समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए जो है समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या।

0: आपके साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमरीका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियां में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियां में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: the Telelock app, website www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और

0: कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1,000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर

0: तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसियों की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
1: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
2: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
1: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
0: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
3: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है। उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. दिस इज आकाशवाणी एंड

0: रुकावट और इंटर ऑपरेबल डिजिटल हल फराहम करने की भारत की सलाहियत का मजहर है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि यह आगाज़ भारत और फ्रांस के दरमियान इक्तसादी और तकनीकी ताल्लुकात को मुस्तहकम करता है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान जाम शराकत दारी की बढ़ती हुई गहराई और उमंगों की अक्कासी होती है। बड़े सनअती मुल्कों के ग्रुप ऑफ सेवन समिट के मौके पर अमरीकी इत्तेहादियों ने आज रूस यूक्रेन तनाज़े के 4 साल से ज़्यादा अरसे के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन की हिमायत के एजेंडे के आगे बढ़ाने के लिए काम किया। मेज़बान फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वो ये ख्वाहिश करते हैं कि ट्रंप को तरगीब दी जाती रहे कि वो यूक्रेन की हिमायत और रूस पर दबाव बढ़ाने का सिलसिला जारी रखें ताकि किसी अमन माहदे तक रसाई में मदद मिले। ट्रंप के तहत अमरीका ने यूक्रेन के लिए इमदाद में कटौती की है। फ्रांस और उसके यूरोपीय इत्तेहादी ममालिक अब कीफ को फौजी और माली इमदाद फराहम करने वाले बड़े ममालिक बन गए हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने भी आज सुबह वर्किंग इजलास में G7 लीडरों के साथ शिरकत की, लेकिन मुज़ाकरात जल्द ही ख़त्म हो गए क्योंकि लीडरान सिर्फ 1 घंटे 15 मिनट के लिए जमा हुए थे। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में आला सतह की ज़राअत से मुतालिक एक मीटिंग में शिरकत की और 2026 की खरीफ की फसल के लिए मुल्क भर में तैयारियों का जायज़ा लिया। वज़ारत ज़राअत ने एक बयान में कहा कि एलनीनो की मुमकिन सूरत हाल के तनाजुर में वज़ीर मौसूफ ने कपास की पैदावार में इजाफे, दालों में खुद किफालत को हासिल करने और कम बारिश वाले ज़िलों में हंगामी नौइयत के मनसूबे तैयार रखने पर खसूसी ज़ोर दिया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ज़राअत के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मीटिंग में सीज़न के दौरान नामवाफिक मौसमी सूरत हाल से ज़राअत और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशगी तौर पर तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाने को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। जनाब चौहान ने हिदायत दी है कि उनाज़ला में जहां कम बारिश या गैर मुसावी बारिश होने का इम्कान है, पेशगी तौर पर तमाम इकदामात किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे अज़ला की शनाख्त की जानी चाहिए और रियासतों के साथ मिलकर फसल के हिसाब से हंगामी मंसूबे तैयार किए जाने चाहिए ताकि मौसमी चैलेंज की सूरत में फौरी तौर पर किसानों को मुतबादिल आलात और ताउन फराहम की जा सके। नई दिल्ली से सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज।
0: मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने आज ऐलान किया है कि तारीखी ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स EFR को जल्द ही नई जिंदगी अता की जाएगी और इस फोर्स में 1000 से ज्यादा गोरखा जवानों को भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग के कुर्सियांग में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए जनाब अधिकारी ने मुल्क के दिफा में गोरखा फौजियों के जोश व जज्बे और कुर्बानियों के तई खराज अकीदत पेश किया। जनाब अधिकारी ने मजीद ऐलान किया कि रियासती पुलिस फोर्स में जल्द ही भर्ती शुरू की जाएगी, जिससे गोरखा जवानों को बड़ी तादाद में रोज़गार के मौके मिलेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती भर्तियों में कम से कम 30% सीटें ख्वातीन के लिए रिज़र्व होंगी। भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर ज़बरदस्त तब्दीली रुनुमा हुई है। आकाशवाणी के ख़बरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम दहशतगर्दी के खिलाफ नरेंद्र मोदी हुकूमत की कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पिछले बरस 6 और 7 मई की दरमियानी शब को ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को एक वाज़े पैगाम दिया कि भारत जंग नहीं चाहता लेकिन दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई सुर्ख लाइन खींच दी कि अगर दहशतगर्दी किसी की स्टेट पॉलिसी है तो उसे एक बराह रास्त और क़ुव्वत से भरपूर रद्द अमल का सामना करना होगा। लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के मजबूत ठिकानों को निशाना बनाते हुए भारत ने पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में वाक़ दहशतगर्दों के 9 बड़े लॉन्च पैड्स को कामयाबी के साथ तबाह कर दिया। इस कार्रवाई में 100 से ज़्यादा दहशतगर्द हलाक हुए। इधर 7 पड़ोसी मुल्कों तक फैली 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा अपनी ज़मीनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज भारत मुल्क को अवलियत देने के उसूल की रहनुमाई में अपनी मुअस्सर खारजा पॉलिसी पर अमल कर रहा है। साथ ही वो दिफा के शोबे में खुद कफील होने की जानिब पेशरफ्त कर रहा है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे

0: से बात करते हुए सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने कहा कि आसाम में खुली सरहद एक बड़ा मसला था और नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इस मामले से निपटने के लिए तेजी के साथ काम किया है। एनडीए हुकूमत दहशतगर्दी को कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी के तई पूरी तरह पुरअज़्म है। नई दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मेहताब आलम।
1: ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने पेरिस मुआहदे की दफा 6.2 के तहत मुश्तरका क्रेडिटिंग मैकेनिज्म JCM पर अमल आवरी के जवाबित को इख्तियार किया है ताकि आबोहवा से मुतालिक कार्रवाई, जहरीली गैसों के अखराज में कमी और पायदार तरक्की की स्कीमों के मुतालिक तआवुन को फ़रोग दिया जा सके। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली की वजारत के मुताबिक अमल आवरी के जवाबित को क्रेडिटिंग के मुश्तरका मैकेनिज्म के लिए पिछले बरस दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाए तआवुन के मुफाहमत नामे के बाद इस बरस 8 जून को इख्तियार किया गया। ये मैकेनिज्म तख़फीफ के प्रोजेक्टों में शराकत दारी का एक खाका फराहम करता है जिसकी रूह से भारत में जहरीली गैसों के अखराज में तख़फीफ या कतई ख़त्म किए जाने की बात की गई है, साथ ही पायदार तरक्की के लिए तआवुन की बात भी की गई है। ईरान ने आज कहा है कि अमेरिका के साथ जंग के खात्मे के मुआहदे के तहत इसराइल को लिबनान से बाहर निकलना होगा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने कहा कि जनूबी लिबनान में इसराइल की जारी मौजूदगी अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाए मुफाहमत नामे की खिलाफ वर्जी होगी। अमेरिका ने वजाहत नहीं की है कि आया लिबनान कतई मुआहदे का हिस्सा है या नहीं। इधर इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने कल मुआहदे को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फैसला करार दिया था और कहा था कि इसराइल की अपनी तरजीहात हैं और वो जब तक ज़रूरी होगा उस वक्त तक लिबनान में एक बफर जोन में रहेगा। नीट UG 2026 का दोबारा इम्तहान 21 जून को होने

0: को यह हिदायत भी दी गई है कि वो इस महीने की 30 तारीख तक पहले पोस्ट किए गए मैसेज को एडिट करने की सहूलत को गैर फ़ाल बनाए। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने पेशगोई की है कि कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गरज चमक, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं चलने के साथ बारिश का इम्कान है। इसी तरह के मौसमी हालात बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साहिली आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अंडमान निकोबार जजाइर में भी रहने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कल ज़ैली, हिमालयाई, मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में शुमाल मशरकी भारत, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के बाद हिस्सों में भी तेज़ बारिश का इम्कान है। भारत की फेंसिंग एसोसिएशन FAI ने शमशेर जनी की 26वीं सीनियर एशियाई चैम्पियनशिप 2026 के लिए भारत की सीनियर टीम का बाकायदा ऐलान कर दिया है। ये चैम्पियनशिप 19 से 24 जून तक दिल्ली में मुनक़िद होगी। भारत इस बावकार कॉन्टीनेंटल मुकाबले की पहली मरतबा मेज़बानी करेगा, जो कि एक तारीखी संग मील है। 30 से ज़्यादा ममालिक और 400 से ज़्यादा सरकर्दा खिलाड़ी इस मुकाबले में शिरकत करेंगे। भारत की 24 रुकनी टीम में 12 ख्वातीन और 12 मर्द शामिल हैं, जिसकी क़्यादत भारत की पहली और वाहिद शमशेर जनी की ओलंपिक खिलाड़ी CA भवानी देवी करेंगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज रात अमरीका के शहर न्यूजर्सी में ग्रुप एक मुकाबले में फ्रांस और सेनेगल के दरमियान मैच होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। आखिर में ब्रिटेन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर एविया में G7 सरबरा इजलास में शिरकत की। वो आज रात कनाडा और बरतानिया के वज़राए आज़म, नीज मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ बाहमी मीटिंग भी करेंगे। वो कल अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने मौजूदा खरीफ सीज़न के लिए तैयारियों का जायज़ा लेने की गरज से आला सतह की एक मीटिंग की। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स को जल्द ही नई जिंदगी अता की जाएगी और इस फोर्स में 1,000 से ज़्यादा गोरखा जवानों को भर्ती किया जाएगा। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जंग खत्म करने के मुआहदे में इसराइल को लबनान से अपनी फौजें भी वापस बुलानी होंगी। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: اینجا دهلیست. سلام و درود بر شنوندگان عزیز و ارجمند. شب شما بخیر. ساعت 9:30 شب هند برابر با ساعت 7:30 شب ایران. اینک شنوندگان ارجمند، دومین برنامه سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی را خدمت شما در موج کوتاه ردیف 9620 کیلوهرتز پخش میکنیم. برنامه شامگاهی ما عبارت خواهد بود از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، یک غزل و سپس برنامه نوای هند. البته اخبار جهان آخرین رویداد برنامه امشب ما خواهد بود. شنوندگان ارجمند، اینجانب شمشیروانی، ضمن استقبال همه شما و به امید اینکه روز خوبی و پرسلامتی را پشت سر گذرانده باشید، برنامه شامگاهی را خدمت شما با این آهنگی به راه می اندازد.

وكان أمرا مقضيا. فحمل

فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन संबंधों और व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से भी मुलाकात की और दोनों देशों की पुरानी मित्रता को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाई ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ बैठक में व्यापार, वाणिज्य और भविष्य की प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एनसीआर के नियोजित और संतुलित विकास, परिवहन और संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। बैठक में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच बेहतर समन्वय पर भी विचार विमर्श किया गया। रेलवे ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 42 किलोमीटर लंबे चंपा कोरबा थर्ड लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत 755 करोड़ रुपए है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि इस परियोजना में चंपा और कोरबा के बीच तीसरी रेल लाइन का निर्माण शामिल है, जिसमें पहले से मंजूर हो चुके मडवारानी सारकगुंडिया सेक्शन को शामिल नहीं किया गया है। इस कॉरिडोर की पहचान भारतीय रेल के मिशन 3000 MT और हाई डेंसिटी सिटी नेटवर्क कॉरिडोर के अंतर्गत की गई है, जिनका उद्देश्य माल ढुलाई को और बेहतर बनाना तथा देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अफ्रीकी संघ की वर्चुअल शिखर बैठक में भाग लिया। बैठक में इबोला प्रकोप से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग पर चर्चा हुई। श्री नड्डा ने कहा कि भारत ने अफ्रीका के प्रयासों के समर्थन के लिए $1 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की है।

0: The meeting also discussed prevention of stubble burning in context of air quality management in Delhi NCR. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल। श्रोताओं, 1:10 और 8 सेकंड का समय हो चला है, फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत सुनारे का। जी हां, गोल्डन एरा का फिल्म संगीत। फिल्म संगीत उस दौर का, जिस दौर की यादें जब आज आप गीत सुनेंगे तो बहुत सारी ताजा हो जाएंगी। 60, 70, 80 का दशक जिसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की यादों का दौर कहा जाता है, उस दौर में लेकर चलेंगे आज कुछ चुनिंदा गीतों के साथ अगले लगभग 50 मिनट कार्यक्रम में। आज आपके साथ आपका दोस्त अतुल।

0: बताइए बताइए
1: ना ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: अच्छा बताओ।
1: काम सीधा साधा है।
0: बोलो बोलो।
1: आज लेना एक वादा है।
0: क्या?
1: आजा आजा, शादी का इरादा है।
0: क्या?
1: शादी का इरादा है।
0: शादी और
1: तुमसे? शादी का इरादा है।
0: शादी ना बाबा ना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं, सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: Beleza a muscarai. Beleza a muscarai.
1: जी हाँ, आप ही मुस्कुराइए. कल आज और कल फिल्म से गीत आपने सुना. 1971 की वो फिल्म. इस गीत को अपनी आवाज दी थी किशोर कुमार और आशा भोसले ने. जी हाँ, आप हैं गीत सुन रहे कार्यक्रम में गोल्डन एरा का वो फिल्म संगीत जिसे लेकर आते हैं हम इस कार्यक्रम में, यानी 60 70 80 का वो दशक जिसे कहा जाता है सुनहरा दौर, या फिर कहें जिसे माना जाता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का वो दौर जो शायद कभी भी लौट कर नहीं आएगा. आज जब हम लगभग 50 साल बाद, या फिर कहें उससे भी और ज़्यादा समय बाद इन गीतों को सुन रहे हैं, तब भी देखिए ना, चेहरे पे मुस्कान आ ही जाती है. तो ऐसा था वो दौर, ऐसा ही रहने वाला है आज का ये कार्यक्रम खूबसूरत, जिसमें ऐसे गीतों के साथ हम बढ़ते चलेंगे आगे. कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ipradiodelhi@gmail.com पर मेल भेजकर आप शामिल हो सकते हैं हमारे साथ कार्यक्रम में. आपके साथ आपका दोस्त अतुल

0: शैतान है आँखें,
1: हैवान है आँखें,
0: शैतान है आँखें,
1: हैवान है आँखें,
0: शैतान है आँखें,
1: हैवान है आँखें,
0: शैतान है आँखें,
1: हैवान है आँखें,
0: शैतान है आँखें,
1: हैवान है आँखें,
0: शैतान है आँखें।
2: आँखों का इतना वर्णन जी, आँखों से तो मोहब्बत भी झलकती है, आँखों से तो मोहब्बत भी नज़ाकत पेश करती है। महेंद्र कपूर और उषा मंगेशकर की आवाज़ में गीत आपने सुना आदत से मजबूर फिल्म से। और कार्यक्रम में आगे बढ़ें और मोहम्मद रफ़ी का एक खूबसूरत गीत जब आप सुनेंगे तो मुझे तो पूरा यकीन है, या फिर मैं देख सकता हूँ कि आपके चेहरे पर मुस्कान होगी।

रास्ते जख्म फिल्म से गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और गीत जब सुना होगा आपने 1973 में हम ले गए थे इस गीत के माध्यम से। जी हाँ, अब से यानी कि लगभग 53 साल पहले वो दौर था इन खूबसूरत फिल्मों का, इन खूबसूरत गीतों का, इन खूबसूरत कलाकारों का, इन खूबसूरत गायकों का, जिन्हें हम आज भी जब सुनते हैं तो बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो यही मकसद है इस कार्यक्रम का, जिसका नाम है गीत सुनहरे, यानी कि गोल्डन एरा का फिल्म संगीत, जिसे लेकर आते हैं हम आकाशवाणी के AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल पर। और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ने का मौका मिला है मुझे, यानी आपके दोस्त अतुल को।

कुली फिल्म का एक खूबसूरत गीत आपने सुना, शब्बीर कुमार और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की आवाज़ में। और गीत आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे में, आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। 1:41 और 51 सेकंड का समय। कार्यक्रम में आज आपके साथ आपका दोस्त

सागर फिल्म कहेगी, एसपी बाला सुब्रमण्यम और आशा भोसले की आवाज़ और बहुत सारी यादें इस गीत के साथ हमारी ताज़ा हो गई है ना भाई। तो कार्यक्रम में देखिए, इन गीतों के साथ, इन यादों के साथ हम बढ़ते चले। कार्यक्रम का नाम था गीत सुनहरे, यानी कि उस दौर के वो सुनहरे गीत जिसे हम कहते हैं गोल्डन एरा, इन गीतों के साथ आज हम बढ़ते चले कार्यक्रम में। और बढ़ते बढ़ते देखिए वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से समय शायद इससे ज़्यादा परमिशन या फिर कहें कि इजाज़त नहीं देगा। फिर किसी कार्यक्रम में जरूर मिलेंगे ऐसे ही और भी गीतों के साथ, जो कि आपके चेहरे पे मुस्कान लाएं, खुशी लाएं, यादें ताज़ा कर दें। मकसद तो हमारा यही है इस कार्यक्रम में।

तो आज के इस कार्यक्रम से अतुल को यानी अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। कार्यक्रम का अंतिम गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में त्रिशूल फिल्म से।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे। यह आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं कुछ ही पलों में रात्रि के 2 बजने को हैं। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की

0: वसुधैव कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन संबंधों और व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की और दोनों देशों की पुरानी मित्रता को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग के साथ बैठक में व्यापार, वाणिज्य और भविष्य की प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ मौसम के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वो जल्दबाजी में बुआई ना करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वो बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकीय कार्य है जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एनसीआर के नियोजित और संतुलित विकास, परिवहन और संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। बैठक में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच बेहतर समन्वय पर भी विचार विमर्श किया गया। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित एक डिजिटल रूप से बदले गए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल पी आर शंकर ने नए सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ की नियुक्ति की आलोचना की है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये वीडियो एआई की मदद से तैयार किया गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आर एस रघु। Prime Minister Narendra Modi addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as

कुछ तकनीकी कारणों से ये गीत हम आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं। कार्यक्रम नॉन स्टॉप फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप यहाँ आकाशवाणी के AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत बहार नॉनस्टॉप फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में 3 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय

0: भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन संबंधों और व्यापार सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ मौसम के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स EFR का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इसमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अफ्रीकी संघ की वर्चुअल शिखर बैठक में भाग लिया। बैठक में इबोला प्रकोप से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग पर चर्चा हुई। श्री नड्डा ने कहा कि भारत ने अफ्रीका के प्रयासों के समर्थन के लिए $1 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में NCR के नियोजित और संतुलित विकास, परिवहन और संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षा परिषद और मान्यता प्राप्त स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 24 जून तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के अनुसार अब हर वर्ष 20 मई से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा और नियमित कक्षाएं 25 जून से शुरू होंगी। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के 400 से अधिक शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Evian, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said, this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure,

उनका कलाम आज भी उतना ही ताजा लगता है जितना उनके अपने दौर में था। उनका मुहावरा और बयान आज के दौर में भी मॉडर्न लगता है, इसलिए गायकों के लिए गालिब सदाबहार हैं। वो किसी भी लिबास में सज जाते हैं। जगजीत ने उन्हें मॉडर्न ऑर्केस्ट्रा के साथ रिकॉर्ड किया।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। अब वक्त है कार्यक्रम नाद ब्रह्म का। लीजिए सुनिए जी उमा द्वारा बजाया वायलिन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 जून 2026 सुबह के 4:53 और 50 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, आइए अब आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, जबकि 5:20 पर आप देशभक्ति गीत का आनंद ले सकते हैं। पांच बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वर मंजरी, जबकि 6 बजे का वक्त होगा हिंदी में समाचार का, और 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: 6:45 का वक्त होगा कार्यक्रम रामचरित मानस का, जबकि 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, 7 बजे सुनेंगे हिंदी में समाचार और 7:05 पर सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। अब सुबह के 5 बजने को हैं, आइए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टरों के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने कहा कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों से जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। इस आयोजन के साथ ही 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक समारोह का शुभारंभ भी होगा। फीफा विश्व कप 2026 में फ्रांस ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप आई मुकाबले में फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। वहीं लॉस एंजलिस में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ। मियामी में उरुग्वे और सऊदी अरब ने 1-1 से ड्रॉ खेला, जबकि सेटल में खेले गए ग्रुप जी मुकाबले में बेल्जियम और मिस्र की टीमें भी 1-1 की बराबरी पर रहीं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। द फ्रेंच सिटी ऑफ एवियां रिमेन्स द एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी टुडे एज द G7 समिट एंटर्स इट्स क्रूशियल फेज। With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February 2025. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors, while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. Besides his meeting with the US President, Prime Minister Modi is also scheduled today to participate in the G7 working session on reviving balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all, and the working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The Prime Minister will also hold a trilateral meeting with the EU Council President Antonio Costa, European Commission President von der Leyen and a bilateral engagement with German Chancellor Friedrich Merz. Prime Minister Narendra Modi undertook extensive diplomatic outreach on the sidelines of the G7 summit in Evian, France, holding bilateral meetings with leaders from several countries. The Ministry of External Affairs said that during the meeting, Prime Minister Modi and his Canadian counterpart Mark Carney welcomed the positive momentum in India-Canada relations. During his meeting with British Prime Minister Keir Starmer, Prime Minister Modi reviewed the progress in India-UK relations under Vision 2035. Prime Minister Modi also met UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan on the sidelines of the G7 summit and underscored the importance of dialogue, diplomacy and respect for international law, sovereignty and territorial integrity in advancing enduring peace, security and stability in the West Asia region. Prime Minister Modi also met Kenyan President

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शोखंत, आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे कि किस आसन को करने से आप अपनी दृष्टि दोष में लाभ पा सकते हैं। इसके लिए आज हम करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन जिसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्र का अर्थ होता है ऊंट। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार उष्ट्रासन किया जाता है। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। पंजों को बाहर की तरफ रखते हुए जमीन पर फैला दें। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकने का प्रयास। इस बात का ध्यान रहे कि पीछे झुकते समय गर्दन में किसी भी प्रकार का कोई झटका ना लगे। पीछे की ओर झुकें और धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन पर लंबवत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें। अगर संभव हो तो पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं और पैरों पर टिकाए रखें। यह हमारी उष्ट्रासन की स्थिति होती है। बहुत लोगों में देखा गया है कि वह उष्ट्रासन नहीं कर पाते, तो इसके लिए आप अर्ध उष्ट्रासन का भी प्रयास कर सकते हैं। अर्ध उष्ट्रासन के लिए आपको कुछ नहीं, बस अपने दोनों हाथ

अपनी कमर पर टिकाएं और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन और वक्षस्थल के भाग को पीछे की ओर ले जाएं और उस स्थिति में कुछ क्षण रुकें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ही आगे सामान्य स्थिति में वापस आ जाए। तो यह अर्धउष्ट्रासन की अभ्यास विधि है। उष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक होता है, पर इसके लिए आपको उष्ट्रासन का अभ्यास प्रतिदिन करना जरूरी है और एक दिन एक सेशन में आप उष्ट्रासन का अभ्यास 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं। उष्ट्रासन करने के बाद आप विश्राम स्थिति में वापस आ जाएं और कुछ क्षण वहीं रुकें। विश्राम स्थिति या तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या आप दंडासन में भी विश्राम कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप प्रतिदिन उष्ट्रासन करने के अभ्यास से अपने दृष्टि दोष को कैसे दूर कर सकते हैं और अपनी आई साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग।

0: किसी भी पोजीशन में और किसी भी काम को 20 मिनट से ज्यादा की अवधि में ना करें। 30 सेकंड का ब्रेक लेकर के आंखों को रिलैक्स किया, अपनी सांस को थोड़ी देर देख लिया, यानी थोड़ा आपे में आ जाना है, क्योंकि जो आपे में नहीं है फिर वो स्यापे में रहता है। तो हमें स्यापे में नहीं रहना
1: जी,
0: हमें आपे में जीवन जीना है। और हमारे गुरुदेव कहते हैं लैप जो है ना वो बच्चे को रखने के लिए होती है, टॉप को रखने के लिए नहीं होती है ना। तो एक तो इसे लैपटॉप को लैप में नहीं रखना, पहली चीज। अभी तो बहुत अच्छी अच्छी बेड टेबल्स भी आ जाती हैं, उनको रख के, यानी जब आप गोद में लैपटॉप को रखते हैं तो ये आपके जितने भी प्रजनन अंग हैं उनको इफेक्ट करता है एडवर्स रूप में। तो गोद में या जेब में मोबाइल फोन रखना, इससे बचें। और सर्वाइकल, जहाँ हम सर्वाइकल की बात करते हैं, चाहे वो सर्वाइकल स्पैज्म हो जाता है कुछ लोगों को, कुछ को स्पॉन्डिलाइटिस है या सर्वाइकल पेन है, तो ऐसी में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि विजुअली तो हम नहीं दिखा सकते यहाँ रेडियो के माध्यम से, बस ये समझ लें कि हमें कॉन्शियसली अपने पॉस्चर को सही रखना है और

印度的广播电台，从印度时间5:15到6:45和16:17中，向亚洲播送普通话节目，播长时13795千赫。您正在收听全印度电台应用程序和全英。